मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून साल 2026 प्रातः के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। नमस्कार श्रोताओं, दिन की इस पावन बेला में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। श्रोताओं, गुरु ही वो दीप है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। गुरु के सानिध्य में जीवन को सही दिशा, सही दृष्टि और सही उद्देश्य मिलता है। इन्हीं भावनाओं को नमन करते हुए आज के वंदना कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और गुरु के चरणों में नमन करते हैं।

अभी हमारे श्रोताओं ने सुना गुरु की महिमा का ये सुंदर भजन। श्रोताओं, गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का ये भाव मन को एक अद्भुत शांति प्रदान करता है। इसी श्रद्धा और भक्ति की धारा को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं शिरडी के साईं बाबा का एक खूबसूरत सा भजन।

साईं बाबा के इस भजन के बाद आइए रुक करते हैं गुरबानी की ओर, क्योंकि श्रोताओं गुरबानी का मार्ग जो प्रेम सत्य विनम्रता और नाम स्मरण का संदेश देता है, सिख गुरुओं की वाणी मानवता को एकता भाईचारे और ईश्वर के प्रति अटूट आस्था की सीख देती है।

श्रोताओं, अभी आपने गुरबानी का अमृतमय संदेश सुना। ऐसी वाणी मन को शांति देती है, आत्मा को सुकून देती है और हमें प्रेम, सेवा और इंसानियत के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। वास्तव में श्रोताओं, सभी धर्मों का सार एक ही है, प्रेम, करुणा, भाईचारा और ईश्वर के प्रति समर्पण। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए अब समय है एक खूबसूरत नात का, जिसमें हजरत मोहम्मद की शान में अकीदत और मोहब्बत के फूल पेश किए गए हैं।

श्रोताओं, कहते हैं कि जब भक्त सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करता है तो उसके जीवन के अंधकार दूर होकर आशा और विश्वास का प्रकाश फैलाने लगते हैं। इसी विश्वास के साथ आइए अपने मन मंदिर में दीप जलाएं और प्रभु की महिमा का गुणगान करें। और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, आइए सुनते हैं ये भगवान श्री जगदीश की आरती।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस कान का आज का प्रसंग।

निषाद राज को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री रामचंद्र ने अपने घर लौट जाने को सहमत किया तथा स्वयं सीता और लक्ष्मण समेत वन की राह ली। राह में मिलने वाले वनवासियों को उन्हें तापस वेश में देखकर अत्यधिक चिंता होती है। श्री राम, सीता और लक्ष्मण के प्रति उनके हृदय में ऐसा अनुराग उमड़ पड़ता है जिसके वशीभूत वे उनके साथ साथ चल पड़ते हैं। वट वृक्ष की शीतल छांह देख कोई नरम घास और पत्ते बिछाकर वहां उनसे थोड़ी देर विश्राम कर लेने को कहता है, तो कोई कलश भर पानी लाकर प्रभु से आचमन कर लेने का आग्रह करता है। ऋषि कुमारों के वेश में श्री राम लक्ष्मण का अनुपम रूप देख गांव के स्त्री पुरुष इस प्रकार स्तब्ध रह जाते हैं जैसे दीपक का प्रकाश देख हिरणों का जोड़ा निस्तब्ध हो जाता है। गांव की स्त्रियां अपनी अल्प बुद्धि की विवशता बताकर सीता जी से दोनों कुमारों का परिचय जानना चाहती हैं।

अभी हमारे श्रोताओं ने सुना श्री रामचरितमानस कान का आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:40 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है आज का चिंतन।

0: लाने के लिए कहा। राधा ने यह बात सुनकर तुरंत अपने पैरों की धूल नारद को दे दी। नारद ने पूछा, तुम्हें नरक में जाने का भय नहीं है? राधा ने उत्तर दिया, यदि मेरे पैरों की धूल से श्री कृष्ण की पीड़ा दूर हो तो मैं 70 जन्म तक भी नरक में जाने को तैयार हूं। ये है प्रेम की पराकाष्ठा। महात्मा गांधी ने कहा था, जहां शुद्ध प्रेम होता है वहां अधीरता को स्थान नहीं मिलता। शुद्ध प्रेम देह का नहीं आत्मा का ही संभव है। देह का प्रेम विषय ही है। आत्म प्रेम को कोई बंधन नहीं है, परंतु उस प्रेम में तपश्चर्या होती है और धैर्य तो इतना होता है कि मृत्यु पर्यंत वियोग रहे तो भी क्या हुआ। प्रेम तत्व संसार पर विजय करता है। समुद्र तल में स्थित चुंबक की चट्टान समुद्र के ऊपर चलने वाले जहाज को अपनी ओर खींच लेती है, उसकी कीलें निकाल डालती है और सभी पटरों को अलग अलग कर देती है, फलतः जहाज समुद्र में डूब जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है तब उसका व्यक्तित्व और स्वार्थ एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवात्मा परमात्मा के अगाध प्रेम में डूब जाता है। श्री रामकृष्ण परमहंस के अनुसार प्रेम के 2 लक्षण हैं, इस बात का बोध होना कि जगत मिथ्या है तथा शरीर जो कि सभी को प्रिय होता है उसकी कुछ भी परवाह न करना। भाव कच्चे आम के समान है और प्रेम पके आम के तुल्य है। प्रेम भक्त के हाथ में एक रस्सी के समान है, उसी से वह ईश्वर को बांधकर अपने वश में करता है। भक्त की प्रेममय पुकार सुनकर ईश्वर अवश्य उस पर कृपा करता है। सच्चा प्रेम सूर्य के समान आत्मा को विकसित कर देता है। मोह मन को पाले के समान ठिठुराकर संकुचित कर डालता है। प्रेम का अर्थ है व्यवहार में अपने पड़ोसियों के साथ, उन लोगों के साथ जिनसे आप मिलते जुलते हैं, एकता और अभेदता का अनुभव करना। जिस मनुष्य ने कभी प्रेम नहीं किया वह कदापि ईश्वर अनुभव नहीं कर सकता। प्रेम मोह से भिन्न है, वह एकमात्र दैवी विधान है। विषय वासनाहीन प्रेम ही आध्यात्मिक प्रकाश है। प्रेम परमार्थ है और काम स्वार्थ है। जहां स्वार्थ है वहां काम है, जहां स्वार्थ नहीं होता प्रेम का वही साम्राज्य फलता फूलता है।
1: अभी हमारे

सच कहता हूं तब तब मुझको नींद नहीं आई है। मेरा दूसरा गीत है, प्यासी धरती तरस रही है बूंद बूंद भर पानी को, अंबर का दिल तो पत्थर है देता दर्द जवानी को, घाट घाट की आस लगी है बाट जूते कूल किनारे, तुम बिन चाहत के आंचल पर दाग लगे हैं चांद सितारे, बयार बसंती छू जाती है बीती हुई कहानी को, प्यासी धरती तरस रही है बूंद बूंद भर पानी को, अंबर का दिल तो पत्थर है देता दर्द जवानी को, दूर दूर तक फूली सरसों, दूर दूर तक फूली सरसों, खेत खेत का आंचल पीला, कली कली ने ली अंगड़ाई, फूल फूल हो उठा रंगीला, तुम ही बोलो कैसे भूलूं, तुम संग प्रीत पुरानी को, प्यासी धरती तरस रही है बूंद बूंद भर पानी को, महक उठी है अमराई तो कुहक उठी है कोकिल मन में, आह पपी है जैसी बनकर भटक गए हैं हम तो वन में, कब तक आह जलाएगी यूं इस मधुरीति सुहानी को, प्यासी धरती तरस रही है बूंद बूंद भर पानी।

गीत लिखें, आओ मिल बैठें कुछ पल। मेरी पहली गजल है, सन्नाटा बुन जाती है धुदलाती श्याम, लिखती कुछ दस्तावेज जीवन के नाम। सरलता बटिया से गांव हाटों में पहुंची थी, सरलता बटिया से हाटों में पहुंची थी, छद्म विस पहुंचा है अब सड़कों से ग्राम। भाई साहब बहन जी के अर्थ कुछ और हैं, औपचारिक संबोधन हैं रिश्ते गुमनाम। विद्या की मीलों में बेकारी का उत्पादन, अनब्याही बिटिया भी अब खोजती है काम। हंसकर मत पूछिए यूं भूखे के भाव को, चौराहों पर लग रहा है असमत का दाम। मेरी दूसरी कविता है, आदमी खुद जाल बुनता और खुद फंसता रहा, आदमी खुद जाल बुनता और खुद फंसता रहा, जिंदगी के क्रोड़ में संतरास यूं पलता रहा। रात आई गत हुई फिर भोर की फूटी किरण, उम्र भर यह काल का चक्कर यूं ही चलता रहा, आदमी खुद जाल बुनता और खुद फंसता रहा। क्या किया उपलब्ध हमने कसमसाहटों के सिवा, क्या किया उपलब्ध हमने कसमसाहटों के सिवा, हर रोज यह सूरज यूं ही, हर रोज यह सूरज यूं ही अस्क सा ढलता रहा, फिर सुना है कूकने कोयल लगी अमराइयों में, फिर सुना है कूकने कोयल लगी अमराइयों में, पर हमारे प्यार का पतझर यूं ही चलता रहा, आदमी खुद जाल बुनता और खुद फंसता रहा। इन दिमागों के सभी खिड़की झरों के खोल दो, इन दिमागों के सभी खिड़की झरों के खोल दो, इस उमस में सांस का चलना बहुत खलता रहा, आदमी खुद जाल बुनता और खुद फंसता रहा, जिंदगी के क्रोड़ में संतरास यूं पलता रहा। कौन समझे आजकल इंसानियत का दर्द, हो गई है इस कदर संवेदनाएं सर्द, हर गली के मोड़ पर बैठा मिला हमको अतीत, हर गली के मोड़ पर बैठा मिला हमको अतीत, आंख मिलते ही हुआ चेहरा हमारा जर्द। चाहे जो हो जाए पर करता नहीं प्रतिवाद कुछ, चाहे जो हो जाए पर करता नहीं प्रतिवाद कुछ, आजकल मौसम हुआ कुछ इस तरह ना मर्द। झंझनाने जब लगा वह खोखला व्यक्तित्व, झेपते से झुक गए वह झाड़ने को गर्द। लाख समझाया उन्हें पर एक भी माने नहीं, लाख समझाया उन्हें पर एक भी माने नहीं, शेष था जो भ्रम वह भी हो गया बेपर्द। कौन समझे आजकल इंसानियत का दर्द, हो गई है इस कदर संवेदनाएं सर्द। मेरी अगली गजल है कि यूं दर्द तन्हाइयों का ना आप गुनगुनाइए, यूं दर्द तन्हाइयों का ना आप गुनगुनाइए, बेबसी है खामोशी यूं न खिलखिलाइए, दीनहीन निर्बलों का दर्द भी तो दर्द है, दीनहीन निर्बलों का दर्द भी तो दर्द है,

0: विन्यास नहीं लिखता। जीवन तपती दोपहरी है चलते ही जाना, जीवन तपती दोपहरी बस चलते ही जाना है, पीकर किंचित मद इसे मैं मदमास नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ सच को सच बकवास नहीं लिखता। कलम लिखे वह गीत जिसे सुन पर्वत हुंकारे, मैं शब्दों में ढाल काम की प्यास नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ सच को सच बकवास नहीं लिखता, मैं सपनों को सपनों का इतिहास नहीं लिखता। कलम लिखे वह गीत जिसे सुन पर्वत हुंकारे, मैं शब्दों में ढाल काम की प्यास नहीं लिखता, गिरना उठना फिर चल देना घबराना कैसा, गिरना उठना फिर चल देना घबराना कैसा, जो जीवन गति रोके वो संतरास नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ सच को सच बकवास नहीं लिखता, मैं सपनों को सपनों का इतिहास नहीं लिखता। मेरी अगली गजल है कि बहस की बर्छियों पर टांग कर समस्याओं को मत उछालो, बहस की बर्छियों पर टांग कर समस्याओं को मत उछालो, शब्द क्या पान है कि मुंह में रखो और धीरे से चबा लो, बिन कर्म के शब्द जो निजधार को कुंठित हुए उन्हें धार दो, बिन कर्म के शब्द जो निजधार को कुंठित हुए उन्हें धार दो, सुनो हर शब्द एक तीर है इसे अर्थ के विष में बुझा लो, बहस की बर्छियों पर टांग कर समस्याओं को मत उछालो। तुम ख्यालों के दिए की रोशनी में लिख रहे अंधी इबारत, तुम ख्यालों के दिए की रोशनी में लिख रहे अंधी इबारत, बांटनी है रोशनी तो अपने हाथों में मसालों को उठा लो, बहस की बर्छियों पर टांग कर समस्याओं को मत उछालो, शब्द क्या पान है कि मुंह में रखो और धीरे से चबा लो। राह बीहड़ है भयानक है यूं अकेले तय नहीं होगा सफर, काफिला बनकर चलो, सो रहे हैं लोग जो उनको जगा लो, बहस की बर्छियों पर टांग कर समस्याओं को मत उछालो, शब्द क्या पान है कि मुंह में रखो और धीरे से चबा लो। कागजों पर खोदते हैं वो कुएं, कागजों पर खोदते हैं वो कुएं, सींचते हैं जो हमारी प्यास को, खोदनी है अब हमें उनकी कबर, हाथ में अपने कुदालें सब उठा लो, बहस की बर्छियों पर टांग कर समस्याओं को मत उछालो, शब्द क्या पान है कि मुंह में रखो और धीरे से चबा लो। मेरी अंतिम गजल है कि इतिहास के पृष्ठों पर ये खून के निशान हैं, इतिहास के पृष्ठों पर ये खून के निशान हैं, बेगुनाह नींव में और नींव पर मकान है, जिसने जितना ज़्यादा चखा खून के सवाद को, ये जहान मानता वह आदमी महान है, स्वार्थ साध लड़ रहा है आदमी पशु बना, स्वार्थ साध लड़ रहा है आदमी पशु बना, उलझने तो हैं मगर क्या सिर्फ ये निदान है, इतिहास के पृष्ठों पर ये खून के निशान हैं। लूटपाट रक्तपात कर रहे पता नहीं, लूटपाट रक्तपात कर रहे पता नहीं, आदमी है आदमी ये वेद है कुरान है, दोस्तों छला न जाए खून फिर शहीद का, दोस्तों छला न जाए खून फिर शहीद का, ये रण का फैसला नहीं मेज का निदान है, इतिहास के पृष्ठों पर ये खून के निशान हैं, बेगुनाह नींव में और नींव पर मकान।
1: काव्यधारा के अंतर्गत अभी हमारे श्रोताओं ने सुना नगीना सिंह का काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं आपको याद दिला दें कि लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में आज आप सुनेंगे सत्यवीरा हांडा के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत। समय रहेगा आज सवेरे 9:25 पर। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
2: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपति भवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासी परिषदोपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमन्त्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढ़

0: मापन योग्य परिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य चत्वारिंशदधिकैकशत कोटि नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं एनडीए सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन् अवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदनन्तरं संपूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन संदेशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मोर्स, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः अष्टोत्तरैकशत प्रसिद्धाः कलाकाराः चतुर्विंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अथ च पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।

0: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और

0: उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसके अंतर्गत आज आप जानकारी सुनेंगे गर्भावस्था में उचित देखभाल विषय पर।
2: आजकल लोग 35 साल के बाद माँ बनना चाहते हैं क्योंकि वो अपने कैरियर को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन डॉक्टर की हैसियत से सही आयु 21 साल से लेके और 30 साल तक सबसे ज्यादा सही रहती है। एक स्वस्थ शिशु की संभावना पूर्ण तरह से ज्यादा होती है अगर महिला 21 और 30 साल के बीच में होती है। उसके बाद साइंस ये मानती है कि माँ के अंडेदानी में से जो अंडा निकलता है वो बूढ़ा होता जाता है धीरे धीरे और बच्चों में विकार ज्यादा आते रहते हैं। तो सही उम्र मैं फिर से जोर दूंगी कि 30 साल से पहले ही और 21 साल के बाद जब माँ का पूरा अपना डेवलपमेंट पूरा हो जाए तभी उसको माँ बनना चाहिए, जब वो बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाए। भारत में शायद ही ऐसे कुछ लोग होंगे जो 21-25 साल से पहले अस्पताल में जाके अपना पूरा चेकअप कराते होंगे। बहुत सारी ऐसी छुपी हुई बीमारियां होती हैं शरीर में जो हम खुद नहीं जानते हैं। कुछ उम्र का भी फर्क पड़ता है, बीमारियां होती भी हैं तो छुप जाती हैं। तो कितना ही अच्छा होता अगर हस्बैंड वाइफ दोनों मेरे पास पहले आते कि हम डॉक्टर साहब इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, फैमिली वे पे चलना चाहते हैं, आप हमें राय दें। लेकिन ऐसा ज्यादातर नहीं होता है और हमारे पास महिला तभी आती है। आजकल इतनी तो जागरूक हो गई हैं महिलाएं, उनको पता है कि पेशाब के 3 बूंद के टेस्ट से वो जान जाती हैं कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। जब वो टेस्ट कर लेती हैं तब वो हमारे पास आती हैं कि अब क्या करना है। ये ही देखा है मैंने यहाँ पर। पहले वही लोग आते हैं जो पढ़े लिखे हैं और मेरे ख्याल में अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो हमारे पास पहले पूछने आते हैं कि अब हम क्या करें। आजकल के जमाने में मैं कहूँ तो डायबिटीज बहुत बड़ी बीमारी है। आप सब ये जानते हैं कि भारत जो है वो डायबिटीज का कैपिटल बनता जा रहा है और सबसे ज्यादा डायबिटीज की वजह से माओं के बच्चे अबॉर्ट होते रहते हैं। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो कुछ छुपी हुई चीजें हैं जो सिर्फ टेस्ट से ही पता चलती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ टेस्ट से ही पता चला सकते हैं कि क्यों ऐसा है कि माँ नहीं बन पा रहे हैं या बच्चे नहीं हो। मैं आपके द्वारा जो भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं उन सबसे ये एक मिन्नत करती हूँ कि जैसे ही वो उनको पता चले कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं वो हमारे पास आए। कुछ एक खून के टेस्ट होते हैं जिसमें सिर्फ एक सुई की चुभन होती है, उसी एक सुई की चुभन से हम उनका ब्लड ग्रुप जान सकते हैं, उनमें कितना खून है वो पता चल जाता है, उनकी शुगर की बीमारी तो नहीं है। आजकल बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं वो हमें पता चल जाता है और हम ये भी जान जाते हैं कि उनके गर्भ में पलने वाला शिशु अभी ठीक है कि नहीं है। ये हम पहले ही विजिट में, जब स्त्री हमारे पास पहली बार आती है, हम उनका ब्लड प्रेशर जांचते हैं, उनका वजन देखते हैं, उनको सलाह देते हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ स्त्रियां होती हैं उनको उल्टियां बहुत होती हैं, बिना डॉक्टर की सलाह लिए हुए बहुत सारी स्त्रियां उल्टियों की दवाई ले जाती हैं और उनसे बच्चे खराब हो जाते हैं। गुजारिश मेरी यही है कि आप डॉक्टर की सलाह से दवाई लें, चाहे वो उल्टी की हो, चाहे कमर दर्द की हो, चाहे आप अब थक गए हैं, थकान हो रही है, उसकी नहीं हो, किसी भी हालत में किसी एक्सरे मशीन के पास भी मत जाएं। बच्चा खराब हो जाता है, बड़ा हो जाएगा तो कैंसर की संभावनाएं बन जाती हैं।

0: एक्सरे के आसपास कभी नहीं जाना होता है। कोई दवाई ऐसी ना लें जो डॉक्टर ना कहे, चाहे वो उल्टी ही क्यों ना हो। सालों हो गए मुझे किसी टेटनस के बच्चे को देखे हुए। हमारी भारत सरकार ने बहुत मेहनत करी है इस बात के लिए कि हम सब गर्भवती महिलाओं को टेटनस के टीके लगाते हैं दो, जब वो 5वें महीने में प्रवेश करती हैं, और उसके 1 महीने के बाद दूसरा टीका लगता है। उससे फायदा हमें ये होता है, 60% महिलाएं गांव में, जो गांव में ही प्रसव करती हैं, वो टेटनस से बच जाते हैं, उनके बच्चे और वो खुद भी बच जाती हैं। तो ये टीकाकरण 5वें महीने में दाखिल करते ही, जैसे 5वां महीना शुरू होता है, पहला टीका लग जाता है, और पहले टीके के 1 से 1.5 महीने के बाद दूसरा टीका लग जाता है, और फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं कि उनको टेटनस नियोनटोरम जैसी कोई बीमारी नहीं होगी।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी हमारे श्रोताओं ने जानकारी सुनी गर्भावस्था में उचित देखभाल विषय पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 7:10 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, जिसके अंतर्गत आज आप जानकारी सुनेंगे लीची बागवानी में समसामयिक कार्य विषय पर।
2: किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं लीची बागवानी में समसामयिक कार्य के संबंध में। किसान भाइयों, हम सभी खेती किसानी करते हैं, साथ ही साथ कुछ हमारे भाई ऐसे भी हैं जो फलों की खेती करते हैं, बाग उन्होंने लगा रखे हैं। तो भाई, आज विशेषतः हम बात करेंगे लीची बागवानी की। भाई देखो, लीची एक बहुत ही अच्छा रसीला और मीठा फल है, जिसे बच्चे बड़े बड़े चाव से खाते भी हैं। किसान भाइयों, लीची की खेती मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में की जाती है। किसान भाइयों, बढ़ती मांग और जलवायु परिवर्तन को देखते हुए लीची उत्पादन में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। किसान भाइयों, साथ ही साथ जैसे जून का महीना इस समय चल रहा है, तो भाई देखो, इस समय हमारी लीची का फल बाजारों में भी है और हमारे किसान भाइयों के पौधों पर फलों के रूप में तैयार है। किसान भाइयों देखो, जून का माह है, फल तुड़ाई और मार्केटिंग हमारे किसान भाइयों को इस फल की करनी होती है। तो भाई, अधिकांश क्षेत्रों में जून में लीची की तुड़ाई होती है और फलों को पूर्ण परिपक्वता पर ही सावधानी पूर्वक तोड़ना चाहिए। किसान भाइयों, हमारे फल क्षतिग्रस्त ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि भाई क्षतिग्रस्त फलों की जो बाजार डिमांड होती है वो कम हो जाती है। तो हमारे किसान भाइयों को ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। समसामयिक कार्यों में इस समय भैया सबसे मुख्यतः चल रहा है कि भाई गर्मी का मौसम है, तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि अपने फल वृक्षों की सिंचाई समय से करें। किसान भाइयों, गर्मियों होने के कारण भैया हम जो है अपने पौधों में लगभग 10 से 15 दिनों के समय अंतराल पर मौसम को देखते हुए करते रहना चाहिए। साथ ही साथ खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन हमें समय को देख के करना चाहिए। किसान भाइयों, फल हमारे पौधों पर लगे हुए हैं, तो भैया उस समय आप फलों की तुड़ाई करने के बाद पौधों को गोबर की सड़ी खाद तथा उर्वरक दें, ताकि नई वृद्धि अच्छी हो सके। किसान भाइयों देखो, जब फल हमारे वृक्षों पर होते हैं, तो भाई कई तरह के कीट रोग हमारे फल वृक्षों को, हमारे फलों को क्षतिग्रस्त करते हैं। तो भाई हम समसामयिक कार्यों में इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे फल वृक्षों में, हमारे फलों में, चाहे लीची का हो या अन्य फल हो, भाई उसको जो है किसी तरह का कोई कीट भैया खराब ना कर दे या कोई रोग हमारे फलों में ना हो। किसान भाइयों, मुख्य बात होती है प्रूनिंग, यानी कि छटाई, जिसे हमारे किसान भाई करते भी हैं। जो बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं या सूखी शाखाएं होते हैं उनको, या जो शाखाएं आपस में टकरा रही हों, तो किसान भाइयों आप उसको भैया पौधे से अलग कर दें या पौधे से काट दें, ताकि भैया हमारे पौधों को एक अच्छा आकार भी मिल सके और साथ ही साथ हमारे जो फल वृक्ष हैं भैया उसमें किसी तरह की रोगग्रस्त शाखाएं या भैया आपस में टकराने वाली शाखाएं ना हों। किसान भाइयों, अब बात आती है मल्चिंग की। पौधों के चारों ओर सूखी घास या जैविक मल्च बिछाएं, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे। किसान भाइयों, आज हम देख

0: देखते हैं कि जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, तो भाई लंबे समय तक अपने पौधों में नमी बनाए रखने के लिए हमें चाहिए कि भैया हम अपने पौधों की जड़ों के आसपास मल्चिंग कर देनी चाहिए। किसान भाइयों, हमारा जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं खरपतवारों पर भैया निर्भर करता है। खरपतवार हमारी फसलों का उत्पादन हो, हमारे फलों का उत्पादन हो, वो कहीं ना कहीं घटा देते हैं। अब बात आती है कि जून का महीना है तो नए पौधों की तैयारी, यानी कि भैया वर्षा ऋतु में रोपण के लिए गड्ढों की तैयारी जून में ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि भाई इस समय मौसम शुष्क होता है और गड्ढों को कितनी दूरी पर हमें बनाना है, कितने आकार का गड्ढा बनाना है, इस तरह से हमें पूरी जो है तैयारी कर लेनी चाहिए। इस तरह से आप यदि अपनी खेती किसानी में जून माह में लीची के बागों में समसामयिक कार्य करेंगे तो आपको अपने लीची के बागों से अच्छा उत्पादन मिलेगा और आप अच्छा लाभ लीची के बागों से कमा सकेंगे। किसान भाइयों, आज तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर अन्य विषयों के साथ अवश्य उपस्थित होंगे। किसान भाइयों नमस्कार।
1: खेती की बातें क्रम में आज आपने जानकारी सुनी लीची बागवानी में समसामयिक कार्य विषय पर। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ विशेष कार्यक्रमों के विषय में।

आज रात्रि 9:30 पर हमारे श्रोता सुनेंगे कंट्री वाइड और इनसाइट। ये दोनों ही कार्यक्रम आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे।

रात्रि 10 बजे सुनिएगा रूपक, जिसके ख्वाबों पर आबाद है नजीबाबाद। रूपक के लेखक हैं अमन कुमार। आज रात्रि 10:30 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश का।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:31 पर हमारे श्रोता सुनेंगे सूचना, ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हमारे श्रोता सुनेंगे नुसरत अली और साथियों के स्वर में कव्वाली। समय रहेगा आज संध्या 7:32 पर। संध्या 6:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत डॉक्टर गजेंद्र सिंह की वार्ता, जिसका विषय है सौर ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम। किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा आज संध्या 6:05 पर, जिसमें आप सुनेंगे विशेष मासिक कार्यक्रम पगडंडी। और श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के संदर्भ में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:18 होने को है, थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। कहा, पूरी होंगी 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है यह अभूतपूर्व कीर्तिमान। भारत और भूटान के बीच और मजबूत होंगे सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंध। राज्य सरकार ने वाराणसी में 2 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए भूटान सरकार के साथ किया MOU। और बीती रात से शुरू हुई बारिश से लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। राज्य में कुछ स्थानों पर आज और कल भी है बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। इस अवसर पर कल नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का यह अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद

0: सामूहिक अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों के आयोजन शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने कल प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस अवसर पर लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक रिपोर्ट।
1: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: आकाशवाणी समाचार। सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने कल वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए भूटान की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और भूटानी अधिकारियों के बीच हस्ताक्षरित MOU के अनुसार परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने भूटान को यह भूमि मात्र 1 रुपए के नाम मात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन EOW की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी, अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों और संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में बताया गया कि जांच, विवेचना और कार्यवाहियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रदेश के गोरखपुर, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, संभल और पीलीभीत सहित कई जिलों में बीती रात से तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज और कल भी कुछ स्थानों पर बारिश तथा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी भी जारी की है। गोंडा जिले के करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र में बीती रात लखनऊ हाईवे पर नारायणपुर के पास एक तेज रफ्तार SUV की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई,

0: जबकि 5 अन्य घायल हैं। वहां की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि यह दुर्घटना कल रात 11:15 उस समय हुई जब एक बेकाबू एसयूवी ने पीछे से 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, कहा पूरी होंगी 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है यह अभूतपूर्व कीर्तिमान। भारत और भूटान के बीच और मजबूत होंगे सांस्कृतिक व आध्यात्मिक संबंध। राज्य सरकार ने वाराणसी में 2 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए भूटान सरकार के साथ किया MOU। और बीती रात से शुरू हुई बारिश से लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। राज्य में कुछ स्थानों पर आज और कल भी है बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद 8:00 प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:31 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है सूचना, ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

सुप्रभात प्यारे श्रोताओं, कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में मैं नेहा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, हर दिन सूरज की नई किरणों के साथ शुरू होती है एक नई उम्मीद, शुरू होता है एक नया दिन और एक नई शुरुआत। और श्रोताओं, आप जानते ही हैं कि हर दिन हम नई जानकारियों के साथ आपके समक्ष लेकर हाजिर होते हैं ये कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि हर बच्चा खास होता है, लेकिन कुछ बच्चे वाकई बहुत स्पेशल होते हैं अपनी मेडिकल चुनौतियों की वजह से। आज हम बात करेंगे एक बेहद दुर्लभ यानी रेयर जेनेटिक कंडीशन के बारे में, जिसका नाम है केबीजी सिंड्रोम। शायद हम में से कुछ लोग ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे श्रोताओं। साथियों, ये एक ऐसी अनुवांशिक स्थिति है जो शरीर के जीन्स में बदलाव के कारण होती है। ऐसे बच्चों के दांतों का आकार सामान्य से काफी बड़ा होता है, चेहरे की बनावट थोड़ी त्रिकोणीय या चौड़ी होती है। ऐसे बच्चे को बोलने, चलने और सीखने में सामान्य से ज्यादा समय लग जाता है और शरीर का कद भी सामान्य से काफी छोटा रह जाता है। हालांकि इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन सही समय पर पहचान और थेरेपी जैसे स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन

0: और सही डॉक्टरी सलाह से इन बच्चों की जिंदगी को आसान और खुशहाल बनाया जा सकता है श्रोताओं। और इसीलिए हर साल 11 जून यानी आज ही के दिन को अंतर्राष्ट्रीय केबीजी सिंड्रोम जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ऐसे बच्चे और उनके परिवारों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है, क्योंकि इन बच्चों को दवाओं से ज्यादा हमारे प्यार, धैर्य और समाज के साथ की जरूरत होती है। तो श्रोताओं, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा है तो उसे कमतर बिल्कुल भी ना आंके, बल्कि उसका हौसला बढ़ाएं और उसे खुशियां दें।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। साथियों, बचपन की मुस्कान में जो खुशी झलकती है वो अक्सर खेल के मैदान से होकर आती है। दौड़ते कदम, खिलखिलाती हंसी और नई नई कल्पनाओं की उड़ान, यही तो है खेल का असली संसार। साथियों, हर साल 11 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित ये दिवस बच्चों को खेलने के अधिकार, उनके मानसिक स्वास्थ्य और समग्र विकास के महत्व को रेखांकित करता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य भी यही है कि सरकारें स्कूलों और समुदायों को बच्चों को खेलने के अधिकारों को संरक्षित और प्राथमिकता देने के प्रति जागरूक हों और बच्चों तथा उनके माता पिता को भी खेल के महत्व को समझाने और खेलों को बढ़ावा देने में मदद मिल सके। इस अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम भी यही संकल्प लेते हैं कि बच्चों को खेलने, सीखने और खुलकर मुस्कुराने का पूरा अवसर देंगे, क्योंकि एक स्वस्थ और खुशहाल और आत्मविश्वासी समाज की नींव एक खुशहाल बचपन से ही रखी जाती है।

0: है कि आसमान से बरसने वाली ये अनमोल बूंदें केवल आनंद ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए जल सुरक्षा का आधार भी बन सकती हैं। बारिश का मौसम आने से पहले हम कुछ छोटी छोटी तैयारी करके लाखों लीटर पानी बचा सकते हैं। श्रोताओं, घर की छतों की सफाई करके, वर्षा जल संग्रहण टंकियों की व्यवस्था करके, सोखता गड्ढा का निर्माण करके, नालियों की सफाई करके और पेड़ पौधों के आसपास जल संरक्षण की व्यवस्था जैसे कदम हमें अभी से उठा लेने चाहिए ताकि आने वाले मानसून की हर बूंद को सहेज कर जल संकट के समाधान में अपना योगदान दे सकें। श्रोताओं, यदि आपके घर, विद्यालय, कार्यालय या किसी सामुदायिक भवन में पर्याप्त खुली जगह है तो वहाँ रिचार्ज पिट या सोखता गड्ढा बनाया जा सकता है। इससे वर्षा का पानी सीधे जमीन में समा कर भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। गांव में तालाबों, कुओं और जलाशयों की समय समय पर सफाई भी बेहद जरूरी है। साथियों, बरसात का जल यदि इन जल स्रोतों में संग्रहित किया जाए तो पूरे साल जल की उपलब्धता बनी रह सकती है। याद रखिए साथियों, पानी की हर एक बूंद कीमती होती है। इसका संरक्षण करना केवल सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सब का कर्तव्य है। आज की छोटी सी पहल आने वाले कल को सुरक्षित और समृद्ध बना सकती है, क्योंकि बूंद बूंद को जो बचाएगा वही भविष्य संवार पाएगा। पानी ही है जीवन का असली आधार, इसे सहेजना है हम सबका दायित्व और अधिकार।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आइए अब एक नजर डालते हैं 11 जून को इतिहास के पन्नों में दर्ज उन घटनाओं पर जो 11 जून का इतिहास बन गई। साल 2008 में आज ही के दिन नासा ने फर्मी टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य ऊर्जा गामा किरणों का अध्ययन करना था। इस वेधशाला ने ब्लैक होल, डार्क मैटर व न्यूट्रॉन तारों के रहस्यों को समझाने के नए रास्ते खोले हैं। विशाल फर्मी बबल्स की खोज इसकी ऐतिहासिक उपलब्धि रही है श्रोताओं। और श्रोताओं, 11 जून 1770 में आज ही के दिन ब्रिटिश कैप्टन जेम्स कुक का जहाज ऑस्ट्रेलिया के पास चट्टान से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बचा था। और इसी खतरनाक हादसे के कारण ही दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अजूबे ग्रेट बैरियर रीफ की ऐतिहासिक खोज हुई थी। बात करते हैं आज के दिन जन्मे महान व्यक्तियों की, तो सबसे पहले हम नाम लेंगे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे महान स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी और कवि राम प्रसाद बिस्मिल का, जिनका जन्म 11 जून 1897 में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए 9 अगस्त 1925 को प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई थी। श्रोताओं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जैसी अमर पंक्तियों के लेखक और महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को 30 वर्ष की उम्र में फांसी दे दी गई थी। और श्रोताओं, 11 जून 1989 को गुजरात के राजकोट में जन्म हुआ था पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी का। साल 2019 में आपने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था।

उम्र में फांसी दे दी गई थी। और श्रोताओं, 11 जून 1989 को गुजरात के राजकोट में जन्म हुआ था पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मानसी जोशी का। साल 2019 में आपने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था।

गीत के बाद एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। श्रोताओं, आइए अब एक नजर डालते हैं आज के अखबारों की कुछ खास सुर्खियों पर। पहले बात करते हैं दैनिक जागरण की। सोनप्रयाग गौरीकुंड मार्ग पर जाम से यात्री परेशान, ये पहली खबर है दैनिक जागरण से। केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आने के बावजूद भी सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच यातायात व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतरी हुई नजर आ रही है। मात्र 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में यात्रियों को 3 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है, जिससे आम जन को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगली खबर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 17 जून से शुरू होगी कार्गो विमान सेवाएं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से 17 जून को पहला कार्गो विमान उड़ान भरेगा। एक और खबर है 60,000 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती। लखनऊ से ये खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ई अधियाचन पोर्टल क्रियाशील होने के बाद विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तैयारी तेज की गई है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग बड़ी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुट गया है। श्रोताओं, बात करते हैं हिंदुस्तान की।

पहली खबर है, वैश्विक मानकों के हिसाब से काम करना होगा, ये कहना है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के 12 वर्ष की सफलताओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हम वैश्विक मानकों के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं। अगली खबर है, अमेरिका ने हॉर्मुज में फिर की बमबारी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अपाचे हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अमेरिका और ईरान में बुधवार को संघर्ष और तेज हो गया। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने तड़के ईरान पर बम बरसाए, वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में कुवैत, बहरीन और जॉर्डन स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। इससे पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। एक और खबर है कि हाथों के बल 100 सीढ़ी उतरा शख्स। नेपाल के 31 वर्षीय एथलीट हरी चंद्र गिरी ने हाथों के बल महज 44.71 सेकंड में 100 सीढ़ियां उतरकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ये कारनामा उन्होंने चीन के चोंगकिंग में अंजाम दिया। एटीएम के जरिए पीएफ से निकासी की सुविधा जल्द। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को जल्द ही एटीएम व यूपीआई के जरिए निकासी की सुविधा मिलने जा रही है। इसको लेकर सॉफ्टवेयर अपडेट करने से लेकर अन्य तकनीकी काम पूरे किए जा चुके हैं। श्रोताओं, एक नजर डालते हैं अमर उजाला पर। अमर उजाला की पहली खबर है, डाटा सेंटर में आग, कई शहरों में गूगल क्लाउड सेवाएं प्रभावित। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित थर्ड पार्टी डाटा सेंटर में आग लगने के कारण गूगल क्लाउड की सेवाएं बुधवार को देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में बाधित रहीं। एक और खबर है, सेना बढ़ा रही ताकत, 23,000 करोड़ से 300 K9 तोपों की होगी खरीद। चीन और पाकिस्तान से सटी सीमाओं पर अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए सेना 23,000 करोड़ के रुपए की लागत से 300 K9 वज्र स्वचलित तोपों की खरीद करने जा रही है। अगली खबर है, पीएम मोदी और ट्रंप की G7 बैठक में हो सकती है मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में 15 से 17 जून तक होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, H-1B वीजा और ऊर्जा सहयोग प्रमुख मुद्दे रहेंगे। और श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के अखबारों की कुछ खास सुर्खियों की, और अब कार्यक्रम का वक्त समाप्ति की ओर है, तो चलते चलते आपको सुनवा देते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

श्रोताओं, किशोर कुमार की इसी खूबसूरत आवाज में इस गीत के साथ आज का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ अब यहीं संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी नेहा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार प्रभात सुनेंगे।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल

0: ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
1: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
4: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है तो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
3: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
5: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
3: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
7: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
8: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
9: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
10: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्य ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब ₹1,000 तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से 10 दावेदार 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. U.S. military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia.
12: And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics.

0: विकसित भारत के नजरिए की समत आगे बढ़ रहा है और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के वजीर आजम के रहनुमाई वाले मंत्र से मुल्क भर में लोग बाहम मुंसलिक हुए हैं। भारत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क्यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के वसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने किसानों खवातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के उन्वान से एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम गरीबों की बहबूद के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं।
1: गुज़श्ता 12 साल के दौरान नरेंद्र मोदी हुकूमत ने गरीबों की बहबूद और समाजी तहफ़ को मुस्तहकम करने के लिए कई अहम स्कीमें नाफिज की हैं। गरीबों को मकानात मुहैया करने पर मोदी हुकूमत ने खास तवज्जो दी है। खुराक की यकीनी फराहमी के शोबे में हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुल्क भर में 81 करोड़ से ज्यादा मुस्तफिदीन को मुफ्त अनाज फराहम कर रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उड़ीसा के कालाहांडी की इंद्रामानी नायक ने बताया कि गरीब लोग इस स्कीम से इस्तेफादा कर रहे हैं।
2: गरीब कल्याण अन्न योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं। अभी जो 5-5 किलो हमारा परिवार खूब खुश पूरा बहुत आराम से रह रहे हैं।
1: हिफ्जान सेहत से मुतालिक दुनिया की सबसे बड़ी अवामी स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इक्तिसादी तौर पर कमजोर कुनबों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज फराहम कर रही है। साथ ही जन औषधि केंद्रों से जेनरिक दवाएं कम कीमतों पर मुहैया की कराई जा रही हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के बारामूला के फैयाज अहमद ने बताया कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गरीबों को मुश्किल तरीन हालात के दौरान इलाज हासिल करने में सहूलत फराहम की जा रही है।
3: मैं एनडीए सरकार और मोदी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सारी जो स्कीमें चलाई जिसमें मुल्क के अंदर हिस्ट्री में पहली बार एक गरीब को सीधा बरह रास्त फायदा पहुंचा डिजिटलाइजेशन के जरिए। आयुष्मान भारत की बात करना चाहूंगा, मोदी जी की सरकार से पहले मुल्क में यह होता था अचानक किसी की बीमारी का पता चलता था या बीमारी के टाइम जो ऑपरेशन सर्जरी तकलीफ होती थी उन्हें या तो जमीन बेचनी पड़ती थी या घर की कोई कीमती शय बेच कर वो चीजों का पैसे का बंदोबस्त करके ऑपरेशन और बाकी चीजें कराने पड़ते थे। लेकिन जब से आयुष्मान भारत का स्कीम को मोदी जी ने लॉन्च करा है तब से ये चीज पूरे मुल्क में नहीं है।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 55 लाख से ज्यादा खवातीन को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन फराहम किए जा रहे हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी अपनी मेंबर कंपनियों के जरिए मगरबी बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है जिससे रियासत की इक्तिसादी सलाहियत और तरक्की के इम्कानात में सनतों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी होती है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ब्रिजभूषण अग्रवाल की ज़ेर क़यादत सनती इदारे के एक वफद और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के दरमियान नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान इस तजवीज़ पर तबादले ख्याल किया गया। मज़कूरा ऐवानी तजारत ने कहा है कि मगरबी बंगाल में पुरउम्मीदी और मुस्बत रफ्तार का नया माहौल देखने में आ रहा है जिससे माशी तरक्की की रफ्तार तेज करने में मदद मिल सकती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की और ओलंपिक्स खेल के बड़े मकासद मुतय्यन करने पर जोर दिया है। कल नई दिल्ली में मुनाकिदा एनडीए कॉन्क्लेव में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने नौजवान एथलीट्स की हुसूल याबियों और भारत में खेलों की तेज रफ्तार तरक्की को उजागर किया।
4: भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये खाती और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी।
0: अमरीकी फौज ने कल ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान की लगातार जारहियत के

0: खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है।
0: ज्यादा अफराद को गुर्बत से बाहर लाए जाने से ये जाहिर होता है कि सरकार की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और वो सही समत में आगे बढ़ रही है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मगरबी बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मशिक मगरबी बंगाल के ज़ेले हिमालयी खित्ते उड़ीसा केरला और माही में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की है और ओलंपिक खेलों के लिए बड़े निशाने तय करने पर जोर दिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 8:45 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है गीत संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम गोल्डन हिट्स में। साथियों, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है जिसमें कभी खुशियों की धूप होती है तो कभी उम्मीदों की छांव, और जब मन में कुछ नया करने का जज्बा हो तो हर रास्ता आसान लगने लगता है।

जिंदगी आ रहा हूँ मैं। मशाल फिल्म का एक खूबसूरत गीत हमारे श्रोताओं ने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। श्रोताओं, जावेद अख्तर का लिखा यह गीत था और संगीत था हृदयानंद मंगेशकर का। दोस्तों, जिंदगी का सफ़र और भी खूबसूरत हो जाता है जब कोई अपना हर कदम पर साथ निभाने का वादा करता है। रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत ही विश्वास है और साथी का साथ है। जब दिल से कोई कहता है हर खुशी और हर मुश्किल में तुम्हारा हाथ थामे रहेगा, तो जिंदगी की राहें और भी ज्यादा आसान लगने लगती हैं। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म आ गले लग जा से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गीत है। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की है और धुन तैयार की है आरडी बर्मन ने।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। दोस्तों, जब प्यार की बात हो तो महबूब की हर अदा, हर मुस्कान और उसकी सादगी भी दिल को छू जाती है। प्रेम में अक्सर प्रिय का सौंदर्य प्रकृति की सबसे सुंदर चीजों से तुलना पाता है। कभी चांद से, कभी चांद की चांदनी से, कभी नदियों से, कभी झरनों से, तो कभी फूलों से।

कभी कभी। इस फिल्म का एक गीत हमारे श्रोताओं ने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। श्रोताओं, साहिर लुधियानवी का लिखा एक गीत था और संगीत खय्याम का था।

कार्यक्रम गोल्डन हिट्स हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और श्रोताओं, अब बारी है ऐसे गीत की जिसमें प्यार की मिठास, अपनापन और दिल की सच्ची पुकार सुनाई देती है। जब कोई दिल के बेहद करीब हो तो उसे पुकारने के लिए शब्द नहीं बल्कि इस गीत के बोल जैसे एहसास चाहिए होते हैं। गीत है फिल्म कारवां से। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है। मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना और संगीत आरडी बर्मन का है।

श्रोताओं, जब प्यार अपनी पूरी रौनक पर हो, जब नजरों की भाषा शब्दों से ज्यादा असर करने लगे और जब दो दिलों की दुनिया में बस एक दूसरे का ही एहसास रह जाए, तो माहौल कुछ इस तरह का बन जाता है। दोस्तों, वक्त है कार्यक्रम के अंतिम गीत का। ये गीत हमने लिया है फिल्म दो रास्ते से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत है। आनंद बख्शी की शब्द रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल सुनेंगे।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए चंदौली और बलरामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार त्रिपाठी का।
2: चंदौली में विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह व साधना सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में फलदार आम के पौधे का रोपण किया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से अधिक वृक्षों को रोपित करने की अपील करते हुए कहा कि वृक्ष पर्यावरण को सुरक्षित रखने के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के बारे में राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने बताया कि जनपद में स्वच्छ व समृद्ध पर्यावरण को बढ़ावा देने हेतु इस वर्ष की थीम एक पेड़ माँ के नाम पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। उन्होंने लोगों से पौधरोपण की अपील करते हुए कहा कि अन्य लोगों को भी वृक्षारोपण हेतु जागरूक करें और उन्हें पर्यावरण के महत्व के बारे में भी बताएं। राज्यसभा सांसद ने बताया कि
3: प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में ये अभियान चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम। बहुत जरूरत है कि पर्यावरण को हम बचाएं। धरती जिसको हम माँ के रूप में देखते हैं, उनकी रक्षा और सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है।
2: मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई ने बताया कि जिले भर में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का उद्देश्य है कि इसमें अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो। गत दिनों चंदौली के जिला अधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने नारायणपुर पंप कनाल नहर में सफाई एवं मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण में लौदा गाँव के पास नहर में साइड स्लोप एवं ड्राइंग के अनुसार नहर की चौड़ाई, गहराई और किनारों का ढलान कार्य की गुणवत्ता परखी। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि नहर के किनारे तटबंध की मिट्टी को ठीक ढंग से दबाएं, जिससे नहरों में पानी के दबाव से तटबंधों का कटाव न हो। इसके अलावा उन्होंने नहर में पक्की दीवार निर्माण का एवं उसकी मोटाई और मजबूती की भी जांच की। उन्होंने सहायक अभियंता अनुराग सिंह को निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कोताही न बरतने और कार्य को तय मानक में तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्य पूर्ण होने पर टेक्निकल टीम से जांच सुनिश्चित होगी। यदि निर्माण में गुणवत्ता की कमी और अंतिम छोर तक पानी न पहुंचने जैसी समस्या आई तो संबंधित के खिलाफ विभागीय जांच और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मानकों के विपरीत घटिया सामग्री का उपयोग या तय समय में काम पूरा न करने पर ठेकेदारों का भुगतान रोकने, जुर्माना लगाने के साथ ही ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता चंद्र प्रभा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। विगत दिनों चंदौली के साहबगंज विकास खंड के मसोई गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी के नेतृत्व में कृषि वैज्ञानिकों ने चौपाल लगाई। चौपाल में स्वस्थ मिट्टी, सशक्त किसान, समर्थ भारत और विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ माँ के नाम के तहत बृहद वृक्षारोपण अभियान के बारे में लोगों को किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र एवं जिला उद्यान विभाग की ओर से आयोजित चौपाल में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित उर्वरकों के प्रयोग, जैविक एवं प्राकृतिक खेती और मृदा की उर्वरता बढ़ाने के विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ वैज्ञानिक अभयदीप गौतम ने कृषकों को धान के बीज शोधन की विधि, प्रमाणिक बीज की उपलब्धता, धान की नर्सरी का प्रबंधन और धान में लगने वाले प्रमुख रोगों एवं उसके नियंत्रण उपायों के बारे में विस्तार से बताया। उद्यान वैज्ञानिक मनीष सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व, वृक्षारोपण की आवश्यकता, फलदार पौधों के रोपण की विधि, गड्ढों की तैयारी एवं खाद प्रबंधन के विषय में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। जिला उद्यान अधिकारी शैलन दुबे ने किसानों को उद्यान विभाग से संचालित विभिन्न योजनाओं, पौधरोपण कार्यक्रमों और सब्जी उत्पादन की उन्नत तकनीकों की जानकारी दी। कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि
4: खेत बचाओ अभियान, इसके अंतर्गत हम लोग जो किसानों को हम लोग अंधा

0: उन जो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी संतुलित उर्वरक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उसी के परिपेक्ष में पिछले एक माह से एक जागरूकता कार्यक्रम चल रहा था संतुलित उर्वरकों का प्रयोग एवं प्रबंधन, उसी की कड़ी में अब यह खेत बचाओ अभियान का कैंपेन चल रहा है जो कि 1 से 31 जून तक चलेगा। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती तकनीकी दे रहे हैं जो उनके पैकेज हैं प्राकृतिक खेती के बारे में, उनका प्रयोग कैसे करें, और हम दलहनी फसलों का समावेश कर रहे हैं हरी खाद बनाने के लिए। सनई ढैसा के साथ साथ उर्द मूंग के बारे में किसानों को जागरूक कर रहे हैं।
1: चंदौली के जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया कि जनपद में खरीफ फसलों के लिए धान व ढैचा के बीज और विभिन्न उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने किसानों से अपील किया है कि वे किस अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी आवश्यकता अनुसार ही उर्वरकों की खरीद करें, यूरिया का अधिक मात्रा में प्रयोग न करें।
2: चंदौली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राम कुमार मिश्रा का।
3: बलरामपुर में विकास कार्यों की हकीकत देखने के लिए जिलाधिकारी द्वारा लगातार गांव का भ्रमण किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन द्वारा विकास खंड हरैया सतघरवा के नेपाल सीमा से सटे ग्राम बारहवा का भ्रमण कर ग्राम में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उन्हें मिल रही सुविधाओं एवं योजनाओं के लाभ के संबंध में फीडबैक प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने ग्राम में पेयजल, विद्युत, सड़क, राशन वितरण, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाए तथा किसी भी पात्र व्यक्ति को योजनाओं से वंचित न रखा जाए। बलरामपुर में यूपी बोर्ड, सीबीएसई एवं आईएससी बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर जनपद का नाम रोशन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में जनपद स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक पलटू राम ने कहा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में नकलविहीन एवं पारदर्शी परीक्षा प्रणाली स्थापित की गई है जिससे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का वास्तविक सम्मान प्राप्त हो रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सैनिक बंधु की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जनपद के पूर्व सैनिकों एवं उनके परिजनों की समस्याओं, सुझावों एवं विभिन्न मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने उपस्थित पूर्व सैनिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी तथा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनपद बलरामपुर में सरकारी गेहूं के केंद्रों पर इस वर्ष खरीद के लक्ष्य को पार कर लिया है। 15 जून तक खरीद की अवधि निर्धारित है लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक गेहूं खरीद कर ली है। बलरामपुर में 17,500 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया था जिसके सापेक्ष अब तक 18,300 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, यानी लक्ष्य के मुकाबले 105% खरीद दर्ज की गई है। इस अभियान से अब तक 3,532 किसानों को लाभ मिला है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी उमेश मणि त्रिपाठी ने बताया कि सभी किसानों के खातों में भुगतान भेज दिया गया है। 152 किसानों का भुगतान अगले 2 दिनों में कर दिया जाएगा। बताया कि अभी 15 जून तक गेहूं की खरीद जारी रहेगी।
4: 300 एमटी गेहूँ की खरीद अब तक कर ली है जो कि लक्ष्य का 105% है। बाकी सभी किसानों से हमारी अपील है कि जो भी किसान बंधु गेहूँ विक्रय चला गए हैं वो अपना गेहूँ निकटतम क्रय केंद्र पर ले जाएं और विक्रय कराएं।
3: वहीं गेहूँ के केंद्र मंडी समेत भगवतीगंज में गेहूँ बेचने आए किसान विजय कुमार ने कहा कि सरकार की अच्छी व्यवस्था है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बलरामपुर के तहसील तुलसीपुर अंतर्गत ग्राम मधनगर बिलोहा में आयोजित भव्य कार्यक्रम में जनपद को 293.95 करोड़ रुपए लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर

0: बलरामपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 1 जून से 30 जून तक 2026 तक स्वनिधि महोत्सव विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जनपद की सभी नगर निकायों में लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी न्यायिक परियोजना निदेशक जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा बताया गया है कि शासन के निर्देशों के क्रम में आयोजित इस विशेष अभियान में पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण कर उन्हें 15,000, 25,000 एवं 50,000 रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बलरामपुर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राज्य सेक्टर के विभिन्न मत्स्य योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 से मत्स्य विभाग बलरामपुर द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक मत्स्य पालक एवं पात्र लाभार्थी विभागीय पोर्टल पर 28 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बलरामपुर में भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी अस्पतालों में हीट वेव से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लोगों को बचाव के लिए जागरूक भी किया जा रहा है एवं किसी प्रकार की दिक्कत होने पर तत्काल नजदीकी अस्पताल में संपर्क करने को कहा जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। दिन के 9:25 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सत्यवीर हांडा के स्वर में रूहेल खंडी लोकगीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है में आज आप सुन रहे हैं सत्यवीरा हांडा के स्वर में रुहेल खंडी लोकगीत।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
3: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं सत्यवीरा हांडा के स्वर में रुहेल खंडी लोकगीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं सत्यवीरा हांडा के स्वर में रुहेल खंडी लोकगीत।

मुरली बजाए घनश्याम, राधा नाच रही। श्रोताओं, इसी लोकगीत के साथ आज का लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, जिसके अंतर्गत आज आपने सुने सत्यवीरा हांडा के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर। दिन के 10 बजे हैं श्रोताओं, माफ़ कीजिएगा, दिन के 9:50 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है बात आसपास की। वाचन स्वर और संकलन है दिव्यम कर्णवाल का।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आसपास की में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यम कंडवार
1: और मैं इशिका कौशिक।
0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बात आसपास की हमारा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम हमारे आसपास हो रही घटनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, साथ ही स्थानीय समस्याओं और मुद्दों पर भी आपका ध्यान केंद्रित करते हैं।
1: श्रोताओं, आज हम दो रोचक और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे उस उत्पाद की जो हमारे देश की आत्मनिर्भरता के ताने बाने को कपड़ों पर तराशती है। आज हम उस कैची की बात करने वाले हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, जब कभी हम ट्रेन के माध्यम से मेरठ सिटी या मेरठ कैंट जंक्शन पर उतरते हैं तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत स्टॉल पर एक चीज बहुत चमकती है, वह है मेरठ की विश्व प्रसिद्ध कैची। जी हाँ, यह कोई मामूली औजार नहीं है, यह देश का पहला पूरी तरह हाथ से बना ऐसा औजार है जिसे भारत सरकार ने GI टैग अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया हुआ है।
1: लगभग 350 साल पुराना मुगल कालीन इतिहास, गाड़ियों का पुराना कबाड़ लोहा और पीतल के टुकड़ों को पिघलाकर बनाई जाने वाली यह कैची आज सस्ते चाइनीज इम्पोर्ट के सामने कैसे डटी हुई है, इसी की पूरी कहानी लेकर आज हम हाजिर हैं। तो श्रोताओं, चलिए सीधे चलते हैं मेरठ के बाजारों में, बात करते हैं इस उद्योग से जुड़े मुख्य व्यवसायिकों से।
0: सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका नाम।
2: मेरा नाम HM मित्तल।
0: कैची जो हमारा मेरठ का ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है, उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके विषय में थोड़ा बताइए।
2: सर, हमारे फादर ने स्टेब्लिश किया था सन 1939 में, ये करीब करीब 90 साल पार कर चुका है। ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है। पहले रिटेल काउंटर था हमारा सदर बाजार मेरठ में, के बाद हमने 1976 पूरे इंडिया में सप्लाई करने का काम शुरू।
0: सर, आंकड़ों में देखा रहे तो हमारा टर्नओवर कितना होगा?
2: अपना टर्नओवर कोई खास नहीं है क्योंकि हम लोगों का तो सेल इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि चाइनीज माल ज्यादा बिकता है और धीरे धीरे स्लंप होता जा रहा है।
0: इसके अलावा क्या समस्या हमारे लिए इस उद्योग में है?
2: GST इतना हैवी है, हम लोगों को कॉटन इंडस्ट्री पर GST 18% देना पड़ रहा है। 18% कम नहीं होता है, कैंची को 35-40 रुपए टैक्स होता है, जाना आसान खेल नहीं।
0: सर, जैसे मेरठ की स्केची को साल 2013 में देश का पहला हस्तनिर्मित औजार होने का GI टैग भी मिला, तो क्या इससे हमारे बिजनेस को कोई बूस्ट मिला?
2: कुछ असर का कुछ असर नहीं, वो तो एक्चुअली में

0: कस्टमर को तो सस्ता चाहिए और उसको जहाँ भी सस्ता मिलेगा वो सस्ता लेगा। अगर हमारी कैंची 300 रुपए की है, एक उसको चाइनीज 200 में मिलती है, तो हमसे 300 वाली कौन लेगा।
1: क्या सर क्वालिटी
0: उस
1: में भी कुछ अंतर है हमारी और चाइनीज में?
0: हमारी क्वालिटी में अंतर क्यों नहीं है, हम लोग पीतल लगाते हैं, हैंडमेड आइटम है सब। कॉस्टिंग वाइज जो बाद में उसका अफेक्ट है, हमारी कैंची में ज्यादा बढ़िया कैंची है, ड्यूरेबल है, उसकी लास्टिंग अच्छी है।
1: श्रोताओं, मेरठ की कैंची की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दादा खरीदता है और पोता इस्तेमाल करता है। जी हाँ, ये इतनी टिकाऊ होती है। लेकिन आज जब बाजार में चाइनीज कैंचियों का दौर है, तो इस पुश्तैनी काम को हमारी नई पीढ़ी कैसे संभाल रही है, इसी को जानने के लिए आइए बात करते हैं एक युवा व्यवसायी से, उनके विचार और साथ ही साथ जानते हैं उनकी समस्याएं।
2: सर, शुरुआत के दौर से आज के डिजिटल दौर में आप क्या बदलाव देख रहे हैं?
0: तो देखिए, हम लोग का जो सीजर है वो 90% हैंडमेड है, तो मशीन का मतलब एज सच कोई
2: कुछ
0: रिक्वायरमेंट है नहीं,
2: भी
0: अपार्ट ऑन द ग्राइंडर एंड ऑल दैट सब, वो तो है ही। लेकिन ग्राइंडर पे भी ये नहीं है कि मतलब हमने मशीन में डाला और सीजर रेडी होकर आ जाएगा। उसमें बंदा सामने बैठेगा, वो मैनुअली ही करेगा, उस ग्राइंडर पे मैनुअली ही चलवाएगा। जिस पार्ट पे उसको काम करना है वो उस पार्ट पे काम करेगा। मार्केटिंग ये है, जरूर थोड़ी सी मतलब डिजिटल आ गई है, बहुत सारे पोर्टल्स आ गए हैं जिसपे एडवर्टीजमेंट करके हमारे पे बायर्स आते हैं अपना रिक्वायरमेंट लेके, तो ये सब फायदा है डिजिटलाइजेशन का। तो
1: आपने ग्राइंडर का जिक्र किया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक जो हमारी कैची है उसको बनाने में क्या प्रक्रिया रहती है और कितनी मेहनत लगती है इसके पीछे?
0: अगर आप सब प्रोसेसेस पूछेंगे ना एक कैंची को बनाने में, तो मतलब वो अराउंड 280 to 290 हैंड्स में जाएगी, तब जाके रेडी होगी। मतलब जैसे सर, सबसे पहले आप इनिशियली आप सोच लीजिए कि जैसे ब्रास हैंडल सीजर है, हैंडल सीजर का मतलब हो गया हैंडल ब्रास का है और ब्लेड तो कार्बन फाइबर, तो सबसे पहले तो वो मोल्डिंग अलग अलग हो गई दोनों की, फिर उसके बाद उन दोनों का ज्वाइंट होगा विद रिवेट, फिर उसके बाद दो सेपरेट ब्लेड्स हो गए, उन दोनों को अटैच कराया जाएगा थ्रू नट बोल्ट। फिर उसके बाद फर्स्ट ये आएगा कि पहले एक बारी फिटिंग करके मतलब आपकी सीजर जो है वो फ्लो में है, ब्लेड आपस में मतलब बिल्कुल अटक नहीं रहे, तो सबसे पहले तो उस पोजीशन में ला दिया, फिर उसके बाद फिनिशिंग का काम शुरू होएगा। तो ये है,
2: कितना
0: ऐसे ऐसे करके अगर आप कहें तो सब प्रोसेसेस तो मतलब 250+ तो है ही।
2: समय लगता है एक कैची को बनने में?
0: मैक्सिमम 4 to 5 days, अगर बिल्कुल
2: फाइव
0: कंटिन्यूएशन में सारे काम चले मैक्सिमम 4 to 5 days।
2: आप इस पुश्तैनी बिजनेस की कमान संभाल रहे हैं एक तरह से,
0: राइट।
2: तो सर आज जब एक युवा इस ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग से दूर भाग रहा है, तो सर आपने मतलब इसको करियर किस तरह से चुना है?
0: मैं अपने लिए कहूँ तो हमारी सीजर का ये पता है कि ट्रेडिशनल सीजर यही है, क्वालिटी वाइज सुपीरियर यही है। आप मतलब ये सोच लीजिए कि ड्यूरिंग कोविड 6 साल पहले इतना पीक पे काम आया था वापस, तो हम लोगों को लगा था कि ये रिवाइव कर गई इंडस्ट्री अब फिर से, क्योंकि डिमांड बढ़ी थी, लोगों पे सेंटिमेंट आया था चाइनीज प्रोडक्ट नहीं लेना है। तो वो 2 साल 2.5 साल तक इतना पीक आया था, हम लोग को लगा कि भाई अच्छे से रिवाइव कर गई, प्री कोविड से भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। फिर उसके बाद वापस वही कम होता गया सेंटिमेंट। चाइनीज सीजर इम्पोर्टेड सीजर कह के बिकती है, वहां से तो मशीन से बन के आ रही है, वो सामने रख के हम सेल करते हैं मार्केट में, उतना कैंची हमने काफी लॉन्च कर रखी है उस करके। लेकिन इंडियन सीजर ट्रेडिशनल सीजर इज रिपेयरेबल, तो दोबारा आप लगवा सकते हैं, धार शार्पनिंग हो सकती है उसकी। लेकिन चाइनीज सीजर अगर एक बारी खराब हुई तो वो यूज एंड थ्रो है।
1: जैसे आपने अभी कुछ समय पहले एक स्टेशनरी के उत्पाद के तहत अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करा मेरठ जंक्शन पे, तो इससे क्या कुछ इम्पैक्ट आया बिजनेस में?
0: इम्पैक्ट मतलब मेरे को अराउंड 2 ईयर्स हो चुके हैं मतलब काउंटर लिए हुए। मेरा देखिए वहाँ की रिटेल सेल से कोई मतलब नहीं है, वो ऐसा है कि मतलब एक्सपेंसेस निकल रहे हैं वहां के और थोड़ा बहुत प्रॉफिट, लेकिन जो मेरे होलसेल के कस्टमर्स वहां से बन रहे हैं वो मेरे लिए बोनस है। पिछले 2 साल में इतना सक्सेस नहीं आया है, लेकिन हाँ जिसको पता है कि मेरठ की कैंची है फेमस, आसपास के जो स्टेशन 200 किलोमीटर का रेडियस में आप मान लीजिए कि बंदे आते हैं यहाँ के होलसेल मार्केट में से सीजर लेके जाएंगे, वो आए तो उनसे मेरा कॉन्टेक्ट बन गया, कुछ को मैंने सप्लाई भी किया है, रिपीट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। से मतलब ये है कि होलसेल के मेरे कस्टमर्स बने हैं कुछ, वो बोनस है मेरा, वो फायदा हुआ है।
1: आप जनता को भी एक मैसेज देना चाहेंगे अपने एंड से?
0: केवल एक यही मैसेज है कि आत्मनिर्भर भारत को सक्सेसफुल जनता के हाथ में है बनाना। जब इंडियन प्रोडक्ट्स की ही डिमांड होगी या इंडियन प्रोडक्ट ही मांगे जाएंगे शॉप पे जाके, तो ऑब्वियसली सक्सेस होने के बहुत तगड़े चांसेस हैं।
3: तो श्रोताओं, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की ओर। श्रोताओं, किताबें केवल जानकारी का स्रोत नहीं होती, बल्कि वे हमारे विचारों को नई दिशा भी देती है। इन्हीं किताबों तक सहज पहुंच उपलब्ध कराते हैं पुस्तकालय। आइए सबसे पहले जानते हैं पुस्तकालय के संरक्षक एवं सेवानिवृत्त सैनिक श्री अवधेश कुमार जी से।
4: मैंने आके लगभग 1 साल पहले ड्रीम लाइब्रेरी की शुरुआत करी थी, और यहाँ हर तरह के बच्चे आते हैं हमारे पास, यूपीएससी के भी हैं, यूपी पुलिस के भी हैं, यूपी पुलिस एसआई के भी हैं, नीट के भी हैं।

0: जेई के भी हैं।
1: सर आपने जब लाइब्रेरी शुरुआत करी थी तो आपका उद्देश्य क्या था?
0: मेरा उद्देश्य यही था कि बच्चों को अच्छा माहौल दिया जाए पढ़ने के लिए, शांत वातावरण बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बस यही था। और बच्चे शिक्षा में अपना आगे देश के लिए कुछ करने का हौसला हो।
1: चलिए बात करते हैं यहाँ उपस्थित कुछ छात्रों से। आपका नाम?
2: मेरा नाम रानू राजपूत।
1: आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और लाइब्रेरी में अब तक का आपका अनुभव कैसा?
2: मैं जो है अभी यूपी लेखपाल के लिए तैयारी कर रहा हूँ और लाइब्रेरी का माहौल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गांव में आप देखते हैं कि हर तरह की चीजें होती है। हर कमरा जो है, कोई ईंधन रखने का कमरा है, गेहूं रखने का कमरा है, यहाँ तक कि जो उपले रखने का वो भी कमरा होता है। लेकिन वहां पर क्या है कि एक पढ़ाई के लिए जो एनवायरमेंट चाहिए, जो एक पढ़ाई का कमरा है, वो बच्चे को नहीं मिल पाता है। इसीलिए बच्चा क्या सोचता है कि मेरे को एक ऐसा एनवायरमेंट मिले जहां मैं बैठ के आराम से अपने आप को तैयार कर पाऊं, और वो चीज यहीं आकर मिलती है।
3: मेरा नाम शिवम दत्ता पवार है, मैं JEE की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे 3 to 4 months हो गए लाइब्रेरी में आते हुए। जो मेरा घर है वो मेन मार्केट में है, तो उधर बहुत ही नॉइस वगैरह रहती है, तो एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए। थोड़ा डिस्टरबेंस रहता है, जो घर में फैमिली में बातचीत वगैरह उनका चलता रहता है, उसमें भी डिस्टर्बेंस में हम पढ़ नहीं पाते। तो इसलिए यहाँ लाइब्रेरी में साइलेंस है, AC है, फैसिलिटीज सारी प्रोवाइड कर रखी है, Wi-Fi है, तो मतलब एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला हुआ है पढ़ने के लिए।
1: श्रोताओं, आज बात आसपास के इस विशेष अंक में हमने जाना कि कैसे एक छोटी सी कैची हमारे पूरे वेस्ट यूपी के हुनर की साख को पूरी दुनिया में बनाए हुए है। साथ ही किस तरह छोटे गांवों और कस्बों से भी छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके उच्च पदों पर चयनित हो रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
4: श्रोताओं, आज के लिए बात आसपास की के इस खास अंक में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे अर्थात इशिका कौशिक
1: और दिव्यम कंडवाल को दीजिए अनुमति।
4: कल फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद। नमस्कार।
5: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे बात आसपास की। वाचन स्वर और संकलन था इशिका कौशिक और दिव्यम कर्णवाल का। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 meters अर्थात 954 kilohertz पर। दिन के 10 बजे हैं श्रोताओं। लीजिए प्रस्तुत है आप ही के व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुन रहे हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी रेडियो साथी नेहा शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप जानते ही हैं ये कार्यक्रम आपका है, आप ही के लिए है और आप ही के फरमाइश के गीतों के लिए है। अपनी फरमाइश के गीत सुनने के लिए आप जानते ही हैं कि आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और हमें व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए हमारा नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9457078288। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी फरमाइश का कोई गीत सुन सकते हैं और हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो श्रोताओं, चलिए जब तक आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत कुछ पत्रों के माध्यम से करते हैं। ये पहला पत्र हमें मिला है यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से। दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार का, और इन्होंने फरमाइश की है फिल्म कश्मीर की कली का गीत सुनने की। अगला पत्र हमें मिला है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत रॉय, डॉक्टर अमनदीप, अवनील शर्मा, कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। अगला पत्र हमें मिला है श्रोताओं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से। लिखने वाले हैं ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से हमें पत्र भेज रहे हैं अवधेश रॉय, श्रीमती प्रीति रॉय और नवनीत रॉय। अगला पत्र हमें मिला है परी महल कासगंज से। आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान, शमशुल कमर और गंज डुंडवारा से हैं शमशुल कमर, इरफान कुरैशी और इनका सारा कुरैशी परिवार। एक और पत्र हमें मिला है पांदर कवड़ा से। अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे, बल्ला रशा से हैं सूरजी लोंडे, प्राची लोंडे और एकलव्य।

पांडे। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक, मीका बिरक, और इन्होंने भी फिल्म कश्मीर की कली का कोई गीत सुनने की फरमाइश हमारे पास

0: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओं, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आप ही के कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और इस गीत से पहले हमने आपको बताया था अपना व्हाट्सएप नंबर, जिस पर मैसेज करके आप अपनी फरमाइश के गीत सुन सकते हैं। और इसी क्रम में हमारे पास ढेर सारे मैसेज हमारे श्रोताओं के आ गए हैं। ये एक मैसेज हमें मिला है सदर बाजार कुरावली से, अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा का। अगला मैसेज हमें मिला है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। एक और मैसेज हमारे पास आया है नेहरू चौक पैठन से, लिखने वाले हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव और जालना शहर से हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। ग्राम गधारोना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से हैं मदन गिरी, विमला गिरी, भरत गिरी, सोनिया गिरी, बलराम गिरी, मधु, सिमरन, वंशिका, रमन और दिव्य गिरी। एक और मैसेज हमारे पास आया है जयराम सिंघनकर, दिशांत कुमार सिंघनकर और अर्पिता जी का।

ये हमें मैसेज लिख रहे हैं वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से, गांव हीरा वाली फजिलका पंजाब से हमें मैसेज कर रहे हैं सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु, राम राम जी और इनका समस्त परिवार। एक और मैसेज हमारे पास आया है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से, सिद्धांत गोंडा ने, अर्चना ताई गोंडा ने और प्रतिभा गोंडा ने का। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म सुहाग से, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और शैलेंद्र की आवाज़ में ये गीत है। आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुन रखे हैं आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। मैं हूँ आज आपके साथ आपकी सखी निधि भारद्वाज, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रही हैं पहले से ही
1: मैं आप सभी की रेडियो साथी नेहा शर्मा।
0: तो नेहा, कार्यक्रम का अगला गीत हम सुनवाना चाहते हैं अपने साथियों को।
1: हाँ जी बिल्कुल, अगला गीत की जो फरमाइश है वो हमारे पास आई है गणेश अविका और डॉक्टर अशोक कुंभार अविका, जीविका सानू कुंभार और अर्चना कुंभार की कोयता वस्ती पुनावले से हैं। अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, शाइशा सोनवने, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म मुझसे दोस्ती करोगी का गीत।
0: इसी कड़ी में हमारे साथ और जुड़ चुके हैं अशोक दले, सविता दले, निकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले, कुंभार गली श्री रामपुर से, और आप हैं हमारे साथी मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वांडकर, रही श्रीमती सरिता ग्वांडकर, प्रिंस एकांश ग्वांडकर, और आप हैं साथी बदलापुर मुंबई से प्रणीता ग्वांडकर, सिद्धांत ग्वांडकर, अर्जुन ग्वांडकर, टुक टुक, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश ग्वांडकर, सुमित ग्वांडकर, कुमारी ध्वनि ग्वांडकर परे।
1: और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमन नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नाज और बेबी चाहत का।
0: आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का ये गीत, गुड्डू सिंह और मोहित फरमाइश कर रखे हैं, और जगह का नाम इन्होंने नहीं लिखा है अभी। जगह का नाम भी लिखेंगे तो और अच्छा लगता है, क्योंकि हमें पता चलता है कहाँ से हमारे साथी जुड़ रहे हैं। आप हैं हमारे लाल माता सुदामा नगर अटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी।

0: और एक और मैसेज हमारे पास आया है, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झाड़ावार राजस्थान से ही मनभावन नैना सत्यनारायण कपिल शोभा और श्रीमती फुंदी बाई बागरी का।
1: इसी गीत की फरमाइश भेज रहे हैं आप भी।
0: यह कुलाम रोड हरगोविंद नगर नवाज शहर से, नवा शहर से सुरिंदर संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, ऋतिक, शिखा और प्रतीक्षा।
1: आप हैं हमारे साथी मजनू काटीला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक।
0: और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है फुलोंग निजामाबाद तेलंगाना से हैं मोहम्मद वहीद रुमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फासी, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुकराम, मोहम्मद नोमान, फुरकान, जाकिर और मोहम्मद फैजल।
1: इसी गीत की फरमाइश आपकी भी है। इस गीत को सुनने के लिए पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से हमें अनुरोध कर रहे हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह।
0: लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और त्रिपतु साहू ने भी लता मंगेशकर की आवाज में किसी गीत की फरमाइश भेजी है, तो श्रोताओं चलिए आपको सुनवाते हैं आप ही की फरमाइश पर मुझसे दोस्ती करोगी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे, और गीत तुम्हारे कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए जो नए साथी जुड़े हैं उनको हम अपना फोन नंबर बताना चाहते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है
2: 9457078288।
1: और अब देखते हैं हमारे कौन से साथी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये हमारे साथी जुड़े हैं शाहजी नगर देगलू जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से, संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं कवर, कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली।
2: एक और मैसेज हमें मिला है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से, लिखने वाले हैं फैसल इमाम, मोहम्मद अकमल, मोहम्मद अफजल और नफीसा प्रवीण।
1: ये हैं हमारे साथी परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रज्ञेश संगई, प्रीतेश संगई और पूरा संगई परिवार।
2: हयात कॉलोनी अररिया बिहार से हमें मैसेज मिला है फैसल इमाम का।
1: और ये है हमारे साथ गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हर देव मेका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक और मेका विरक।
2: नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उल अमर और राजेंद्र कटारे।

0: फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालनी खेड़ा, टिवनाशी खेड़ा अपनी पसंद का गीत सुनना चाहने की ख्वाहिश रखते हैं और आप हैं हमारे साथी। शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी।
1: नेहरू पार्क निजामाबाद तेलंगाना से हैं अजीज भाई, मतीम भाई, अब्दुल रहमान, सैयद खलीद, मुबीन भाई, मोहम्मद यासीन, शेख चंद, फारूक फूलवाले और मूसा करीम।
0: अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं नाज पहले सदमे शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज हाजमी, सलमा असद, अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी।
1: ये एक और मैसेज हमारे पास आया है मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून का, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर से।
0: आप है हमारे साथी, किधर गया भाई हमारे साथी का नाम, रुचिकर मनोहर मनोहर, खूबसूरत नगमे की तारीफ आप कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने कार्यक्रम को पसंद किया है और जुड़े रहेगा हमारे कार्यक्रम से। आप हैं गंज द्वारा उत्तर प्रदेश से मास्टर किल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव।
1: उत्तम नगर दिल्ली से हैं कमला लानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से, एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साहिमा फारूक, सरफराज शेख, गुल फराज शेख और बेबी मुस्कान की।
1: ये एक और मैसेज हमें मिला है कस्बा उगैती बदायूं से, देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत कुमार, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता का। तो आइए श्रोताओं, आप सभी को सुनवाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत, और जो गीत हमने लिया है फिल्म कच्चे धागे से। अलका याग्निक और हंसराज हंस की आवाज में ये गीत है, आइए सुनते हैं।

0: गीत के बाद एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम गीत तुम्हारे में। और श्रोताओं, हम अपने नए साथियों को बता दें कि अगर आप भी अपनी फरमाइश का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिसके लिए नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर। नंबर है 9457078288। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी फरमाइश का गीत सुन सकते हैं। और श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बोल राधा बोल का एक गीत। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सानू और पूर्णिमा ने, और फरमाइश हमारे पास आई है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा की।
1: और आप कर रहे हैं फरमाइश हमारे पास गांव नगला उपभवन नजीबाबाद जनपद बिजनौर से ठाकुर विजयपाल सिंह, जबर सिंह, जयपाल सिंह, राहुल, सचिन, सविता, नोनी, लालू, नमन, केजल, छोटी, शिवी, क्रीधा, ओम प्रकाश, बलवंत, पूनम और परिवार के सभी सदस्य इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ग्राम धनसिनी नजीबाबाद जनपद बिजनौर से मुनेश कुमार प्रजापति, दिनेश कुमार प्रजापति, महेंद्र प्रजापति, मुकेश, राजू, राजकुमार और राधेश्याम जी।
0: और ये एक और मैसेज हमारे पास इसी गीत की फरमाइश के साथ आया है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे, साथ में है स्वाति प्रयाग चौधरी। और एक
1: अगली
0: और
1: फरमाइश है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर।
0: वडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा।
1: मेरठ कैंट से हमें ये फरमाइश मिल रही है, आप हैं हमारे साथी दिग्दर्शन और कविता गौड़।
0: ग्राम रसूलपुर नंगला जिला बिजनौर से वैभव नामदेव, दीपक नामदेव और चुनमुन नामदेव ने भी इसी गीत की फरमाइश हमारे पास लिखकर भेजी है।
1: ये फरमाइश में शामिल हो रहे हैं हमारे साथी मुंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी,
0: तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना और दानिश आसिफ शेख।
1: ये फरमाइश हमारे पास आई है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट की।
0: अगला मैसेज हमारे पास आया है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर और विद्या कुमारी का। और यही गीत सुनना चाहते हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोर्डाना। और सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित और ऋतु, मुकेश, जगताप।
1: तो लीजिए श्रोता, सुनेगा अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत बोल राधा बोल फिल्म से कुमार सानू और पूर्णिमा की युगल आवाज में।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मासूम से। अभिजीत और साधना सरगम की आवाज में ये गीत है श्रोताओं, और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई है
1: फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया।

0: फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी ने।
1: और इसी गीत की फरमाइश हमारे पास भेजी है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे ने।
0: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से आप हमसे जुड़े हैं। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और अबान अब्बासी, ये हैं हमारे साथी सदर बाजार मारवाड़ बिलाना राजस्थान से। रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान जी। और ये
1: पते ही खालसा जिला अमरोहा नई बस्ती से हमें मैसेज लिख रहे हैं बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया बिटिया अली शाह, शकील फहीम, मोहम्मद यानी संसारी और सुदेश चौहान।
0: अपनी फरमाइश के साथ आप हैं हमारे साथ। जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, श्रीमती गीता नायक, निहारिका, सुशांत और इनके बहुत सारे साथी।
1: धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयना बाबू भी इसी गीत की फरमाइश हमारे पास लिखकर भेज रहे हैं।
0: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, अवान अब्बासी और इनके परिवार के सदस्य।
1: ग्राम रायखाना जिला बठिंडा पंजाब से हैं परमिंदर सिंह सोनी, करण सोनी, रानो, दीपो, वीरपाल, कुलदीप और इनके सभी परिवार के सदस्य।
0: और ये फरमाइश मिली है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार की। तो लीजिए सुनिएगा अपनी पसंद का ये गीत अभिजीत और साधना सरगम की युगल आवाज में फिल्म मासूम फिल्म से।

0: श्रोताओं, आपने अपनी पसंद का गीत सुना और देखिए और भी बहुत सारे साथी हमसे जुड़े हैं अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए। तो जो अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे वो बताएंगे बाद में, पहले देखते हैं साथी कौन से हैं। आप हैं जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। ये फरमाइश हमें मिली है करणवीर हाउस भूचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से, परवीम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन और अभिजोत की।
1: सहारनपुर से हैं आशा नारंग, सोनाली नारंग और सुरेश नारंग।
0: बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक मयंग, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश भी इस गीत को सुनना चाहेंगे जो भी हम आपको सुनवाने वाले हैं। और आप हैं
1: नाज पैलेस अजमेर शरीफ राजस्थान से हैं सैयद आलम हाशमी। और ये अगला मैसेज हमें मिला है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार डॉली, बेबी पूजा और राधिका, साथ में है प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर।
0: ये फरमाइश मिली है नई बस्ती गंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम अंसारी की।
1: अगला मैसेज हमें मिला है मौला धर्मदास नजीबाबाद से, लिखने वाले हैं गुलाम हसन, निषाद बानो, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरमान, साबरा खातून, शाहजादी, शराफत अली, अब्दुल रहमान और रानी बिटिया मदीहा।
0: ये अनुरोध करते हैं अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड से जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी कल्पित और बेबी गर्वी। और आप हैं हमारे साथी। देखिए अनुरोध हम भी करते हैं आपसे कि आप बार बार एक ही नाम को ना भेजें अलग अलग फोन नंबर से। जसपुर रोड दूल्हापुर जिला मुरादाबाद से महबूब दुकानदार, बेगम साहिबा, महमूद, मोहम्मद समीर अंसारी, मोहम्मद वारिस अंसारी, बेटी अलशिफा परवीन। और आप हैं हमारे साथी।
1: आप हैं हमारे साथी गुन्नौर से आदिल कमर और इनके परिवार के सभी सदस्य। और अगला मैसेज हमारे पास आया है कस्बा बराड़ा जिला

0: बाला हरियाणा से लिखने वाले हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशबद।
1: ये फरमाइश हमें मिली है ऊपरकोट बुलंदशहर से। निगत परीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी की।
0: एक और मैसेज हमारे पास आया है सनावत से, शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोडाना का। और अगला मैसेज हमें मिला है वाइट फील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण संस्कृति और पौरुष का। रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल।
1: आप हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री भेंत्रे, अंजलि कारवा, बाला साहब करवा, रामनिवास अग्रवाल और धनंजय टीबी कुल थे।
0: ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा भी हमारे साथ व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जुड़े हैं पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से।
1: और ये फरमाइश है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीतू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी चौक, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू, भाविक और इनके परिवार के सदस्य।
0: बाबा कुटीर रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान।
1: शेरकोट बिजनौर से ये फरमाइश भेजी है निजामुद्दीन, रऊफ अहमद, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद हन्नान, महक रह और इनके साथियों ने, और सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत टैगोर गार्डन, नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौरवा और छाबड़ा इनके साथ और भी इनके साथी। हम बार बार अनुरोध करते हैं जिनका नाम शामिल हो चुका है कृपया अगले किसी और नंबर से हमें मैसेज ना करें। और ये नेहा कार्यक्रम का अंतिम गीत अब आप सुनवा दीजिएगा अपने साथियों को इस अंतिम फरमाइश के साथ। काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, परिधि सुरोशे, मायरा सुरोशे।
0: आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म सड़क से। अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में ये गीत है।

पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम की तुम्हारे आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11 बज रहे हैं। आइए श्रोताओं सुनते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की युगल आवाज में। फिल्म का नाम है इतिहास, संगीत है दिलीप सेन समीर सेन का और शब्द रचना है समीर की।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

संतोष सिंह के संगीत निर्देशन में कुमार का लिखा एक गीत आप सुन रहे थे फिल्म लॉटरी से। आवाज थी अभिजीत सावंत की। चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम हम आपको सुनवा रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू और संजीवनी की युगल आवाज में। संगीत अनु मलिक का है और शब्द रचना है राहत इंदौरी की। फिल्म का नाम है करीब। साथियों, कभी कभी प्यार में ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे अपने हमारे साथ तो रहें, लेकिन दिल की बात भी समझ जाएं। तो फिर ना समझें तो गाइए या किसी भी ढंग से उन्हें समझाइए। सुनिए प्यारा सा गीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से।

कुमार सानू और संजीवनी की युगल आवाज में फिल्म करीब का आपने गीत सुना। चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रखे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की युगल आवाज में। संगीत है हिमेश रेशमिया का और गीत के बोल लिखे हैं समीर ने। फिल्म का नाम है आपका सुरूर।

अलीशा शनाई की आवाज़ में आपने फिल्म कर्म का एक गीत सुना। संगीत विशाल शेखर का था और गीतकार थे विशाल और इरशाद कमिल। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत फिल्म पद्मावत से। नीति मोहन का स्वर है, संगीत दिया है संजय लीला भंसाली ने और गीत के बोल लिखे हैं सिद्धार्थ गरिमा ने।

श्रोताओं, नीति मोहन के गाय इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 होने को है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छिपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
0: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
0: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
0: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
0: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
0: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
0: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओ, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओ, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
0: तो श्रोताओ, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
2: जी
0: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है। यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है
2: जी
0: या नारंगी या लाल भी हो सकता है, किस्मों और स्थान के अनुसार।
2: जी
0: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
2: जी
0: फिर क्या होता है?
2: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें

0: में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
1: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
0: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
1: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
0: जी
1: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
0: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी, श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
2: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
3: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती

0: करें। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
1: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी,
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: रामकृपाल, ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
1: जी,
0: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
1: जी हाँ,
0: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
1: बिल्कुल ठीक।
0: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
1: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
0: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
1: जी,
0: अब सवाल यह है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और

0: के बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे, यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल।
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत NCERT शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

की सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं।

अब से कुछ ही देर में दिन में इसी सब हमें 12:05 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सैनिकों के लिए मिड डे मेलोडी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुनेगा दिन में 12:30 पर।

बहनें सुन सकेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत दिन में 1:15 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे आधी आबादी से। साथ ही उड़ान हौसलों की स्टम में सुनेगा डॉक्टर चीमा विश्वास, डायरेक्टर प्रिंसिपल मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल बिजनौर से प्रियंका त्यागी की बातचीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत आज आप सुन सकेंगे गोपाल बाबू गोस्वामी के स्वर में कुमाऊनी लोकगीत। एक ही संगीतकार इस क्रम में दोपहर 2:30 पर सज्जाद हुसैन संगीतकार के हम आपको कुछ गीत सुनवाएंगे।

संदेश टू सोल्जर्स, ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से अपराह्न 4 बजे। शाम 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत क्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी योजना बताई जाएंगी और आप जानकारी लेंगे अटल वयो अभ्युदय योजना एवं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर।

युवा श्रोता सुन सकेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:15 पर, जिसमें आज के आकर्षण रहेंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, नॉन फिल्मी चार्टबस्टर, लव स्टोरीज। इसमें सुनेगा उसी मोड़ पर लव स्टोरी का एपिसोड नंबर 4। गुफ्तगू बस यूं ही, साथ ही फिल्म संगीत का आनंद भी आप ले सकेंगे।

किसान भाइयों के कार्यक्रम कृषि जगत का समय रहेगा शाम 6:05 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे विशेष मासिक कार्यक्रम पगडंडी, स्वस्थ किसान समृद्ध कृषि। कृषि इस विषय पर आलेख और संकलन होगा हिमांशु रंजन का, प्रस्तुति अंकित सैनी की। शाम 6:45 पर विविधाक्रम में डॉक्टर गजेंद्र सिंह की वार्ता आप सुन सकेंगे। विषय रहेगा सौर ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम। सुगम संगीत में नुसरत अली और साथियों की गायक कव्वाली सुनेगा शाम 7:32 पर।

बजे गीत संध्या में, शाम 6:55 पर छाया गीत के अंतर्गत एक ही फिल्म से हुए इस फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:30 पर, और रात्रि 10:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रूपक जिसके ख्वाबों पर आबाद है नजीबाबाद, लेखक अमन कुमार, प्रस्तुतकर्ता अनिल कुमार भारती और सुशील त्यागी, प्रस्तुति सहयोग होगा इकबाल अहमद का, वाच्यन स्वर डॉक्टर एस के जौहर और अनिता नेगी का, प्रतिभागी कलाकार होंगे मदन मोहन राजवंशी, पंकज गर्ग, विशाल शर्मा, पवन संगम, संजीव श्रीवास्तव, रेणु कोटनाला और श्वेता शर्मा। रात्रि 9:30 पर कंट्री वाइड और इनसाइट्स हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

देश प्रेमी, इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों को। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। श्रोताओं, सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। जब हमारे देश के ये सैनिक हमारी सीमाओं पर डटे हैं, तभी हम चैन से रह पाते हैं। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते हमारे सैनिक, हम उनको नमन करते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म देशवासी से। संगीत एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और शब्द रचना आनंद बख्शी की, स्वर है नितिन मुकेश अनुराधा पटवाल और साथियों के। शत्रु सीमा लांग न जाए, शत्रु सीमा लांग न जाए, खड़े रहे चट्टानों से, देशभक्ति क्या होती है तुम पूछो जरा जवानों से।

देशवासी, इस फिल्म में आपने नितिन मुकेश, अनुराधा पौडवाल और साथियों को सुना। सच में ये हम सबके लिए कर्तव्य बनता ही है कि हम अपने देश के प्रति

समर्पित रहें, हर वो काम करें जिससे देश की तरक्की हो, आपस में भाईचारा और प्रेम बढ़ता रहे, क्योंकि ये काम हमारे सैनिक भाई बखूबी करते हैं। वो तो हैं ही हमारी शान, दुश्मन जो आँख उठाए तो उसको मार गिराते हैं, दुश्मन जो मार गिराए उसको मार गिराते हैं, और देश की रक्षा में वो अपनी जान भी गंवाते हैं। हम ऐसे सैनिकों का हृदय से सम्मान ही नहीं करते, बल्कि उन्हें शत शत नमन करते हैं। और जो हमारे सैनिक भाई आज कैसे भी मौसम में हम सब की रक्षा में डटे हुए हैं, उनके परिवारजनों को भी हम अपने परिवार के रूप में ही देखते हैं। जब वो घर से दूर होते हैं तो उनके मन की इच्छाएं भी वो कभी पत्रों से लिखते हैं और कभी गीत के माध्यम से भी बयां करते हैं। भाई हृदय तो उनके पास भी है, दिल की बातें वो भी कहना जानते हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जतिन ललित के संगीत निर्देशन में। गीतकार हैं प्रसून जोशी, फिल्म का नाम फना और गायक स्वर है शान और कैलाश खेर का।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। संगीत से सजाया है इस्माइल दरबार ने और गीत के बोल लिखे हैं नुसरत बादरा ने और फिल्म का नाम है देवदास। आइए सुनते हैं उदित नारायण श्रेया घोषाल की युगल आवाज में ये गीत है।

श्रोता फिल्म देवदास में उदित नारायण और श्रेया घोषाल के गाए इस गीत के साथ ही सैनिकों के लिए कार्यक्रम अब संपन्न करने की सैनिक भाइयों अनुमति दीजिएगा। जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। दिन के 12:30 हो रखे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम मिट्टे मेलोडी। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम मिट्टे मेलोडी लेकर आ गई हूँ मैं, आपकी सखी निधि भारद्वाज। कहिए कैसे हैं आप, स्वस्थ हैं, कार्यक्रम में व्यस्त हैं लेकिन जुड़े हैं हमारे साथ। बस यही बात, हर बात हमें आपसे सुनना पसंद है और हमें आपसे कहना भी पसंद है, क्योंकि श्रोताओं इससे हम दोनों का साथ और आकाशवाणी परिवार का साथ जुड़ता है और हम आगे बढ़ने लगते हैं। देखिए, बात करते करते ही घड़ी की सुइयां भी आगे बढ़ने लगी और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि मिड डे मेलोडी का ये कार्यक्रम इसलिए बेहद अच्छा होने वाला है क्योंकि आप हमारे साथ हैं। फिल्म संगीत का आनंद तो हम लेंगे ही, लेकिन जरा ये बताइए कि आज के मौसम का क्या मिजाज है भाई। कहीं तो बहुत तेज धूप हो रही है और कहीं आज सुबह हल्की हल्की ठंडी ठंडी फुहारों ने हमारे मौसम को बहुत ही अच्छा कर दिया है। तो जहाँ पर ये हल्का बारिश का मौसम हो गया वहाँ तो क्या ही कहने, और जहाँ हल्की धूप है या तेज धूप भी है उन सभी से हम ये कहना चाहते हैं, भले ही थोड़ा मौसम बदलता हो लेकिन धूप की तेजी और गर्मी का ये मौसम तो अपना रंग दिखाएगा ही। इसलिए ऐसे में अपने आप को ठंडा रखें, खूब पानी पिएं। गर्मी के दिनों में प्यास तो लगती ही है और इसलिए अपने आप ध्यान जरूर रखें और सुनते रहें आकाशवाणी नजीबाबाद। और अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत अभिजीत और नीरजा पंडित के युगल स्वर में। फिल्म का नाम है खूबसूरत, जतिन ललित का संगीत है और गीत लिखा है गुलजार ने। साथियों, हम सब की चारों ओर सुंदरता देखने की क्षमता अलग अलग है। कोई बाहरी खूबसूरती को बहुत मानता है तो कोई आंतरिक, कोई नैन नक्श की खूबसूरती देखता है तो कोई काम की खूबसूरती को निहारता है, लेकिन कुछ भी हो खूबसूरती खूबसूरती होती है, हमें उसकी तारीफ करनी ही चाहिए।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: मिड डे मेलोडी कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं आपकी सखी निधि भारद्वाज आपका, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, मिड डे मेलोडी में हम आपके गीत संगीत से तो आपको मनोरंजन कर ही रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि आज थोड़ी सी बातचीत की जाए कि गर्मी के मौसम के बारे में। यूँ तो बहुत सारे कार्यक्रम और बातचीत आप सुन चुके हैं, लेकिन अब इस समय बच्चों की जब छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं घूमने भी जा रहे होंगे, कुछ उनसे मिलने के लिए घर आए होंगे। कभी मौसी जी, बुआ जी, मामा मामी जी के घर जाते हैं, नाना नानी जी के घर जाते हैं, दादी दादा जी के साथ मस्ती करते हैं बच्चे, और कभी खूब ढूंढ कहीं घूमने की जिद करते हैं। तो भाई मौसम को देख कर ही आप घूमने जाए, जब दिन बहुत गर्म हो तो फिर अपने आप को जरा घर में रखें, ठंडे समय के लिए इंतज़ार करें। और अगर दिन के सबसे ठंडे समय की हम बात करें तो उस समय में कोई गतिविधि की योजना बनाएं, है ना। और जब बाहर जाना ही पड़े तो पानी की बोतल तो साथ लेकर चलनी ही है, छाया में चलने का प्रयास करना है। तो

की सुरक्षा के लिए सर को ढकना है, सनस्क्रीन का प्रयोग भी कर सकते हैं, छाता लेकर चल सकते हैं। ये सारी बातें हम केवल कहेंगे नहीं, करते भी हैं और करने भी चाहिए, तभी तो ये खूबसूरती बनी रहती है मौसम की और हमारे आसपास खुशनुमा माहौल को बनाने के लिए ज़रूरी है। आइए सुनते हैं अगला गीत, स्त्री टू से विशाल मिश्रा और सचिन जिगर के स्वर में। सचिन जिगर का संगीत है और अमिताभ भट्टाचार्य की शब्द रचना।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRVP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल

0: समाप्त हुई। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, सूचना के बाद स्वागत है फिर से आपके कार्यक्रम बेटी मेलोडी में, और ये कार्यक्रम आप सुन रखे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। आइए अब आनंद लेते हैं कार्यक्रम में इस अगले गीत का, जिसे हमने लिया फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट वन से। संगीत देवी श्री प्रसाद का है और गीत गाया है जावेद अली ने।

0: ये थाम थाम थाम ये डंडा मत डाल, दूध फट के पनीर हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा मेरा। क्या है साहब, ईमान चलेगा, इज्जत करो ना। कब से तंग करके रख दिया,
1: आ चलेगा।

0: तू सही समझा बाबू।
1: अबे इतनी जल्दी सच काय को बोल दिया तूने? मेरी दो पल की खुशी भी तुझसे देखी नहीं जाती क्या? तेरे साथ माता खपाने से अच्छा उसके पास जाके पैर पकड़ लेता हूँ, वो खुद ही देख लेगी। नहीं नहीं मैं रुकने वाला, मेरे को बहुत जोर का प्यार है, बात करने दे मेरे को।
2: मेरी बात सुन, ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हुआ?
1: प्यार में भिखारी बन जाऊंगा? तू गएला केस है रे।
3: चल आता आखिरी बार झाड़ी मार, देख के बता मेरे को देख रही है कि नहीं।
0: सच बोलूं कि झूठ बोलूं?
2: झूठ बोलना।

श्रोताओं, गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया था यार रहमान ने। फिल्म साथिया में आपने सुना था सोनू निगम को। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिधि चौहान के स्वर में। फिल्म का नाम है चमेली। संगीत दिया है संदेश शांडिल्य ने और गीतकार हैं इरशाद कामल। तो इस गीत के अंतिम गीत के साथ ही हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि अगर कार्यक्रम कोई भी आप गर्मियों में कहीं रखते हैं तो उसका प्रबंधन अच्छे से करें। लू लगने और गर्मी से संबंधित अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने का इंतजाम पूरा रखें और हमेशा जीवन को आनंददायी बनाएं।

0: श्रोताओं, मन भले ही इधर उधर भटकता रहे लेकिन उसे एकाग्र तो करना ही होगा, और हमारा मन भी करता है आपसे और बातें करें, लेकिन इस कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति लेनी चाहती है हम आपके सखी निधि भारद्वाज, अनुमति दीजिएगा। श्रोताओं नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिड-डे मेलोडी, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रखे गए। दिन के 1 बजने को है, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के 3 पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए

0: ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. The meeting will deliberate on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling and create sustainable employment opportunities across the country. Discussions will also focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers, including governance, digital public infrastructure and partnerships, while ensuring accountability and measurable impact. In a social media post, Mr. Modi said, guided by the spirit of cooperative federalism, center and states are working together to accelerate India's development journey. He added that the collective efforts of the center and states will play a pivotal role in realizing the shared vision of Viksit Bharat. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, which emphasizes the well-being and development of every Indian regardless of age, region, gender or socio-economic background. The government has waived excise duty on certain variants of ethanol-blended petrol. In a notification, the Finance Ministry announced that petrol blended with 22, 25, 27 and 30% ethanol has been exempted from central excise duty. The Ministry said all four fuel grades will now attract a nil rate of excise duty. The move is aimed at strengthening India's ethanol blending program, which seeks to reduce dependence on imported crude oil, cut carbon emissions and enhance demand for domestically produced ethanol. Union Minister for Railways and Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav virtually inaugurated a 20 kilowatt FM transmitter at Ramgarh in Jaisalmer district of Rajasthan during a program held at the Akashvani premises in Jaipur today. The event was attended by Jaipur MP Manju Sharma, Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi and Akashvani Director General Rajiv Kumar Jain, among other senior officials. Addressing the gathering, Union Minister Vaishnav, focusing on strategic infrastructure, highlighted the government's commitment to strengthening communication in border regions. He said today, a major initiative to cover border areas has commenced. In Rajasthan, The minister said the plan is to provide comprehensive coverage across the entire border belt of the country, stretching all the way from Kashmir.
2: Today, a new 20 kilowatt FM transmitter was launched in Jaisalmer, which will cover not only the district but also surrounding regions. About an 80 kilometer radius and nearly 20,000 square kilometers. This is a significant step forward.
1: All three Indian seafarers who were initially reported missing after the tragic incident aboard the commercial vessel Palau-flagged MT Sotobelo have now been confirmed dead. The tanker was hit off the coast of Oman in a suspected U.S. missile strike. In a social media post, Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, said the bodies of three seafarers have been located and identified. Trinamool Congress MP Prakash Chigbaraik has resigned as a member of the Rajya Sabha. He has sent his resignation letter to Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan. Earlier, Trinamool Congress leaders and Rajya Sabha members Shukhendu Shekhar Rai and Sushmita Dev had resigned from both the Rajya Sabha and the party. The United States carried out a new round of military strikes on Iranian targets, prompting Tehran to announce the closure of the strategically vital Strait of Hormuz and launch retaliatory actions against regional locations hosting U.S. forces. U.S. Central Command said it had completed a second consecutive day of self-defense strikes targeting Iranian air defense systems, radar installations, communications infrastructure, and surveillance capabilities in response to what Washington called continued Iranian aggression. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.

0: नमस्कार सभी श्रोताओं को। बहनों स्वागत है तमाम उन श्रोता बहनों का कार्यक्रम महिला जगत में जो इस वक्त हमें सुन रही हैं। श्रोता बहनों आज मैं आपकी साथी सुनीता नेगी आपसे इस कार्यक्रम में ढेर सारी बातें करूंगी, बहुत सारी जानकारी आपको दूंगी, आपसे बातें भी होंगी। तो चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले बात आपकी यानी आदि आबादी की ही कर लेते हैं। श्रोता बहनों क्या आपने भी अपनी प्रतिभा को पहचान कर उसे संवारने का प्रयास किया है? बहनों हर व्यक्ति को ईश्वर ने कोई ना कोई विशेषता प्रदान की होती है, बस ये विशेषताएं प्रतिभाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं और जब प्रतिभा को संवारा जाता है उस पर अमल कर उसे समाज के बीच पहचान मिलती है तो हमारी ऐसी महिला शक्ति सबके लिए एक मिसाल बन जाती है। तो आप भी अपने सपनों को जरूर पूरा करने के लिए अपने दिल की आवाज को सुनिए बहनों और अपनी प्रतिभा को सबके सामने लाएं और सफल होने का प्रयास करें। श्रोता बहनों ऐसी ही असाधारण सफलता की इबारत लिखी है एयर इंडिया की महिला पायलट जोया अग्रवाल ने। क्या है इनकी उपलब्धि आपको सुनवाते हैं क्रम आधी आबादी से। मैं कुछ घटनाएं इतिहास रच देती हैं। ऐसी घटनाएं सपनों की उड़ान को दिशा तो दिखाती ही हैं, साथ ही भविष्य के लिए जमीन तैयार करती हैं। कहते हैं अगर आपके हौसलों में उड़ान है तो फिर सारा आसमान आपका है। अगर आप कुछ ठान लें तो उसे सारी कायनात पूरा करने में आपका साथ देती है। और श्रोता बहनों इसका उदाहरण है जोया अग्रवाल।
1: नमस्कार सारे भारत के देशवासियों, मेरा नाम कैप्टन जोया अग्रवाल है और मैं बोइंग 777 पे हमारे ध्वजवाहक एयर इंडिया के साथ कमांडर हूँ।
0: जी हाँ ये नाम है एयर इंडिया की महिला पायलट का जो बोइंग 777 को उड़ाने वाली सबसे युवा भारतीय महिला पायलट हैं।
1: पायलट बनने का सपना मेरा तब का है जब एक छोटी सी 8 साल की जोया हुआ करती थी और वो छत पर बैठ के सपने बुना करती थी सितारों को देख के।
2: तुर जा, तू ना डर ना कभी।
1: 2004 में मेरा भगवान की दया से एयर इंडिया में हो गया एडमिशन और मैं उस समय वन ऑफ द यंगेस्ट थी टू गेट इनटू एयर इंडिया।
0: श्रोता बहनों उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली सबसे लंबी हवाई उड़ान का नेतृत्व करने वाली कैप्टन जोया अग्रवाल का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है।
3: Hey, good evening, ladies and gentlemen. This is your captain speaking from the flight deck once again. Welcome on board this history creating maiden flight from San Francisco to Bengaluru. One of the world's longest, Air India's longest, and the longest flight by any Indian carrier.
0: जब उन्होंने अपनी co-pilot के साथ अमेरिका के San Francisco से उड़ान भरी और उत्तरी ध्रुव के ऊपर से गुजरते हुए बेंगलुरु पहुंचकर सफलतापूर्वक लैंडिंग की, जोया कमर्शियल पायलट हैं। 17 घंटे से ज्यादा का समय और 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी कैप्टन जोया अग्रवाल ने नॉन स्टॉप कमर्शियल पायलट का नेतृत्व किया और इस कार्य को करने वाली वो पहली महिला बनी।

0: कि कभी वो जो जंबो जेट आसमान में फ्लाई करता है, कभी क्या मैं उसको उड़ा पाऊंगी? और मेरे कानों में एक शब्द गूंजता था, असंभव, असंभव, क्योंकि मैं ऐसे फैमिली को बिलोंग करती हूँ जहां पे मेरे को सिखाया गया है कि बुजुर्गों की छाया में चलो. और मेरी मम्मी ने मुझे ये बताया कि बड़े होकर शादी करनी है, अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना है. और मेरे को कभी ऐसा बताया ही नहीं गया कि आप आसमानों को छू सकती हैं. तो वहां से यहां तक का जो सफर है वो मेरे को आज तक बहुत ही मेरे दिल के पास रहता है. और मुझे लगता है कि जब भी कोई मेरे को कप्तान बुलाता है, मेरे को अपनी सारे जो स्ट्रगल्स हैं, सारे चैलेंजेस मुझे याद आते हैं. और बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ.
1: दुनिया की सबसे लंबी एयर उड़ान भरने वाली जोया अग्रवाल ने जब इतिहास रचा और लंबी दूरी की कमर्शियल फ्लाइट का कीर्तिमान स्थापित किया तो उन्हें कैसा एहसास हुआ जानते हैं।
0: सबसे पहले जो मेरा एहसास था वो तालियों की गूंजों में डूबा हुआ था, जो मुझे कॉकपिट तक सुनाई पड़ रही थी. पीछे जो हमारे यात्री थे वो इतने खुश थे. बेंगलुरु में सबसे लंबी, दुनिया की एक सबसे लंबी उड़ानों में से एक थी ये उड़ान. एयर इंडिया की सबसे लंबी उड़ान थी, किसी भी भारतीय एयरलाइन की सबसे लंबी उड़ान थी. लोगों में इतना प्रोत्साहन था उत्तरी ध्रुव पे उड़ान भरने का. जब हमने बेंगलुरु एयरपोर्ट पे लैंड किया, मेरे को कॉकपिट तक उसकी गूंज की आवाज आ रही थी और मुझे फील हो रहा था कि बाहर कितनी खुशी की लहर दौड़ रही है कैबिन में. तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, गर्व महसूस हो रहा था कि हम चार भारत की बेटियां यह सपना को संभव कर पाई.

0: जोया अग्रवाल के साथ इस उपलब्धि को प्राप्त करने में उनकी तीन और सहभागी पायलट भी रही। जोया अग्रवाल के नाम के साथ कैप्टन शब्द जुड़ा तो कैसा लगता है और कैसा एहसास होता है जानते हैं।
1: मेरे को जब भी मैं अपने कप्तान की डेजिग्नेशन के बारे में सोचती हूँ, मेरे को वो 8 साल की जोया याद आ जाती है जो छत पे बैठ के सपने लिया करती।

0: एयर इंडिया पायलट। जोया के इस ऐतिहासिक सफर में क्या क्या चुनौतियां रही?
1: इस फ्लाइट का जो सपना था, एक सपने को साकार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, हमारे सीएमडी साहब, हमारे डायरेक्टर ऑपरेशन साहब, हमारी सारी टॉप लेवल मैनेजमेंट बहुत टाइम से काम कर रही थी, क्योंकि ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण फ्लाइट है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी इन्वॉल्व होती हैं जिसके लिए क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं, और बहुत ही परिश्रम करा गया है इस फ्लाइट के लिए बहुत लंबे समय तक। यह सपना साकार करना बहुत ही एक अचंभे की बात थी, और मुझे बहुत ही खुशी है कि हम चार भारत की बेटियों ने सपना साकार किया।
0: देश की बेटियों ने एयर इंडिया की इस उड़ान को भरा तो सभी के लिए ये गौरव का क्षण था। लगभग 350 यात्रियों के साथ उड़ान भरना और उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना, ऑल वुमेन क्रू मेंबर्स और देश की जो भी बेटियां हैं जो उड़ान भरने का सपना रखती हैं, उन सभी के लिए कैप्टन जोया अग्रवाल का क्या संदेश है?
1: हर एक वास्तविकता जो महत्वपूर्ण होती है वो एक अच्छे सपने से शुरू होती है, और जो बहुत ही एक खूबसूरत सपना होता है वो एक सपने देखने वाले से शुरू होता है, और वो सपने देखने वाला इंसान वो आप हैं। आप सपना देखिए, दृढ़ तरीके से उसकी तरफ काम करिए, परिश्रम करिए, और ईश्वर आपका साथ देगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। भारत की बेटियां हैं नहीं कम किसी से, तूफान या आंधी नहीं डर किसी से, आकाश पर लिखा है एक संदेशा, भारत की जय हो, विजय हो हमेशा।
0: कैप्टन जोया अग्रवाल, उत्तरी ध्रुव के ऊपर साल 2021 में जिन्होंने अपने सह पायलटों के साथ उड़ान भरी और कीर्तिमान स्थापित किया, एयर इंडिया की ये महिला पायलट। श्रोता बहनों, आपने सुनी इनकी सफलता की कहानी आज के क्रम आधियाबादी में। उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए इनकी कहानी कहीं ना कहीं प्रेरणादायक साबित होगी, और बहनों आपको भी इनकी इस कहानी ने जरूर प्रेरित किया होगा। और कार्यक्रम में श्रोता बहनों, अब फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से विराम का, तो सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: गानों हर पल चंदन का एहसास।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से

0: 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: श्रोता बहनों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम महिला जगत में एक बार फिर से। और बहनों, महिलाओं की उड़ान भरने की कहानियों के असंख्य उदाहरण समाज में आपके हमारे आसपास हैं। वो जिस भी क्षेत्र को चुनती है, संघर्षों को झेलते हुए अपनी मंजिल को वो पा ही लेती हैं। ऐसी ही एक सफल व्यक्तित्व आज उड़ान हौसलों की कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में कार्यक्रम में हमारे साथ हैं, जिनका नाम है सीमा बिस्वास। तो क्या है उनकी कहानी जानते हैं। मॉडर्न पब्लिक एरा स्कूल बिजनौर की डायरेक्टर प्रिंसिपल सीमा बिस्वास से आपसे बातचीत कर रही हैं हमारी साथी प्रियंका त्यागी।
4: कदमों में आसमान और हौसलों में उड़ान लिए आज के दौर में महिलाओं की हौसलों की उड़ान असीम है। और बहनों, शिक्षा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो आज महिलाओं की उड़ान का मजबूत आधार बन रहा है। तो बहनों, एक ऐसी ही सशक्त महिला आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है लेकर अपने हौसलों की उड़ान। श्रोता बहनों, आज हमारे साथ हैं बिजनौर मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा विश्वास। मैम नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: नमस्कार, धन्यवाद।
4: और मैम, जैसे कि आप प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं और शिक्षा के लिए आपका पूरा जीवन समर्पित है, तो मैम सबसे पहले हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे।
5: हमारा जो प्रारंभिक जीवन रहा वो काशी, तो आप लोग निश्चित रूप से जानते होंगे, मैं वहाँ पैदा हुई और ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ जहाँ का वातावरण बहुत आध्यात्मिक रहा
4: जी।
5: और उस आध्यात्मिक वातावरण का होने के पीछे का विशेष कारण और रहा कि हम स्वामी विवेकानंद के भावधारा से प्रभावित बहुत ज्यादा हुए। सबसे पहले कुछ मिशनरीज के तरीका होता है, उसको मैं अपने, जिस समय मैं कुछ नहीं समझती थी तब से ही उनके छत्र छाया मिल गया मुझे आगे बढ़ने के लिए। मैं मानती हूँ कि मेरा पूरा जो जीवन है वो उनकी ही जो कृपा के द्वारा बना हुआ है। पर फिर भी जो बचपन का जो समय रहा वो मेरा थोड़ा संघर्षपूर्ण भी रहा और कुछ आनंद से भरा हुआ भी रहा।
4: तो मैम, कैसा था वो आपका सफर, हम भी जानना चाहेंगे।
5: कि वहाँ पे एक्चुअली मेरी मदर फादर जो थे वो तो थे कोलकाता में, दोनों सर्विस में थे। मदर मेरी सचिवालय में थी
4: जी, जी।
5: वेस्ट बंगाल सचिवालय में काम करती थी और फादर मेरे मेट्रो रेल, उसमें वो चीफ इंस्पेक्टर के तौर पे वहाँ पे कार्यरत थे। तो दोनों वहाँ रहते थे और उनकी चाहत थी कि मैं घर की पहले बच्ची हूँ तो उनके साथ रह के वहीं पढ़ाई करूँ
4: जी।
5: पर मैं पूरे परिवार में भी पहली बच्ची रही, तो ये मेरे लिए बड़ा आनंद का समय था कि हमें सब चारों तरफ से बहुत प्यार मिला। नाना जी, नानी जी, मामा जी का घर था वो था वाराणसी में, तो उन लोगों ने चाहा कि ये बच्चा हमारे पास रहे तो ये हमारे साथ रह के यहाँ के वातावरण में ये पले भरे
4: जी।
5: पर दुखद समय ये था कि उनमें से हमारे जो नाना जी थे, जो मुझे सबसे ज्यादा स्नेह करते थे, उनका देहांत हो गया। सडन देहांत हुआ और देहांत होने के बाद वो प्यार की कड़ी में कहीं ना कहीं थोड़ा बाधा उत्पन्न हुआ और घर में और भी बच्चों का जन्म हुआ, उन लोग भी वहां पे रहने लगे, तो घर में ये फीलिंग आया कि ये बाहर से ये बच्ची हमारे पास यहाँ पे आ गए। के चलते हमें काफी संघर्ष उस समय से लगा कि एक हम बाहर से कोई आ गए अजनबी, जो कि बहुत प्यारे थे घर के, वो एक समय कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूर से हो गए, ऐसा सा स्थिति पैदा हुआ। माँ जो थी वो मुझे उस हालात में देख के माँ मुझे लेके कोलकाता लेके चली गई, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ, मैं पढ़ने लगे। पर फिर जब हम यहाँ वाराणसी घूमने आए तो फिर हमारे घर वालों ने फिर हमको यहाँ पे, मेरे नानी जी, उन्होंने हमें फिर से वाराणसी में पढ़ने के लिए बाध्य किया, क्योंकि उन लोग चाहते थे ये बच्चा यहीं रहे
4: जी।
5: तो जब वहाँ रहने का बात हुआ तो आगे और ये परिवर्तन का मौका और नहीं मिला कोलकाता जाने का, तो फिर हम वाराणसी में रह के ही पढ़ने लगे। बचपन की पढ़ाई वहीं पे हुई, तो हायर एजुकेशन में हम बीएचयू से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए, वहीं से बीएससी, एमएससी, डॉक्टरेट और अपना बीएड भी वहीं से किया था मैंने
4: जी, जी।
5: और तीन

0: साल थोड़ा सा हमें ये भी मौका मिला था शास्त्रीय संगीत का भी, हमने वहाँ 3 साल उसको भी हमने वहाँ अध्ययन किया।
1: तो मैम आपने पढ़ाई के साथ साथ संगीत की शिक्षा भी ली है।
0: हाँ
1: तो मैम कार्यक्रम में आगे हम आपसे संगीत के बारे में भी कुछ जरूर सुनेंगे, लेकिन अब मैम अभी हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आपकी शिक्षा पूरी हो गई तो सभी का ये सोचना होता है कि हम इस क्षेत्र में करियर बनाएंगे, तो मैम आपने शिक्षा के क्षेत्र में ही आने की क्यों सोची, क्या आपको कोई ऐसी मोटिवेशन था?
0: हाँ, स्वामी विवेकानंद, क्योंकि मेरे जब मैं कुछ नहीं समझते थे तब से ही वो मेरे जहन में आ गए, तो उनका एक बहुत बड़ा मोटो था कि नारी उत्थान के साइड में, बच्चों के शिक्षा के साइड पे कुछ काम करें। हमारे मामा जी मेरे बहुत बड़े मोटिवेटर रहे
1: जी।
0: तो मामा जी का कहना ये था कि अगर तुम शिक्षा के क्षेत्र में जाओगे तो तुम्हें वो कोरा कागज मिलेंगे, वो जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनके साथ तुम काम कर पाओगे, उनके जीवन में अगर तुम कुछ परिवर्तन ला सको तो तुम आगे देश के लिए बहुत अच्छा काम करोगी। और अगर कॉलेज में, चूंकि मैं PhD कर चुके थे
1: जी जी,
0: तो कॉलेज में जाने का उन दिनों तो बहुत अच्छा चांस था, तो कॉलेज में अगर तुम जाते हो तो वो बच्चे परिपक्व होंगे, तो परिपक्व बच्चों को आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। अगर विद्यालय में ज्वाइन करते हो आप एज अ टीचर, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका रहेगा कि आप बच्चों के जीवन को चेंज कर सको
1: जी, बिल्कुल,
0: और एक राष्ट्र के धरोहर के तौर पे उन्हें बनाने में अपना जीवन का समर्पण कर सको।
1: देखिए मैम, सफलता की राह या जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं वो सभी के लिए इतनी आसान नहीं होती कि जो हमने चाहा वो हमें एकदम से हासिल हो जाए, और आपने भी जीवन में उतार चढ़ाव देखे होंगे, तो एक शिक्षक से लेकर प्रधानाचार्य तक पहुंचने का आपका सफर कैसा रहा?
0: वो भी काफी संघर्षमय रहा, पर पहला 5 साल मैं एज ए सीनियर बायो टीचर के तौर पे सेंट जेवियर साहिबगंज में टीचर रहे
1: जी।
0: फिर 2001 से लेके आज तक मैं प्रिंसिपल के सफर में मैं हूँ, मैंने ये तकरीबन 25 साल का पीरियड है एज अ प्रिंसिपल मैं काम कर रही हूँ, अभी तो डायरेक्टर प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रही हूँ। इस सफर में मैंने बहुत संघर्ष झेला, बहुत मैंने अति झेला, क्यों
1: जी, जी।
0: एक ही चीज था, जब टीचर थे तब ये था कि आप ऑनेस्ट रह के काम करना चाहते थे, उस समय जो झेला वो सहने योग्य था, काफी लोगों को हमसे प्रॉब्लम हुई, पर मेरे पास ध्येय ये था कि बच्चों के लिए मैं कुछ करूं, और बच्चों के लिए कुछ करना है समर्पण के भावना से करना है तो आप में हिम्मत भी होना है
1: जी, बिल्कुल।
0: तो ये प्रतिकूल परिस्थिति के साथ लड़ना मेरा हर समय का एक वो बना रहा। प्रिंसिपल बनने के बाद विशेष करके लास्ट, अभी से लेके लास्ट मैंने 2000 सन से लेके आज का जो सफर
1: जी,
0: उस दौरान मैंने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करी इन द सेंस कि जिन लोग हमारे साथ कलीग कहिए, जो हमारे अधिकारी लोग रहे, वो सभी को तकरीबन, अधिकतरों को तकरीबन प्रॉब्लम होती थी कि हमारा सत्यनिष्ठ होने पे
1: जी,
0: उनको बहुत ही तकलीफ होती थी क्योंकि हम बोल देते थे। पर मैंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा झेला उसके चलते, पर हिम्मत नहीं हारा, और ये भी मैं मानते हैं कि जो हिम्मत नहीं हारते उसमें जूझते रहते हैं उनको ईश्वरी वो शक्ति जुगाड़ करते रहते हैं, और उनके रास्ते में जो रोड़ा होता है वो चीज अपने आप क्लीन करते हुए चले जाते हैं
1: जी, बिल्कुल। तभी तो आपने हिम्मत और हौसलों से अपनी उड़ान को पूरा, आज आप इतने प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत हैं। और मैम देखिए, बात करें आधुनिक समय की, तो आज को एजुकेशन का जमाना है, आज शिक्षा प्रणाली में बहुत से बदलाव भी हो रहे हैं, तो ये सब आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा, जहाँ की छात्र और छात्राएं समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं?
0: ऐसा है कि को एजुकेशन का जो सिस्टम, ये तो अब भी है, भी हमारे पास भी वही सिस्टम है, पर हमने उसमें काफी सारे चुनौतीपूर्ण, मैंने भयंकर चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आप अगर बच्चों का सच में हित चाहते हैं तो उसके मन का विक्षेप कम से कम होना चाहिए बच्चे का, और ये जो आप जो समय इस समय चल रहा है
1: जी,
0: वो सोशल मीडिया का टाइम है
1: जी, बिल्कुल।
0: इस समय बच्चे के मन मस्तिष्क पे सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है कि बच्चा बिखरा हुआ है, वो अपने एजुकेशन पे एकाग्र कर ही नहीं पा रहा है, और साथ में अगर उसके साथ को एजुकेशन हो जाए तो जो चीज वो सोशल मीडिया पे देख के बिखर रहा है वो चीज उसके सामने जब उपलब्ध होगा तो फिर वो तो कितना अपने पढ़ाई में मन लगा पाएगा, ये एवरी डाउट है, ये तो बहुत बड़ा चुनौती है। तो हम हिम्मत के साथ बहुत सारे ऐसे स्टेप्स किए हैं जो आज से 10 साल पहले जब मैं एज ए प्रिंसिपल रहे हुआ जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था
1: जी।
0: हम एक क्लासरूम के अंदर लड़के लड़कियों को एक साथ बैठा पाते थे और उसमें कोई भी अनुशासनहीनता का कुछ चीज नहीं नजर आती थी, पर आज अगर

0: एक जगह पे रखे तो कुछ दिनों में ऐसे ऐसे घटनाएं होने लगेंगी जो आपको एवं स्कूल के वातावरण को बहुत बुरी तरह प्रभावित करने का जगह आता है। तो ये स्थिति से बचने के लिए हम लोगों ने काफी सारे अपने में फेरबदल किया है।
1: तो मैम, आपने इस स्थिति से निपटने के लिए आप किस तरीके के प्रयास कर रहे हैं?
0: इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमारे जैसे स्कूल में हमने लड़के लड़कियों के क्लास को हमने एक साथ शिक्षण नहीं दिया। टाइमिंग उनकी एक होती है, पढ़ाई उनकी एक होती है, एक ही कैंपस में एक ही ब्लॉक में वो रहते हैं
1: जी,
0: पर सेक्शन एक साथ नहीं रखा। ये पहला स्टेप लिया है। ये पहले जरूरत नहीं था पर अब है, क्योंकि विद्या ददाति विनियम विनियात याति पात्रताम। तो जब तक उसकी पात्रता नहीं हो और उसको वो चीज देंगे तो फिर वो नुकसान पहुंच सकता है बच्चे को। तो एक स्टेप तो हमने ये लिया, जो आपने छुट्टी के टाइमिंग्स होती हैं वो छुट्टी के टाइमिंग्स में सेम कैंपस में ही दो टाइमिंग होती हैं, 10 मिनट पहले गर्ल्स का हो जाता है फिर उसके बाद बॉयज का होता है, जबकि स्कूल कोएड है। सब चीज हम लोगों का साथ, पर पढ़ाई हमने पढ़ाई। एक साथ हमने नहीं उसको दिया है
1: जी।
0: क्योंकि कई घटनाएं ऐसे आसपास के क्षेत्र में सुनने को मिल रहा है जो हम अपने विद्यालय की पवित्रता को, अपने विद्यालय की जो एक प्योर एनवायरमेंट है उसको नष्ट ना हो, इसको मेंटेन करते हुए हमने इस तरह की उसमें सेग्रे, इसके लिए हमें काफी काफी संघर्ष करना पड़ा क्योंकि हम लीक से हटके काम किए।
1: मैम देखिए, आज का जो ये कंपटीशन वाला एज चल रहा है, प्रतिस्पर्धाएं चुनौतियां हैं, तो आज के माहौल में सिर्फ किताबी ज्ञान ही काफी नहीं है। तो आप अपने संस्थान में बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या प्रयास कर रही है जिससे कि उनकी प्रतिभा किसी खास क्षेत्र तक ही सिमट करना रह जाए?
0: जो भी बच्चे को हम कार्य कराते हैं, चाहे वो सब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के तौर पे, तो उसमें कर्म भोग के तरफ ना जाए बच्चा, कर्म योग के तरफ जाए। अगर वो कर्म योग के तरफ जाएगा तो कोई भी सब्जेक्ट लेगा वो उसका कौशल को डेवलप करेगा, स्किल को डेवलप करेगा। और अगर पहले ही वो सोचे इससे मुझे मिलेगा क्या और हमको ये मिलना चाहिए ये मिलना चाहिए ये, अर्थात भोग, कर्म भोग के तरफ, कोई भी हम कर्म कर रहे हैं पहले ही उसकी प्राप्ति के तरफ हम चले जाए, तो फिर हमसे कौशल डेवलप करने वाला स्किल वो नहीं डेवलप करेगा। तो एक बात तो ये, दूसरी बात सब्जेक्ट के तौर पे हमने काफी सारे स्किल्स के सब्जेक्ट हमारे स्कूल में बड़े अच्छे लेवल पे है।
1: जी जी।
0: आप देखिए ताइक्वांडो बहुत हाई लेवल पे, कम से कम 150 बच्चों का टीम हमारे पास है जो जिसमें नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, स्टेट लेवल के प्लेयर हैं, सब वहाँ पे है। AI है, AI को हमने उससे कई तरह का चीजें बनाना सिखाते हैं बच्चों को, बच्चों को टेलरिंग सिखाते हैं कि कैसे वो स्टिच करे, बच्चे कैसे अपने घर में, जैसे मम्मी बीमार है, माँ घर में वो गैस यूज नहीं कर सकते हैं, पर उनको अपना खाना भी खाना है, घर वालों को भी खिलाना है, तो कुकिंग विदाउट फायर, कुकिंग विद फायर, इसके ऊपर काफी सारे प्रशिक्षण्स हम लोग टाइम टू टाइम देते रहते हैं। ऑलमोस्ट टाइम टू टाइम क्या, रेगुलर बेसिस में ही चलता रहता है,
1: जिससे कि
0: बच्चे में स्किल बहुत ज्यादा स्किलफुल हो बच्चा।
1: मैम जैसे कि आपके स्कूल में को एजुकेशन है, तो मैम बेटियों के लिए क्या आपके स्कूल में कोई विशेष प्रावधान है?
0: निश्चित रूप से, क्योंकि बेटियां हमारे समाज का एक, हम कहे कि 50% पार्ट तो वही कवर करते हैं, ये मानो एक बर्ड का दो पंख है। बेटियों के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि बेटियां अपने में स्वावलंबी बने, इसके ऊपर वर्क करते हैं, इसलिए कई तरह के ट्रेनिंग जैसे स्किल वाले जो है वो मेनली इंडिपेंडेंट करने की ही कोशिश है बच्चों को।
1: जिस तरीके से आप अपने संस्थान में छात्र और छात्राओं का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं वो सच में बहुत ही सराहनीय है। और मैम जैसे थोड़ी देर पहले आपने संगीत के बारे में बात की थी, तो मैम हम आपकी कुछ पंक्तियां सुनना चाहेंगे।
0: पर जो मुझे आता है मैं वो ही सुना देती
1: हूं। स्वागत स्वागत है मैम।

0: प्रभु।
1: वाह मैम, इतनी सुरीली सुंदर आवाज सुन के तो किसी का भी तनाव दूर हो जाएगा। सच में बहुत सुंदर।
2: थैंक यू
1: मैम। एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि भविष्य में जो आपके सपने और योजनाएं हैं, उनको सफल बनाने के लिए आप क्या प्रयास कर रही हैं?
2: बच्चों के भीतर जो एक एज यूजुअल सब जो मार्स के पीछे भागने वाला जो एजुकेशन

0: एजुकेशन का जो एक धारा बना है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ा दिया उसमें 90 नंबर ले आओ 100 ले आओ, बस इसी तक बच्चे को सीमित करना, इसको मैं ब्रेक करना करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे के भीतर जितनी हमने इसके चलते एक क्लास शो टाइप डेवलप किया है, हर क्लास में जितने बच्चे हैं, हर बच्चे में क्या प्रतिभा है वो अपने पेरेंट्स के सामने शो करे
1: जी।
0: तो उसमें एक कार्यक्रम हर क्लास के लिए हम लोगों ने बनाया है जिसमें बच्चे आके स्टेज में कोई कविता में, कोई किसी में, कोई कोई खेल के साइड में, कोई स्केटिंग में, कोई ताइक्वांडो में, बैंड में, इस तरह विभिन्न साइड में कम से कम 15 डिफरेंट एरियाज उसमें अपना प्रदर्शन, एक कार्यक्रम, एक डेढ़ घंटे का कार्यक्रम हम पेरेंट्स को सबको उस क्लास के जितने बच्चों के पेरेंट्स हैं सबको इनवाइट करते हैं, उनके सामने वो प्रस्तुत करते हैं इसी टारगेट को लेके कि आपका बच्चा केवल पढ़ने में ही नहीं उसके साथ साथ इन इन चीजों में अच्छा है, आप देखिए आपका बच्चा कहाँ कहाँ अच्छा किया, शायद आपको नहीं मालूम उसका ये हुनर है, कृपया उधर ध्यान दे और उसको एक स्पेस दे ताकि वो आगे बढ़ सके।
1: मैम कार्यक्रम में चलते चलते हम महिलाओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए एक संदेश आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह जैसे आपने अपने हौसलों की उड़ान को अपनी हिम्मत से पूरा किया है हमारी बेटियां भी करें।
0: उसमें मैं एक ही चीज कहना चाहेंगे कि कभी भी सच का रास्ता ना छोड़े, जहां पे जिस जगह पे ट्रुथ होता है, जहां पे प्योरिटी होता है, जहां पे अनसेल्फिशनेस होता है, वहां कोई उसको देर इज नो पावर बिलो और अबव द सन टू क्रश द पॉजिटर देयर ऑफ, वेर एवर देर इज ट्रुथ purity and unselfishness there is no power below or above the sun to crush the possessor thereof। कठिनाई सामने आएंगी, संघर्ष आएगा, उस समय घबराए नहीं, सच का साथ दे, purity को अपने संग बनाए और unselfish रहे तो प्रकृति ब्रह्मांड आपका साथ देगा और आप बढ़ते जाएंगे।
1: मैम आज आप हमारे स्टूडियो में आई और हमसे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां और विचार आपने हमारे साथ साझा किए, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: उड़ान हौसलों की। मैनो आपने सुना ये कार्यक्रम जिसमें हमारी मेहमान थी मॉडर्न पब्लिक एरा स्कूल बिजनौर की डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर सीमा बिस्वास। आपसे बातचीत कर रही थी हमारे साथी प्रियंका त्यागी। तो बहनों कैसी लगी ये बातचीत? भाई हम तो उम्मीद करते हैं कि इनके जीवन वृत्तांत को सुनकर आपको भी संघर्षों से लड़ने और सफल होने की प्रेरणा जरूर मिली होगी। और बहनों चलते चलते आपसे यही कहना चाहेंगे, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो हमें पत्र जरूर लिखें, और अब तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भी मैसेज कर बता सकती हैं कि कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं बहनों, और आपकी कोई भी प्रतिक्रिया है, आप और क्या हमारे कार्यक्रम को माध्यम से रेडियो पर सुनना चाहती हैं, ये भी आप हमें मैसेज के द्वारा लिखकर जरूर भेज सकती हैं। आपके द्वारा भेजे गए मैसेजेस को जरूर रेडियो के कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा बहनों, ऐसा आपको विश्वास दिलाते हैं। और बहनों मैसेज तो तभी आप करेंगी जब आपको हम अपना फोन नंबर बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम में चलते चलते आपको बताते हैं अपना व्हाट्सएप नंबर। बहनों हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करिएगा, हमारा नंबर है 9457078288। एक बार फिर से जल्दी से नंबर बता देते हैं, 9457078288। तो इस नंबर पर बहनों आपके मैसेजेस का हमें इंतजार रहेगा। और आज के कार्यक्रम का बस अब वक्त यहीं पर संपन्न हो रहा है, तो कार्यक्रम को समेटने की अपनी साथी सुनीता नेगी को अनुमति दें। बहनों नमस्कार।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कुमाऊनी लोकगीत गोपाल बाबू गोस्वामी के स्वर में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद

0: लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत आज आपने गोपाल बाबू गोस्वामी के गाए कुमाऊनी लोकगीत सुने। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है। अब हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्षा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to

0: 17th of July, promising a thrilling conclusion to football's greatest celebration. This World Cup is also expected to be one of the most challenging in history, with teams facing demanding conditions across three countries, including long travel distances, varying climates, different altitudes and shifting time zones. Over the decades, only 8 nations have lifted the FIFA World Cup trophy: Brazil, Italy, Germany, Spain, Argentina, England, France and Uruguay, the inaugural champions. Among the most unfortunate sides in World Cup history remain the Netherlands, who have reached 3 finals but are yet to win the title despite producing generations of world-class talent. From history to high stakes, from legends to new challengers, the stage is set for football's ultimate battle. Shagun Chopra from Sports Desk.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Viksit Bharat vision, chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. First Made in India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. Aakashwani se dopahar samachar ke saath main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण. उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है. राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया. सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया. तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया. भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की. अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की. और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ. समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है. नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है. श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए. उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले. बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है. इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास. बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं. किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं. प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहल न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया. इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. श्री वैष्णव ने

0: अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
0: ओमान की खाड़ी में पलाऊ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए, इनमें ईरान

0: के वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
1: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु

0: तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रखे हैं। दोपहर के 2:30 और 8 सेकंड हो रखे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम एक ही संगीतकार। एक ही संगीतकार क्रम में आज हमारे संगीतकार हैं सज्जाद हुसैन।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही संगीतकार लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं आपके सखी निधि भारद्वाज। कहिए कैसे हैं आप, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, कार्यक्रम में व्यस्त हैं लेकिन जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के निजी बात केंद्र से। और बताइए, ये जब आप केंद्र से जुड़ते हैं तो आपको निश्चित रूप से अच्छा लगता है ना भाई, लगता ही है, तभी तो आप हमारे साथ हैं। इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम संगीत की बातें करेंगे और संगीतकार की बात करेंगे। श्रोताओं, संगीतकार न केवल संगीत के द्वारा गीत को अच्छा बनाते हैं बल्कि संगीत मानसिक शांति को भी प्रदान करता है। साथियों, इतिहास गवाह है कि जिसने भी भीड़ से अलग काम किया है उनकी पहचान बनी है। ऐसे ही फिल्म संगीत की दुनिया में से आज हमारे चर्चा में रहेंगे सज्जाद हुसैन साहब। 15 जून 1917 को इनका जन्म सीता मऊ में हुआ था, जो उस समय मध्य भारत एजेंसी का एक गांव था जो अब मध्य प्रदेश में है और भारत का हिस्सा है। बचपन से ही उनके पिता मोहम्मद अमीर खान उन्हें सितार सिखाते थे और किशोरावस्था में उन्होंने वीणा, वायलिन, बांसुरी और पियानो भी सीखा। वो एक कुशल मंडोलिन वादक थे और वाद्य इस यंत्र पर उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को बजाने की महारत हासिल की थी। तो आज हम उन्हीं की बातें करेंगे और सुनेंगे उनके कुछ गीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में ये पहला गीत रूपलेखा फिल्म से, सुरैया सुरेंद्र की आवाज़ में।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, DTH पर लाइव

0: स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम आनंद की अटूट रसधार।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: श्रोताओं, एक ही संगीत कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं सज्जाद हुसैन की, और ये कार्यक्रम आप सुन रखे हैं अपनी सखी निधि भारद्वाज के साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। साथी, 1937 में सज्जाद हुसैन ने फिल्म संगीतकार के रूप में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और बड़े भाई निसार हुसैन के साथ बम्बई आ गए। उनकी पहली नौकरी सोहराब मोदी के मिनरवा मूवी टोन में 30 रुपये प्रति माह के वेतन पर शुरू हुई, और बाद में वाडिया मूवी टोन जब ये गए तो 60 रुपये प्रति माह का वेतन मिलता था। और कुछ वर्षों के दौरान आगे के संगीतकार मीर साहब और रफीक गजबी के सहायक के रूप में शौकत हुसैन रिजवी के लिए अनुबंध पर वाद्य यंत्र वादक के रूप में भी इन्होंने काम किया। और कहते हैं कि भारतीय हिंदी सिनेमा के संगीतकार के रूप में आप अरबी शैली के संगीत से अपनी धुनें सजाने में माहिर सज्जाद हुसैन जी ने ऐसे ढेरों प्रयोग किए, यानी मौलिक तरह से अपने संगीत को ईजाद किया कि सब उनको सुनकर अनोखा ही बताते थे। ठीक उसी समय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के व्याकरण से चुनकर राग रागनियों के स्वरों का भी इस्तेमाल करना उनका पसंदीदा काम रहा। वे इस मामले में लीक से हटकर संगीतकार रहे। तो बातें अभी और भी करेंगे आपके बारे में। आइए अब सुनते हैं फिल्म दोस्त का ये गीत, जिसे गाया है नूरजहां ने। संगीत तो आपको पता ही है, आज संगीतकार हैं सज्जाद हुसैन।

0: ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रद्धा, संदेश से पहले जो आपने गीत सुना, सच में उसमें कितना ठहराव, कितनी पाकिजगी थी। सज्जाद साहब की यही खासियत है कि उन्होंने अपने समकालीनों से बिल्कुल अलग और ऊंचा मुकाम देने वाला संगीत चुना। सैया, खेल, हलचल जैसी फिल्मों में अनूठा संगीत देने के बाद उनके करियर में एक और बेहद खास फिल्म रही रुस्तम सोहराब। इस फिल्म का संगीत उनके करियर के उस शिखर को दिखाता है जहां अरबी शैली और भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे सुंदर मिलाप हुआ था। कहते हैं कि सज्जाद हुसैन जी ने सुरैया, लता मंगेशकर और आशा भोसले सहित कई उल्लेखनीय गायकों के साथ काम किया। अनिल विश्वास सहित उनके समकालीनों द्वारा उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था। सज्जाद हुसैन द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ संगीत में से एक फिल्म रुस्तम सोहराब की, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, वो 1963 में जब फिल्म आई तो उन्हें एक अलग पहचान दी गई, और जिसमें सुरैया ने एक गीत गाया, ये कैसी अजब दास्तां हो गई। भाई कैसी अजब दास्तां हो गई कि इतनी तारीफ उस समय होती थी, तो क्यों ना आई हम भी उस गीत को आज सुनें।

एक ही संगीतकारी कार्यक्रम आप सुन रखे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज हमारे संगीतकार हैं सज्जाद हुसैन। श्रोताओं, सज्जाद हुसैन एक कुशल वाद्य वादक थे। मैंडोलिन, अकॉर्डियन, गिटार, वायलिन, पियानो, बेंजू, लगभग सभी वाद्यों पर सज्जाद साहब की पकड़ देखने लायक थी। और संगीत की बात तो ऐसी थी कि जो भी उनके साथ काम करता था बहुत कॉन्शियस होकर काम करता था, क्योंकि उन्हें संगीत में त्रुटि पसंद नहीं थी। एक बार साक्षात्कार में लता मंगेशकर से उन संगीत निर्देशकों के बारे में पूछा गया, तब पूछा गया कि किन्हें प्रसन्न करना कठिन रहा, तो लता मंगेशकर जी ने उत्तर दिया कि अपने करियर की शुरुआत में सभी के साथ कठिनाइयां थीं, क्योंकि अभी सीख रही थी, इस क्षेत्र में नई थी, लेकिन हमेशा सज्जाद हुसैन जी से वो आशंकित रहती थी, क्योंकि वो बहुत ही विशिष्ट थे। सज्जाद हुसैन को तेज आवाज में गाना पसंद नहीं था। वह हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि सभी वाद्य यंत्र पूरी तरह से ट्यून किए गए हों। उन्होंने इस पर कभी समझौता ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहली रिकॉर्डिंग के कई वर्षों बाद भी सज्जाद हुसैन के गाने सहज लगते हैं और सुनने में कष्टदायक नहीं होते। तो ये तो कहा था लता मंगेशकर जी ने, और लता मंगेशकर जी ने उनके साथ जो गीत गाया था, आइए हम सुनते हैं फिल्म संग दिल में ये गीत।

सच में श्रोताओं, अगर कोई हमसे दूर हो जाता है तो हम उसको याद तो करते ही हैं और उन दिनों को भी याद करते हैं, जैसे आज हम याद कर रहे हैं सज्जाद हुसैन संगीतकार के दिनों को। और अभी जब हमने आपसे इस गीत से पहले बात की तो बताया कि लता मंगेशकर जी जो महान पार्श्व गायिका रही हैं, उन्होंने अपने अनुभव को बताया। एक अन्य अत्यंत सम्मानित संगीत निर्देशक अनिल विश्वास जी ने भी उनके बारे में कहा था कि सभी मानकों के अनुसार सज्जाद हुसैन एक मौलिक प्रतिभाशाली संगीत निर्देशक थे जो अन्य सभी से अलग थे, और उनकी प्रत्येक संगीत रचना में सबसे कठिन स्वर होते थे जिन्हें वो स्वयं बनाते थे और उसमें उन्हें अत्यंत आनंद मिलता था। और साथियों, सज्जाद हुसैन एक असाधारण मैंडोलिन वादक थे, हमने आपको बताया, और उन्होंने मुंबई के फिल्म उद्योग में 5 दशकों से अधिक काम किया, लगभग 22,000 से अधिक गानों में मैंडोलिन बजाया। संगीत के इस महान जादूगर का निधन 21 जुलाई 1995 को हो गया। उनके अंतिम संस्कार में केवल खयाम और पंकज उदास ही उल्लेखनीय फिल्मी हस्तियां शामिल रहीं। अनुभवी संगीत निर्देशक नौशाद ने एक बार कहा था कि सज्जाद हुसैन एक बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, संगीत के बारे में उन्हें बहुत जानकारी थी, लेकिन उनका स्वभाव ही उनकी असफलता का कारण बना। आइए अब कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत नसीम और रत्नाबाई के स्वर में, फिल्म धर्म से।

श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम में अंतिम गीत सुनते हैं संगीतकार सज्जाद के संगीत निर्देशन में। आशा भोसले और किशोर कुमार के स्वर में फिल्म रुखसाना का है ये गीत।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के साथ बस हम यही कहेंगे, यादों की पोटली में भरकर, यादों की पोटली में भरकर हम यह हसीन पल ले जाएंगे, आज की इस महफिल को हम सदा दिल में बसाएंगे। तो अब कार्यक्रम संपन्न करने की अपने सखी निधि भारद्वाज को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

एक ही संगीतकार। इस क्रम में आज आपने सज्जाद हुसैन के गाए कुछ सज्जाद हुसैन के संगीत निर्देशन के कुछ गीत सुने। मीडिया वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3 बज रहे हैं। हमारी इस सभा के प्रसारण अब संपन्न होते हैं। अपनी संध्याकालीन प्रसारण सभा में शाम 4 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 4 बजने को है। अब हमारी संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स, जो हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: भारत एक महान देश हमारा, हम अपने भारत से बहुत प्यार करते हैं। इस प्यार में मिट्टी से तिलक लगाते हैं, अपने बदन पर तिरंगा ओढ़ने की चाह रखते हैं। इस तिरंगे को मान सम्मान मिले वो इरादा रखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी ने एक बारी कहा था कि भारत में हर एक जीव, मनुष्य हो पशु पक्षी हो, वो भारत की तरक्की के लिए योगदान दे रहा है। और आज संदेश टू सोल्जर्स में हम एक ऐसे फोर्स की बात करेंगे जिसने भारत के लिए योगदान से भी ज्यादा अपना समर्पण दिया है। आज हम सशस्त्र सीमा बल, जो भारत की एक प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, उसके बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह, प्रेसिडेंट मेडल से नवाजे गए, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री उनको ये सम्मान दिया गया, आंतरिक सुरक्षा पदक से सम्मानित ललित शाह जी आते हैं पहाड़ों की उन वादियों से जहां बचपन में ही उनका एक जज्बा उनको भारत की सेना में, भारत के सशस्त्र बल में कहीं ना कहीं किसी रूप में योगदान देने के लिए प्रेरित कर गया। आज हम उनके साथ साथ सशस्त्र सीमा बल से जुड़ी तमाम बातों की यहां चर्चा करेंगे। एसएसबी जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी विशेष सेवा ब्यूरो के रूप में, और वर्तमान में भारत नेपाल सीमा जो लगभग 1751 किलोमीटर की, और भारत भूटान सीमा जो लगभग 700 किलोमीटर की है, उस सेना उस कार्यरत जवानों की अफसरों की जहां बाज योगदान उस कंट्रीब्यूशन की बात हम यहां करेंगे संदेश टू सोल्जर्स में। आइए पूरे भारत के साथ स्वागत करते हैं सेकंड इन कमांड ललित शाह जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आप स्टूडियो में मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पर, और एक प्यारी सी उस यूनिफॉर्म का, उस फोर्स का हिस्सा है। आपको देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है, जज्बा आता है, जोश आता है। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल बहुत खास फोर्स है हिंदुस्तान की।
1: जी बिल्कुल, हमारी जो फोर्स है ये भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमाओं की रक्षा करती है। सारी ही फोर्सेस का बॉर्डर जो है वो अपने आप में विशेष होता है, परंतु हमारी फोर्स का जो बॉर्डर है उसकी अपनी विशेषता है। ये एक पोरस बॉर्डर है और सीमा के पार जो लोग हैं उनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। इस बॉर्डर को मैन करना, इस बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक चैलेंज है, और उस चैलेंज को एसएसबी के सारे जवान, सारे अधीनस्थ अधिकारी और अधिकारी अपने पूरे ईमान से, पूरी मेहनत से 24/7 365 डेज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और ये फोर्स भारत की सेवा में हमेशा तत्पर है। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है, सेवा सुरक्षा और बंधुत्व, हम उस पर कार्य करते हैं, और लगातार जो है हमारा पूरा फोर्स इस ध्येय वाक्य को साधने पे लगा हुआ है।
0: तो शाह साहब, आपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो असाइनमेंट्स हैं उनमें आपने हिस्सा लिया, आपने की अपॉइंटमेंट्स में से मैं कहूँगा कि फिलहाल आप एसएसबी एकेडमी में, जो श्रीनगर है उत्तराखंड, वहाँ पर आप ट्रेनिंग का जो भार है वो संभाल रहे हैं। 9 बटालियन के साथ आप थे बिहार में, सीतामणि में, बलरामपुर में, और ढेर सारे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे, लेकिन इस फोर्स में आना आपके लिए कब तय हुआ, कब आपने ये डिसाइड किया कि ये फोर्स कुछ खास है और मुझे इसके साथ जुड़ना है?
1: ये स्कूल के दिनों की बात है। मैंने अपनी स्कूलिंग पिथौरागढ़ से की है, और पिथौरागढ़ में भी जो मेरा स्कूल रहा है केंद्रीय विद्यालय, वो छावनी क्षेत्र में रहा है। मेरे क्लासमेट्स भी अधिकतर फौजी बैकग्राउंड से, सीएपीएफ बैकग्राउंड से ही रहे हैं।
2: जी जी।
1: जब भी हम स्कूल जाते थे तो हमेशा ही फौज की वर्दी, फौज का डिसिप्लिन, फौज के कार्यकलाप हमेशा बचपन से ही देखते आए हैं। तो एक छोटे बालक से जब हम बड़े होते गए तो फौज को देखते देखते ये फोर्स यूनिफॉर्म पहनने का जज्बा तो तभी आ गया था। उसके बाद जब मौका मिला तो हमने फौज फोर्स में ज्वाइन कर लिया।
2: तो मैं बात कर रहा हूँ कि 1970 का जो दशक था, 80 का दशक था, तब सशस्त्र सीमा बल के बारे में बहुत लोग शायद नहीं भी जानते होंगे हमारे देश में, लेकिन उस समय आप पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, पहाड़ी इलाका है। अगर मैं कहूँ कि उस 80 के दशक में भी बहुत सारी डेवलपमेंट शायद नहीं हुई होगी पिथौरागढ़ में, तो क्या सिचुएशन वहाँ थी आपके गाँव की, और फौज में आना कितना प्रेरणादायक था और किसने आपको प्रेरित किया?
1: उस समय पे पहले सशस्त्र सीमा बल का जो नाम था वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था।
2: जी, जी।
1: तो कैपसेक के अंडर आती थी, तो एक कोवर्ट फोर्स की तरह से ही काम करती थी। बॉर्डर गार्डिंग में सशस्त्र सीमा बल सन 2001 से आई है। 2001 में पहली बार भारत नेपाल की सीमा की रखवाली के लिए सशस्त्र सीमा बल को कार्य सौंपा गया। 2004 में भारत भूटान सीमा। अगर मैं अपने समय की बात करता हूँ तो तब हम सशस्त्र सीमा बल को इस तरीके से नहीं जानते थे, तब ये फोर्स का उद्भव इस तरीके से नहीं हुआ था।
2: जी, जी।
1: तब हम ITBP को देखते थे, हमें CRPF की जानकारी थी, BSF की जानकारी थी, आर्मी के बारे में हम जानते थे। पर कालांतर में जैसे ही फोर्स के बारे में फिर पता चलने लगा तो फिर हमें भी पता चला कि इस तरीके से एक फोर्स है जो भारत नेपाल और भारत भूटान की रक्षा करती है, तो उस पे आने का रुझान बन गया।
2: पहले बॉर्डर की बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं भारत के, लेकिन आपके लिए भी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन होती होंगी उस बॉर्डर पे। आपने कहा पोरस बॉर्डर है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं?
1: अगर आप बॉर्डर को देखेंगे तो दोनों तरफ एक से ही लोग रहते हैं, खासतौर पर भारत नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही तरफ एक ही हाइट के, एक ही कॉम्प्लेक्शन के, एक से ही लोग दोनों तरफ रहते हैं और आवाजाही दोनों तरफ से आना जाना फ्री है, आप मूवमेंट को नहीं रोक सकते। परंतु सारे ही अच्छे लोग नहीं होते हैं, कुछ लोग जो है अलग अलग गतिविधियों में भी लगे होते हैं, तस्करी है, मानव तस्करी है, बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिसको रोकने के लिए हमें मैंडेट मिला है। तो उस मैंडेट को पूरा करना एक चैलेंजिंग टास्क है, और उसी टास्क को जो हम हैं ह्यूमन इंट कहिए या दूसरी तरीके से इंट हासिल करके, उसके अलावा लगातार नाका पेट्रोलिंग गश्त कर रहे हैं, 24 घंटे उस बॉर्डर को मैन कर रहे हैं, और ये एक चैलेंजिंग टास्क है और इसको हम बखूबी निभा रहे हैं बॉर्डर पे।
2: और आपकी जो फोर्स है वो फेस है भारत का
1: जी
2: इन कंट्रीज के, तो यानी अगर कोई इंटेलिजेंस की भी फीडबैक आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी।
1: बिल्कुल।
2: या कोई आप अगर कोई गतिविधि देखते हैं तो आर्म्ड फोर्सेस को या आर्मी को या जो हमारी जो तीनों सेनाएं हैं आपकी एक रिपोर्ट उन तक पहुंचती होगी।
1: बिल्कुल।
2: बट जैसा आपने कहा कि ठीक है दोनों देश अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग भेस बदल के भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं, हो सकता है इन देश के ना हो किसी और देश के हों, तो आपके लिए वो चैलेंजिंग कितना होता है कि ये पहचानना कि ये लग तो रहे हैं नेपाल के भूटान के लेकिन शायद किसी और देश के हो सकते हैं?
1: ये हमने अपने एक्सपीरियंस से। दूसरा, अब जो तकनीकी गैजेट्स आ रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हम CCTVs को यूज़ कर रहे हैं, हम कैमराज जो है अच्छी क्वालिटी के, हमने

0: श्रीनगर, श्रीनगर का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं शायद कश्मीर की वादियों की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वादी तो है लेकिन कश्मीर की नहीं, उत्तराखंड की वादी है श्रीनगर, और वहाँ पे आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
1: बिल्कुल।
0: और किस तरह की ट्रेनिंग आप लोग?
1: बेसिकली जो हमारा CTC है वो सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर है, और यहाँ पे हम जो है हमारे जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स आते हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग हम वहाँ पे कराते हैं।
0: ओके।
1: उसके अलावा जितने भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशनल कोर्सेज हम वहाँ पे कराते हैं।
0: ओके।
1: उसके अलावा भी कुछ एलाइड कोर्सेज हैं हम वहाँ पे कराते हैं, क्राफ्टिंग का कोर्स कराते हैं, और भी बहुत गतिविधियों को हम वहाँ पे करते हैं।
0: जी, जो सारी डिटेल आप नहीं देना चाहेंगे मैं समझ सकता हूँ, बट क्योंकि पहाड़ी इलाके है और नेपाल और भूटान भी एक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, शायद ये वजह है कि आप लोग उत्तराखंड में आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।
1: बिल्कुल, ये सही बात है कि एक्चुअली जब ये फोर्स का जब जन्म हुआ है तो ये बेसिकली जो इसके शुरुआती रोल रहे हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में ही इसकी डिप्लॉयमेंट रही है, क्योंकि जब वो स्पेशल सर्विस ब्यूरो होता था तो वहाँ पे ही डिप्लॉयमेंट रही है। तो ट्रेनिंग सेंटर भी उसी हिसाब से जगह को छाट के बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे जो है वहाँ के लोगों को ट्रेन किया जा सके और बॉर्डर पॉपुलेश तक आसानी से पहुँचा जा सके, इसलिए उत्तराखंड का चुनाव।
0: और आप ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में है आप CTC में, ये कितने समय से है?
1: मेरे को अभी एक साल हुआ है लगभग।
0: और उससे पहले आपने ढेर सारे ऑपरेशंस किए हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स, और एक खास मेहमान हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, अ वेरी स्मार्ट लुकिंग यंग ऑफिसर, ही इज सेकंड इन कमांड ललित शाह ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम कहते हैं SSB। यहाँ पे एक क्योंकि प्रथा है हमारे यहाँ और प्रोग्राम का एक फॉर्मेट भी है कि हम यहाँ आपके पसंद के गीत चलाते हैं, तो कौन सा गीत आप पेश करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए?
1: ऐ मेरे वतन के लोगों।
0: ओके, ये आपको बहुत प्रिय है?
1: बहुत प्रिय है।
0: और कोई खास वजह?
1: पहले से सुनते आ रहे हैं, जब भी स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो ये गाना इनवेरिबली रहता ही था।
0: जी जी,
1: तो दिल को छूता है ये।
0: एंड इट्स संग बाय वन ऑफ द ग्रेट सिंगर्स जिसको हम कहते हैं द नाइटिंगेल एज फार एज द प्लेबैक सिंगिंग इज कंसर्न्ड, द लेट द लेजेंडरी लता मंगेशकर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सशस्त्र सीमा बल के सेकंड इन कमांड ललित शाह। और आज हम इस भारत की खास फोर्स के बारे में उनकी जुबानी सुन रहे हैं। इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को ये एक मैत्रीपूर्ण भाव के साथ देखते हैं, वहां तैनात रहते हैं और इसके अलावा भी बहुत योगदान देते हैं भारत की तरक्की में। लेकिन यहाँ सेकंड इन कमांड ललित शाह जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब आपकी पहली पोस्टिंग हुई तब आपको कैसा लगा और वो एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ पोस्टिंग हुई?
1: मेरी अपनी बेसिक ट्रेनिंग हम लोगों ने हमारी अकादमी में जब पूरी की, उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग 9th बटालियन में हुई, बिहार में सीतामढ़ी एक जगह है, वहाँ पे मेरी पहली पोस्टिंग हुई। और उसके बाद मुझे जो है बॉर्डर पोस्ट के लिए भेजा गया बटालियन से, तो वहाँ पे मैंने अपनी तैनाती के दौरान सबसे पहले तो जब मैं वहाँ जवानों से मिला तो एक कंपनी है तो उसमें जो जवान है वो एक कुटुंब हो जाता है। फिर मैंने वहाँ अपनी ड्यूटीज़ को समझा
0: जी,
1: हमको दिए गए दायित्वों के बारे में जाना, हमारे जवान किस प्रकार से वहाँ पे ड्यूटी करते हैं वो जाना
0: जी,
1: और मैंने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जाना। और उसके बाद जो हमारा मैंडेट है, जो हमको मैंडेट दिया गया है, उसको पूरा करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है उसका कार्यान्वयन करवाया मैंने, और एक अच्छा मेरा टेन्योर वहाँ पे लिखा अपने जवानों के साथ
0: जी।
1: और हमने एक अच्छा समय वहाँ पे व्यतीत किया। और बॉर्डर गार्डिंग के जो गुण हैं, बहुत एक्टिव बॉर्डर रहा है, लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे से, और कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो इस तरीके कार्य करते हैं, उस तरीके का कार्य भी वहाँ पे रहता है, तो वो सब भी जानने का मुझे मौका मिला और किस तरीके से रोकना है अपने।
0: तो जब हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार का एक बॉर्डर है जो नेपाल से टच करता है, वैसे ही उत्तराखंड का भी कुछ एरिया है जो नेपाल से टच करता है
1: जी।
0: और अगर हम यूपी की बात करें, यूपी भी एक ऐसा राज्य है, तो यहाँ पे आपकी जो सेना है वो तैनात है
1: जी।
0: और उसके बाद कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए नया था लेकिन था बड़ा इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा ऑपरेशन?
1: अगर ऑपरेशंस की बात करें तो जो मेरा नक्सल का टेन्योर रहा है, एसएसबी को बॉर्डर गार्डिंग के अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशंस, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़, इसके लिए भी चुना गया है। तो मेरी एक पोस्टिंग रही है नक्सल ऑपरेशंस में, तो उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और हम लोगों ने उस जिस ज़िले में हम लोगों को दिया गया था उस ज़िले को नक्सल फ्री कराने में हमारी टीम का बहुत बड़ा योगदान है, हमारी फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है।
0: कौन सा एरिया है और ये क्या ऑपरेशन था, कुछ बताना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि संथाल परगना जो है झारखंड में, जो उत्तर पूर्वी झारखंड है, उसके 6 जिलों को मिला के संथाल परगना बोला जाता है, जिसमें गोड्डा पाकुड़ दुमका साहेबगंज जामतारा और देवगढ़ जिले आते हैं। इसमें से जो 3 जिले हैं दुमका पाकुड़ और गोड्डा, ये नक्सल इंफेस्टेड जिले हैं 1990 के समय से। और जब मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ 2018 में, उससे पहले पीक नक्सल टाइम वहाँ पे रहा है। और इवन एक ऐसा समय था वहाँ पे 2013 के आसपास कि वहाँ पे नक्सलियों द्वारा एसपी पाकुड़ की हत्या कर दी एक आईपीएस ऑफिसर की। अमरजीत बलिहार सर करके आईपीएस ऑफिसर थे, तो जब हम लोग वहाँ पे गए तो जो हम लोगों का कार्य था इस क्षेत्र में गोड्डा पाकुड़ और दुमका, इस क्षेत्र में हमारी कंपनियां थी, तो यहाँ पे हम लोगों को नक्सल ऑपरेशंस करने थे। तो इसको इसलिए हमको डिप्लॉय किया गया था। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक हमारे सीनियर्स के द्वारा प्लानिंग की गई और उसके बाद हम लोगों के द्वारा टीम बनाई गई वहाँ पे, और उस टीम की मदद से जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस वहाँ पे किए हैं, और उस ऑपरेशंस का ही नतीजा है कि आज दुमका नक्सल फ्री डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलवाद लगभग वहाँ से ख़त्म हो गया।
0: अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूंगा, ये नक्सलवाद वहां पर है तो आप लोगों की कभी भी कोई ऐसी कोशिश रही तो होगी कि हम बातों से थोड़ा सा बिफोर कोई ऑपरेशन या कोई ऐसी घटना हो तो हम बातों से बातों का जो सिलसिला उसे रखकर कोई चीज सॉल्व कर सके?
1: बिल्कुल, कोई भी ऑपरेशन की जो ये ऑपरेशंस हैं उससे पहले सारी तैयारी जो है परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है। उसके अलावा जो आपका जो लोकल पॉपुलेस है उसका आपको विश्वास जीतना है, उसमें आपने एक विश्वास बनाना है अपने, तभी इंफॉर्मेशन फ्लो भी होती है। हम लोगों ने बहुत कार्य किया अंदरूनी इलाकों में जाके, हम लोग वहाँ पे जाके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स करते थे, मेडिकल सिविक एक्शंस करते थे, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे बिल्कुल दूर दराज के गांवों में जाके ओपीडीज लगाते थे। उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के लिए बहुत,
0: ये सब एसएसबी कर रही है?
1: बिल्कुल एसएसबी कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग के कोर्सेज कराए, जो बच्चे होते हैं उनको हमने ड्राइविंग के कोर्स कराए, उसके अलावा मैकेनिक के कोर्स करवाए, प्लम्बिंग के कोर्स करवाए, उनको जोड़ने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने।
0: मैं ये सोचता हूँ, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो, आपकी जो फोर्स है वो टेररिज्म से भी वो काउंटर टेररिज्म में अपना रोल अदा करती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक एस्टैब्लिश फोर्स हो गए या आर्मी के अगेंस्ट या हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई टक्कर ले रहा है तो वो जस्ट एनी अदर ह्यूमन बींग नहीं होगा, वो एक युवा होगा जिसको मिसगाइड किया गया होगा और आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया होगा, तो उस युवा को थोड़ा सा काउंसलिंग करने का भी श्रेय आपकी फोर्स लेती है?
1: बिल्कुल, हमने बहुत बहुत बार हम लोगों का ये फ्रिक्वेंट, जब भी हम जाते थे अंदरूनी इलाकों की तरफ
0: जी,
1: वहाँ के युवाओं से बातचीत करने का प्रयास, उनको स्कूलों के प्रति जागरूक करने का प्रयास। नक्सलियों की एक टैक्टिस रही है कि वो लोगों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, उनको कभी भी सरकार के द्वारा मिली हुई चीज़ों को लेने नहीं देना चाहते हैं, कभी रोड नहीं बनना देना चाहते हैं, उनकी टैक्टिस को रोकना, रोड बनने देना, विद्यालयों को अंदर तक का पहुंचाना, हॉस्पिटल्स की सुविधा उनको अंदर तक पहुंचाना, गांव वालों को विकास के नज़दीक लेके जाना, ये कार्य हम लोगों ने उस क्षेत्र में बखूबी तौर से किया। और हमारे ही वहाँ पर तो इवन मैंने ये देखा कि जो रोड बन रहा है उस रोड को बनाने का प्रोटेक्शन भी हम थे कि आप बनाइए, जो वो ठेकेदार है वो भी तब बना पाता है जब उसको लगे विश्वास हो कि भाई मुझे नक्सली हमला नहीं करेगा, ये सुरक्षा भी हमने प्रदान करी। अब मुझे लगता है कि बहुत अंदर अंदर तक का रोडे पहुंच गई, विकास जैसे ही पहुंचता है नक्सलवाद अपने आप ही भाग जाता है।
0: पर आपको क्या लगता था कि किस पॉइंट को लेकर नक्सलवाद वहां पे इतना इतने सालों तक रहा, कुछ आपको आईडिया क्यों वो विकास नहीं चाहते?
1: मेरे हिसाब से तो एजुकेशन का ना होना, लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं था कि सरकार क्या चीज़ है। 90 का दशक है, वहाँ पे लोक अदालतें लगती थी, ये लोग अपने आप फैसले देते थे, ये लोग किसी को भी मुखबिर घोषित कर देते थे, उसको मार देते थे,
0: पनिशमेंट,
1: कोई भी बिजनेस कर रहा है उससे लेवी वसूलते थे। तो एक जो इन्होंने खौफ भी बनाया लोगों के मन में, तो लोग सीधे साधे हैं। झारखंड में जिस इलाके में मैं रहा हूँ संथाल परगना में, बहुत सीधे साधे लोग हैं, जानकारी का अभाव है, पढ़ाई की नहीं गई है, स्कूल तक पहुँचने नहीं देते थे, पिछड़ा हुआ रखा उन्हें और दबा दिया गया, और यही इसी से नक्सलवाद वहाँ पर बढ़ा शुरू में। फिर इन्होंने कोई भी चीज़ के उसमें बैरियर लगा दिया, आप और जवान लड़कों को अपने संग ले जाके उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते थे, तो डर भी एक चीज़ थी जिसकी वजह से ये लोग नक्सलवाद की तरफ बढ़ गए, लोग डर की वजह से।
0: तो आपका जब ऑपरेशन हुआ, आपने बताया कि बहुत प्रमुख ऑपरेशन था, तो वो कुछ उसमें हम अभी यहाँ इस प्रोग्राम में जान सकते हैं कि कितने कितने मैं कहूँगा कि अपोनेंट या नक्सल आपके अगेंस्ट थे या सामने थे, आपकी फोर्स में कितना वो था और कितनी देर ये ऑपरेशन चला और क्या था?
1: हाँ, मैं ज़रूर बताता हूँ, थोड़ा सा और मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि किस तरीके से ये हम लोगों की टीम डेवलप हुई। तो कुछ व्यक्ति हैं, विशेष व्यक्ति हैं जिन लोगों की वजह से हम लोग इतना अच्छा ऑपरेशंस कर पाए। नाम लेना चाहूँगा मैं उनका, हमारे आईजी सर थे श्री संजय कुमार, हमारे डीआईजी सर श्री सुमित जोशी
0: जी,
1: हमारे कमांडेंट सर परिचित सर, मेरे कलीग्स और मेरे सीनियर सतीश सर थे। बहुत अच्छा साथ ही हमें साथ मिला अपने जवानों का और मेरे साथी नरपत, गुलशन, विनायक, ये हम लोगों की एक बड़ी अच्छी टीम डेवलप हुई। इसी के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी ये रही कि उसी समय जो जिले के एसपी श्री वाई एस रमेश, उसके अलावा सीआरपीएफ के जो एएसपी ऑफिस थे इमानुल बास्की और आर सी मिश्रा सर, हम लोगों की टीम जो एक डेवलप हुई और हमारे आईजी सर के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने एक टीम बनाई जिसको हमने अपने ही बटालियन के अंदर अपने ही लोगों से एक स्मॉल एक्शन टीम करके, और उस टीम को हमने जो है उसमें हमने ऐसे लोग लिए, एक छोटी टुकड़ी बनाई, क्योंकि बहुत लोग जाके ऑपरेशंस नहीं करते, तो एक छोटी टुकड़ी बनाई जिसको एक ऑफिसर लीड करता था, उसके संग 20 जवान, तो वो जवानों का सिलेक्शन, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग, उनके बाद उसको जो उसके टैक्टिकल वेपन्स, एक फिर उसके बाद आया हमारा इंट जो टैक्टिकल इंट थी, तो इसमें एक नरपत सिंह जो अभी डिप्टी कमांडेंट है उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने जो लोगों के बीच में पैड बनाई और जो इंफॉर्मेशन एक फ्लो होने लगी उससे हमें बहुत फायदा हुआ। और हमारी टीम ने, आप मानेंगे कि ऑपरेशन तो एक दिन है, पर उससे पहले की जो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हम लगातार जंगलों को डोमिनेट करते रहे, हमें हर जगह जाके कि हम कहाँ पे किस तरीके से पोजीशन लेंगे, रिहर्सल्स जो हम लोगों ने बहुत सारी की, उसी का ये नतीजा रहा कि हम लोगों ने वहाँ बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए। और उन ऑपरेशंस की ही वजह से जो है हमारी बटालियन जो है एक टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री मेडलिस्ट की बटालियन रही है।
0: वाह, वंडरफुल। तो ये तो बात हम ऑपरेशंस की कर रहे हैं, और उसके बाद जब एक कंप्लीशन होता है, ठीक है, गौरवान्वित इंसान फील करता ही है, लेकिन आपको लगता है कि आपके उन ऑपरेशन से जो बाकी जो लोकल जो लोग थे उनको बड़ी राहत मिली, दे वर वेरी हैप्पी, शायद वो भी दबा के रखा होगा उन्होंने कि नहीं, हम भी चाहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो झारखंड जैसे एरिया में, थोड़ा और मॉडर्नाइजेशन हो, तो उनका भाव आपके जो भी आप कार्यरत थे जितने टाइम के बाद, कुछ सेटिस्फैक्शन उनके भी चेहरों पर दिखे।
1: बिल्कुल, आतंक का पर्याय थे ये नक्सली, ये नक्सलियों, लोग डरते थे इनसे, इनके पास हथियार थे, इनके पास AK-47 इंसाफ, इस तरीके के वेपन्स थे जो इन्होंने पहले से लूट लिए थे, इस तरीके के वेपन्स लेके ये जब लोगों के घरों में रात को घुसते थे, उनसे जबरदस्ती खाना बनवाते थे, उनके घर में रहते थे, तो जब ये नक्सली मारे गए या इनका सफाया हो गया, तो डेफिनेटली लोगों ने जश्न मनाया है, लोग खुश हैं, आज तरक्की की राह पे आगे बढ़ गए हैं, और उनके पास अब अपॉर्चुनिटीज पहुंचने लगी हैं। ये बैरियर थे उस अपॉर्चुनिटीज के, और वो बैरियर तोड़ दिया, SSB ने वहां जाके इस बैरियर को तोड़ दिया।
0: आपके फोर्स के अंदर फिर क्या माहौल हुआ? मैं समझ सकता हूँ आप ऑपरेशन में थे, आपकी एक टीम थी, लेकिन आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, तो ये खबर जब पूरी फोर्स में फैली होगी, तो उत्साह के साथ साथ मेरे ख्याल से एक मोटिवेशनल भी एक स्टेप हो गया होगा सबके लिए।
1: बिल्कुल, ये हमारी जो टीम थी, इसी तरीके से हमारे जो बिहार और झारखंड में जो नक्सल ऑपरेशन में जो टीम्स थी
0: जी,
1: वो टीम्स ने भी हमारी टीम्स के इस जो कार्य करने की शैली थी, इसके बाद जो है उनका भी कार्य शैली में बड़ा परिवर्तन हुआ, और मतलब बेहतर रिजल्ट्स आने लगे, और मोटिवेशन तो होता ही है फोर्स में, जब देख रहा है दूसरा कि ये टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, तो एक कंपटीशन है और एक पॉजिटिव कंपटीशन है, और सब सारी ही यूनिट्स ने फिर वहाँ पे झारखंड और बिहार में बहुत अच्छा काम किया है।
0: और वो मेरे ख्याल से ऐसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बाद आप एक रिसर्च पेपर भी तैयार करते होंगे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं हम उनको कैसे ग्रूम कर रहे हैं आगे जाके।
1: बिल्कुल,
0: और शायद वही आप कर रहे हैं अपनी CTG में जो ट्रेनिंग आप।
1: बिल्कुल, हम हमेशा बताते हैं उन्हें कि किस तरीके से ये ऑपरेशंस रहे हैं, ये केस स्टडीज जो है ये लगातार भागों में हर जगह हर ट्रेनिंग सेंटर्स पे चलती रहती है।
0: तो भारत के किन किन प्रांतों से आपके फोर्स के अंदर आप रिक्रूटमेंट करते हैं?
1: ऑल इंडिया, हमारे सभी जगह से लोग आते हैं, साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह के लोग हैं हमारे वहाँ पे, बहुत ही भरा पूरा परिवार रहता है और हम हर फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं। हमेशा कोई ना कोई किसी प्रांत का फेस्टिवल होता है तो बहुत अच्छा।
0: तो मेरे ख्याल से आप ट्रेनर हैं तो आपका भी सबसे पहला सवाल होता होगा किसी नए रिक्रूट से जो आप मिलते होंगे कि आप क्यों आए हो एसएसबी में, क्या खींच कर लाया आपको एसएसबी, कुछ ऐसे ही।

0: मेरे अंदाज में तो नहीं, आपके अपने अंदाज में।
1: बिल्कुल, हम पूछते हैं उसके कहाँ से वो आया है, उसकी क्या मोटिवेशन था, किस वजह से उसने फोर्स ज्वाइन करी है। हमें जानना होता है कि वो ट्रेनिंग में कितना एक्सेल करेगा, उसको हमने किस लेवल तक लेके आना है, उसमें कितना मोटिवेशन हमें डालने की ज़रूरत है कि या सेल्फ मोटिवेटेड है। तो हम उसको साइकोलॉजिकली एनालाइज तो करते ही हैं अपने ट्रेनिंग्स को।
0: राइट देन, मैं थोड़ा सा यहाँ रुख मोड़ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। दोस्तों, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर, और मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, सेकंड इन कमांड हैं SSB के ललित शाह जी। कुछ आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जाने।
1: बिल्कुल,
0: स्मार्ट लुकिंग एक ऑफिसर मेरे सामने बैठे हैं, तो कुछ अपने फैमिली के बारे में बताना चाहेंगे, आपकी बेटर हाफ के बारे में।
1: बिल्कुल, मेरी वाइफ है, मेरी दो बेटियां हैं
0: जी,
1: और अरेंज मैरिज करी हम लोगों ने 2012 में।
0: पिथौरागढ़ में अरेंज भी होती हूँ।
1: बिल्कुल,
0: दिल्ली जैसे शहरों में आके लोग कहते हैं, पापा आई एम इन लव, बट यू वर ऑलरेडी इन लव विद द नेशन, आप तो कंट्री के साथ प्यार हो गया था। तो आपकी वाइफ जब आपसे मिली, आप लोग में क्या होता है, बहुत कंजर्वेटिव तरीके से शादी होती है, एक दूसरे से मिल सकते हैं शादी?
1: बिल्कुल, हमारे उसमें जो है पहले घर वाले बात करते हैं
0: जी,
1: तो उसके बाद एक एक परंपरा है पाता जाने की, जब बात हो जाती है तो पाता चले जाता है। तो जब पाता, लड़की का पाता आता है, मतलब पतरा जो आप वो कहिए, तो वो आता है, तो उसके बाद उसका मिलान किया जाता है, और वो मिल जाता है तो उसके बाद शादी फिक्स हो जाती है। तो इसी प्रकार से मेरी भी शादी हुई है।
0: हाँ, बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ यहाँ कि कितना आसान था आपको अपनी वाइफ को समझाना कि मैं सशस्त्र सीमा बल पर हूँ और भारत की एक प्रमुख फोर्स है, और तुम फौजी की वाइफ बनने वाली हो।
1: शुरुआत के दिनों में तो मुझे लगा कि थोड़ा सा जो है जानने की जरूरत है, पर मेरी वाइफ ने जितनी जल्दी इस चीज को समझा, जितना जल्दी मेरे प्रोफेशन को वो समझ गई, तो वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। हम मैं नक्सल क्षेत्र में भी रहा, अलग अलग जगह ड्यूटीज की मैंने, पर मेरे को मेरे परिवार का हमेशा बहुत सपोर्ट रहा, और मेरी वाइफ हमेशा मेरे इस काम के लिए मेरे साथ खड़ी रही।
0: अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी दो बच्चियाँ भी हैं, तो अभी जिस तरीके की पढ़ाई वो कर रही हैं, पढ़ाई में भी बहुत फर्क आ गया
1: जी,
0: मॉडर्न पढ़ाइयाँ और ये गैजेट्स आ गए हैं जो शायद आपके टाइम में उतने नहीं थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं। तो उनका रुझान कैसा है, वो क्या कहती हैं, आर्म्ड फोर्सेस में किसी का मन कर रहा है अभी जाने का? या
1: वो मुझे वर्दी में देख के बहुत खुश होती हैं, बहुत छोटी हैं, तो अभी तक हमने उनसे इस तरीके से वो उनकी अभिलाषा जानने का प्रयास किया नहीं है। बट मैंने जरूर देखा है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं फोर्स के, और जब मुझे वर्दी में देखती हैं या बाहर किसी को भी वर्दी में देखती हैं, तो वो प्राइड भी फील करती हैं और वो लाइक भी करती हैं। तो हो सकता है भविष्य में उनका बने रुझान और प्रबल हो जाए।
0: आपकी SSB में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है।
1: बिल्कुल,
0: आपकी फोर्स के अंदर बहुत सारी महिलाएं हैं जो यूनिफॉर्म पहन के रहते हैं, स्मार्ट कंट्रीब्यूटर्स।
1: बिल्कुल, हमारी फोर्स में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़ गया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं महिलाएं, और हमारी फोर्स भी जो है महिलाओं की संख्या बढ़ाने पे जो है लगातार प्रयास कर रही है और उसका लेवल बढ़ाने जा रही है। और मैंने देखा है कि महिलाएं भी बहुत जगहों पे, मैंने माउंटेनियरिंग की तो मैंने देखा कि महिलाएं भी बहुत सक्षम है हर चीज के लिए। वो वक्त की बात है, वो बहुत बढ़िया करती हैं और बहुत ही बेहतरीन उनका कार्य है, और कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे कर देती हैं। उनके सोचना समझना, उनका तरीका बहुत अलग है जी।
0: ये गाना आप ही की पसंद का मैं चला रहा
1: हूँ,
0: पूछने की जरूरत नहीं है कि आप किसके लिए गाना चला रहे हैं। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ललित शाह मौजूद हैं, सेकंड इन कमांड सशस्त्र सीमा बल।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मनीष जौली। अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे साथ सेकंड इन कमांड एसएसबी के ललित शाह जी से कुछ पूछना चाहते हैं या उनको अपना सल्यूट करना चाहते हैं और उनको अपना एक भाव एक मैसेज के द्वारा देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप की जो मशीन है इसका मैं अभी यहाँ पे शुभारंभ कर रहा हूँ। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, आप व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट मैसेज। नंबर है 9868107070, 9868107070। ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप अपना मैसेज यहाँ भेज सकते हैं। कुछ लोगों को मुंह जुबानी हमारे जो नंबर है ना वो याद है ललित शाह जी, तो एक जनाब हैं दिल्ली से ही, द्वारका से लिख रहे हैं, शंकर लोड उनका नाम है, और वो आपको ग्रीट करते हुए कह रहे हैं कि ऑफकोर्स एक रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी को भी, हमारे ब्रेव सोल्जर्स को भी, एसएसबी को भी हम देते हैं, आप कितने फेयरलेस और डेडिकेशन के साथ हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। इनका नाम है शंकर लोड,
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और एक और मैसेज अगर मैं यहाँ पढ़ना चाहूँ, वीरू बख्शी हमें मेरठ से सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत ही पेचीदा सवाल है, ये चंद्र कुमार चक्रवर्ती हैं देहरादून से लिख रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इनका जो मैसेज है कि क्या ये जानना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सेकंड इन कमांड आप अगर हैं तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हैं सीटीसी में।
1: अभी जो मैं सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेंटर में हूँ तो मेरा दायित्व ट्रेनिंग देना है, तो मैं एज ट्रेनर वहाँ पे पोस्टेड हूँ, तो ट्रेनर हूँ। उसके अलावा कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी रहते हैं, बेसिकली डीडीओ का कार्य रहता है सेकंड इन कमांड के पास, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं उसको, तो उसका कार्य पे अलाउंसेस, ये जितने भी वित्त रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें अपने हेड ऑफ द ऑफिस को असिस्ट करना रहता है।
0: ओके।
1: हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है उसको डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो करते हैं, तो उनको ट्रेनिंग को स्मूथली चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स की नियुक्ति होती है, तो उसमें से एक मैं भी हूँ सेकंड इन कमांड वहाँ पे
0: जी,
1: और ट्रेनिंग और कुछ डीडीओ वाला वर्क जो है मैं वहाँ पे कर रहा हूँ।
0: मैंने मशीन खोली है तो देखिए, आपने कहा था ना कि हर प्रांत से आपकी रिक्रूटमेंट्स होती है, तो देहरादून से अब राजस्थान से एक मैसेज आया नरेंद्र सुधार का, साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस

0: एसबी श्रीनगर से हूँ। सर मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और सुन के आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। आशा करता हूँ ये आपके परिचित होंगे शायद।
1: थैंक यू।
0: ऑलराइट, ललित सर को जय हिंद कह रहे हैं महेश सिंह जी। कहाँ से लिख रहे हैं ये मुझे अब बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन हम सबको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। 29th SI/DE चेतन लिख रहे हैं, आप पहचान गए होंगे
1: जी।
0: हमारी वीर सेना नायक को विजय कुमार तिरुचिरापल्ली से जय हिंद। विजय कुमार जी हैं वहां से लिख रहे हैं। एक और मैसेज आया है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि सर इज पोस्टेड एट आवर ट्रेनिंग सेंटर। यश गुप्ता लिख रहे हैं वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड हैविंग वास्ट एक्सपीरियंस। आजकल के यंगस्टर्स भी हमें कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना, बजाय कि हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें। क्यों,
1: धन्यवाद है यश का।
0: नागेश गढ़ाड़े हमें पोलैंड से सुन रहे हैं। अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि न्यूज और AIR के माध्यम से देश विदेश से हमें मैसेजेस आएंगे। चंद्रशेखर तिवारी हमें मैसेज भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तो बैचमेट हूँ ललित सर का। सही कह रहे हैं सर। ऑलराइट, यश गुप्ता का मैसेज हमने पढ़ा एंड ऑफ कोर्स चेतन का मैसेज हमने पढ़ लिया है। दिल से जय हिंद लिख रहे हैं बाबूलाल यादव
1: जी। जय हिंद बाबूलाल।
0: ऑलराइट, को मैसेज सब भेज रहे हैं। एक और इंटरनेशनल मैसेज यहाँ पे आया है एंड ऑफ कोर्स ये भी पोलैंड से ही आया है। एंड आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग आपने बताया कि ट्रेनिंग का दारोमदार जो होता है उसमें मेन वेमेन दोनों आपके बीच आते हैं यहाँ पे।
1: बिल्कुल।
0: कॉम्बैट की सिचुएशन की भी ट्रेनिंग आप देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आपने एंटी इंसर्जेंसी एंटी टेरर ट्रेनिंग भी आप लोग वहाँ पे देते हैं, तो कितना चैलेंजिंग होता है दोनों महिला और पुरुष को एक जैसी ट्रेनिंग देना, या आप कहीं सोचते हैं कि नहीं एक सॉफ्ट ट्रेनिंग रखते हैं हार्ड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ होता है?
1: ट्रेनिंग दोनों के लिए ही बराबर है, सेम शेड्यूल है दोनों का, और दोनों ही मैंने जो देखा है कि दोनों ही चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ढलने में कुछ समय लगता है, पर एक बार जैसे ही ढल जाते हैं तो वो रोल ऑन करते हैं और बहुत बेहतरीन करती हैं। महिलाओं को मैंने देखा है कि जो उनका एक्सीलेंट टाइम है या उनका वेरी गुड टाइम है या वो है, वो अपने बेंचमार्क्स को अचीव करती हैं।
0: ओके।
1: कुछ समय लगता है, हर किसी के लिए लगता है। अभी तो जो पुरुष भी आते हैं उनको भी समय लगता है।
0: ओके।
1: बट एक बार वो ट्रेनिंग में ढलते हैं तो जो उनकी 48 वीक्स की ट्रेनिंग है, जाते जाते सब लोग अपना बेंचमार्क अपने आप को क्वालिफाई कर लेते हैं उस ट्रेनिंग को। और इवन फील्ड्स में भी अभी हर जगह पे कोई भी हमारी ट्रांजिट रूट्स हैं या पेट्रोलिंग चल रही है या नाका चल रहा है, तो महिलाएं बराबर का योगदान दे रही
0: हैं। ओके
1: जी।
0: क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, लगभग 9 मिनट बचे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल भी पूछता रहूंगा और किसी का मैसेज छूट ना जाए मैं ऐसी कामना कर रहा हूँ। क्रांति चौधरी पूछ रहे हैं कि क्या पब्लिक भी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन आपके थ्रू SSB के थ्रू ले सकती है डिफेंस एकेडमी में?
1: अभी तक का तो जो हमने देखा है कि सिविलियंस को इस तरीके से हम लोगों ने इस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है।
0: बट सुझाव अच्छा,
1: बहुत अच्छा सुझाव है और मुझे लगता है कि इस सुझाव को मैं अभी जाऊंगा तो मैं अपने सीनियर्स के सामने रखूंगा और ये बहुत बेहतरीन सुझाव है और इस तरीके की ट्रेनिंग हमने देनी चाहिए।
0: कृष्ण कुमार साहू हैं, 52 वर्षीय हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वो आपको जय हिंद कह रहे हैं। शैलेंद्र वर्मा ने हमें मैसेज भेजा दिल्ली से, वो कह रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ कि फोर्स की ट्रेनिंग में और पुलिस की ट्रेनिंग में, जो आम पुलिस की ट्रेनिंग होती है उसमें आप लोगों में, आप वो जानना चाह रहे हैं कि कोई फर्क होता है?
1: कुछ जो वेपन्स के हैं या कुछ उसके अलावा कुछ टैक्टिस है जो पुलिस की टैक्टिस है, जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना है उनके लिए कुरिकुलम थोड़ा अलग है, और हमारा जो पाठ्यक्रम है हमको ANO नक्सल ऑपरेशंस भी करने हैं, उसके अलावा उन्हें GNK उस एरिया स्पेसिफिक ट्रेनिंग पे भी हम लोग अपने बेसिक ट्रेनिंग में जोड़ देते हैं जो शायद पुलिस में रह जाता होगा, वो स्टेट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं।
0: ऑलराइट, TPT सेल FHQ से जय हिंद बोल रहे हैं कि हमारा ये सेल आपका एक प्रोग्राम सुन रहा है।
1: जी मैं इस सेल में रह चुका हूँ यहाँ पे।
0: ओके
1: जी।
0: सनातन कुमार नई दिल्ली से लिख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा ही SSB में है और आज मैं अपने ऑफिसर का काम छोड़कर आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। नहीं भाई, ऑफिस का काम मत छोड़िए, प्रोग्राम करते रहिए और सुनते रहिए, यही तो टेक्नोलॉजी का फायदा है।
1: बिल्कुल।
0: दिनेश कुमार भंडारी तुलसीपुर नेपाल से हमें सुन रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लाइव सुन पा रहे हैं और सुनकर उनको आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। रोहन दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ मैसेजेस आ रहे हैं एंड ऑफ कोर्स धर्म जी हमारे

0: हैं वो एक प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं धर्म भाटिया रोहतक से। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपसे कि अब आगे के जो जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी टेक्नोलॉजी एक डोमिनेट कर रही है वॉरफेयर में। मैं ये नहीं कह रहा कि एसएसपी सिर्फ वॉरफेयर ही करेगी, लेकिन सर्वेलेंस वो आपने बताया कि बहुत सारे मॉडर्न गैजेट्स आ गए हैं आपके बीच में, तो उसमें भी आप लोग फ्यूचर विजन रख के कुछ विस्तार करने की सोचते हैं?
1: बिल्कुल, जितनी मेरी लिमिटेड जानकारी है उसके अनुसार जो है स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट इस तरीके से भारत सरकार जो है इम्प्लीमेंट करने जा रही है। और जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट होगा उसमें जो गैजेट्स हैं, जो नए गैजेट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा हमारी बॉर्डर गार्डिंग यूनिट्स। और जो हम अपने पोरस बॉर्डर को जो सर्वलांस करते थे मैंड होके, उसको हम टेक्नोलॉजी की मदद से भी उसको सर्वलांस करेंगे और उस पे आने जाने वाले मूवमेंट पे हम लोग नजर रख रहे हैं।
0: तो यानी मैनुअल और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि कम्प्लीटली लोगों को लगता है कि यार आपने कम्प्लीटली मशीन पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया, एआई का जमाना आ गया, आप लोग एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं एसएसबी में?
1: कुछ जगहों पे अभी उस रफ्तार से तो नहीं, बट ये है कि एआई के अपने भी कौन से हैं, उसमें भी बहुत सारे गैप्स हैं, तो उसको देखते हुए अभी तो बहुत कम स्तर पे ही।
0: तो ललित शाह जी, एक सवाल आ रहा है मन में, ठीक है आप इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर पे स्थित हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि इनके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं वो भी आपकी मूवमेंट पे, आपकी तकनीक पे नज़र तो ज़रूर रखते होंगे।
1: बिल्कुल नज़र रखते होंगे और उन पे हम भी नज़र रखते हैं, नज़र दोनों ही तरफ से रखी जा रही है। और मुझे यकीन है कि हमारी भी एजेंसीज, हम लोग खुद जो है उन पे नज़र रखते हैं और उनके किसी भी मूवमेंट पे और किसी भी पैतरे पे हमारी पूरी निगरानी बनी हुई है।
0: हमारे प्रोग्राम के जरिए आपने उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया कि
1: हम भी तैयार हैं,
0: चौकन्ने हैं। सी टी सी श्रीनगर से ही सोनू चौधरी हमें मैसेज लिख रहे हैं, साथ ही साथ धन सिंह का एक मैसेज आया है, रोशनी रावत हमें मैसेज ले रहे लिख रही हैं, ग्राम व पोस्ट भमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव, और चंडीगढ़ में भी उनके जानकार हैं, वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो आपको पूरे देश में और काफी जगह ये प्रोग्राम सुना जा रहा है,
1: सब आपका धन्यवाद है, आकाशवाणी का धन्यवाद।
0: महिपाल सिंह हैं, ट्रेनिंग आप ही के जहाँ आप स्थित हैं श्रीनगर, वहीं से हमें मैसेज लिख रहे हैं। एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया बाबूलाल यादव का, आसमान में हजारों सितारों से बेहतर हमारे कंधों पर चमकते सितारे हैं जो देश की रक्षा के लिए रात दिन जागते हैं, मेरी तरफ से सर को सुनाओ अच्छा लगेगा,
1: धन्यवाद।
0: ऑलराइट, 29th एसआईडी से एक और मैसेज आया, जयपुर राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना नाम जरूर लिखें। अमरावती से नीता लिख रही हैं, सलाम कर रही हैं और वो कह रही हैं हम सबकी तरफ से, हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि आप जैसे कमांडर आगे मिलते रहें, भारत माता की रक्षा करते रहें। समय बीतता जा रहा है क्योंकि अब बहुत सारे मैसेजेस मैं नहीं ले पाऊंगा, नाम मैंने लगभग सबके ले लिए हैं, और आप अगर हमारे युवाओं को जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, सेकेंड इन कमांड ललित शाह सशस्त्र सीमा बल, आप अपनी तरफ से और अपनी फोर्स की तरफ से भारतवासियों को अगर मैं कहूं कि एक मैसेज देना चाहें या मोटिवेट करना चाहें युवाओं को, क्या कहेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगा कि फिट रहें, फिटनेस पे ध्यान दें, मेंटली फिजिकली फिट रहें, देशभक्ति अपने अंदर लाएं और सत्यमेव जयते हैं जो ये एक वाक्य है, इसका हमेशा इसको अपने जहन में रखें, सत्य जीतता है और सत्य की तरफ ही हमें रहना है। जय।
0: दोस्तों, एक बहुत ही खास एक्सपीरियंस आज रहा क्योंकि सशस्त्र सीमा बल के बारे में विस्तार से हमें जानकारी मिली उनके सेकंड इन कमांड ललित शाह जी की तरफ से। बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जिनके नाम मैं ले चुका हूँ, कमांडो प्रवीण उनमें से एक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें मैसेज भेजा। साथ ही साथ गीता विज हमें सुन रही हैं इंग्लैंड से, तो वो सुन के आपको वहाँ से शुभकामनाएं भेज रही हैं आपको और आपकी फोर्स को। शिरडी से भी हमारे पास मैसेज आया है महाराष्ट्र से, और यही तो है ना जो भारत को जोड़ता है, हमारा ये महान देश। लेकिन चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आकाशवाणी में भी एक बहुत ही प्रमुख रोल हम लोग प्ले करते हैं, तो ये प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता ललित शाह जी अगर आप अपना संबंध आकाशवाणी से कितना पुराना है और क्या खास है वो अपनी जुबानी बता के जाएं।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी से संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना मैं हो चुका हूँ।
0: अच्छा।

0: जब छोटे थे पहली बार रेडियो सुना तो आकाशवाणी जो है उसको सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था। और आज भी हम जो है आज यहाँ आके भी ऐसा लगा कि मैं कोई नई जगह नहीं, मैं वहाँ जा रहा हूँ जिसको मैं बचपन से सुनता आया हूँ।
1: राइट देन, तो आप ही की पसंद का एक गाना है, उसके साथ इस प्रोग्राम का समापन करते हैं। किशोर दा के आप बहुत बड़े फैन हैं, आपने गा के नहीं सुनाया, कुछ ट्राई कर सकते हैं?
0: नहीं, बस यही गाना मैं गा लेता हूँ जब भी कहीं पार्टी और कुछ होता है।
1: मौका अच्छा है आकाशवाणी पर माइक पर गुनगुना सकते हैं
0: फिर कभी, पर ये मेरा पसंदीदा गाना है।
1: राइट देन, संदेश टू सोल्जर्स में आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो आप जुड़े आकाशवाणी के साथ। आप हैं तो हम हैं, 90 साल 9 दशक आकाशवाणी भारतवासियों के साथ रहा है, भारत के साथ रहा है, आप भी हमारे साथ रहें।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 5 बज रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है मेरा सपना उन्नत भारत। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त अलका सिंह। श्रोताओं, आज हम बात करने वाले हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अटल व्यय अभ्योदय योजना और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के विषय में। पहले बात करते हैं अटल व्यय अभ्योदय योजना की। यह सामाजिक न्याय और श्रोताओं, यह योजना आधिकारिक तौर पर अप्रैल वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही एक प्रमुख योजना है। श्रोताओं, इस योजना को पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPSRC के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में संशोधित करके अटल व्यय अभ्योदय योजना अर्थात AVYAY कर दिया गया। श्रोताओं, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीब और बेसहारा बुजुर्गों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। अब बात करते हैं अटल व्यय अभ्योदय योजना के विशेषताओं की। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम है, अर्थात इसके तहत वृद्धाश्रमों या ओल्ड एज होम्स को चलाने और उनके रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह एक कार्य योजना है श्रोताओं, इसके माध्यम से राज्य सरकारों को बुजुर्गों से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। श्रोताओं, इस योजना के अंतर्गत मोबाइल चिकित्सा भी है, यानी जरूरतमंद और असहाय बुजुर्गों को उनके घर या स्थान तक चिकित्सा सेवाएं पहुंचाने का कार्य भी किया जाता है। श्रोताओं, अगर बात की जाए अटल व्यय अभ्योदय योजना के लाभों की, तो इस योजना के विजन और मिशन को पूरा करने के लिए सरकार इन लक्ष्यों पर काम कर रही है। जैसे बुजुर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण प्रदान करना, आश्रय देना, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना। श्रोताओं, इस योजना का एक हेल्पलाइन नंबर भी है, जिसे एल्डर लाइन कहते हैं। यह एक टोल फ्री नंबर है जो है 14567। ये भावनात्मक समर्थन सरकारी लाभों तक पहुंचाने के बारे में मार्गदर्शन और दुर्व्यवहार

और उपेक्षा से वरिष्ठ नागरिकों को बचाने या उनकी रक्षा के लिए तत्काल क्षेत्रीय हस्तक्षेप प्रदान करता है। श्रोताओं, अब आपको बता देते हैं आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं और आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। आश्रय और चिकित्सा के लिए प्रथम लक्ष्य कमजोर, निर्धन या गरीबी रेखा से नीचे के वरिष्ठ नागरिक हैं। साथ ही वे लोग भी हैं जो मनोभ्रंश या अल्जाइमर से पीड़ित हैं। श्रोताओं, इस योजना के आवेदन की प्रक्रिया आपको बता देते हैं। यदि आप 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं और आपको सरकारी शिविरों में सहायता चाहिए, तो आप अपने जिला समाज कल्याण विभाग में जाएं और वहां अटल अभ्योदय योजना का फॉर्म भरकर जमा कर दें। साथ ही आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा ई अनुदान पोर्टल के होम पेज पर। वहां न्यू रजिस्ट्रेशन के माध्यम से संस्था का पंजीकरण करें अटल अभ्योदय योजना के होम पेज को चुनकर, और फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज के साथ अपलोड कर दें। अब आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए। तो आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र यदि आप विकलांगता या उससे उम्र संबंधी समस्याओं के लिए कोई उपकरण चाहते हैं, तो पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक की पासबुक, और इस तरह आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। श्रोताओं, अब बात कर लेते हैं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के विषय में। यह भारत सरकार द्वारा समर्थित एक अत्यंत लोकप्रिय और सुरक्षित सेवानिवृत्ति योजना है। इसमें 8.2% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलता है और भुगतान त्रैमासिक हर 3 महीने में किया जाता है। इसके में न्यूनतम 1,000 रुपए और अधिकतम 30 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। श्रोताओं, आपको बता देते हैं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के उद्देश्यों के विषय में। इस योजना से 8.2% वार्षिक ब्याज की गणना होती है और भुगतान हर तिमाही 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को किया जाता है। श्रोताओं, यह योजना 5 साल की होती है, जिसे मैच्योरिटी के बाद 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। श्रोताओं, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत इस योजना में 1,50,000 तक की कटौती का लाभ मिलता है। अब आपको बता देते हैं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की पात्रता के विषय में। श्रोताओं, इसके लिए निवेशक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 55 से 60 वर्ष के बीच के सेवानिवृत्त कर्मचारियों जिन्होंने VRS या सुपर एंचुएशन लिया हो, वे भी पात्र हैं, बशर्ते वे सेवानिवृत्ति के 3 महीने के भीतर खाता खोलें। सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के लिए भी इस योजना की न्यूनतम सीमा 50 वर्ष है। श्रोताओं, आपको बता देते हैं कि आप वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने नजदीकी डाकघर या किसी भी अधिकृत सरकारी या निजी बैंक में जाकर अपना SCSS खाता खुलवा सकते हैं और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का लाभ ले सकते हैं। और श्रोताओं, जहां हम अपने बुजुर्गों को बोझ समझने लगे हैं और उनसे दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में सरकार उन्हें अपना रही है और हर संभव सहायता प्रदान कर रही है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारी नींव हैं। उनके आशीर्वाद से हम वह भी पा सकते हैं जो हमारा नहीं है।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अपनी दोस्त अलका सिंह को संपन्न करने की दीजिए इजाजत। श्रोताओं नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे मेरा सपना उन्नत भारत, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज़ पर। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना। भूपेंद्र कुमार पुत्र ऋषि पाल सिंह दिनांक 28 मार्च 2024 से अपने निवास स्थान ग्राम झाटजट थाना सोहरा जिला बिजनौर से लापता है। इनकी आयु करीब 25 वर्ष है। इनकी आंख नाक कान औसत है, रंग गेहुआ, लंबाई 5 फीट 5 इंच है। इन्होंने काले रंग की जीन्स पैंट और सफेद रंग की शर्ट पहनी है और पैरों में स्लीपर चप्पल पहने हुए हैं। इनके विषय में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया दूरभाष संख्या 9454403145 व 9927685992 पर सूचना देने का कष्ट करें। सूचना समाप्त हुई। मनीषा पुत्री नरेश कुमार दिनांक 9 मई 2026 से अपने निवास स्थान ग्राम सुनगढ़ थाना शिवाला कला जिला बिजनौर से लापता है। इनकी आयु लगभग 19 वर्ष है। इनके आंख नाक कान औसत हैं, रंग गेहुआ और लंबाई 4 फीट 4 इंच है। इन्होंने लाल रंग की टी शर्ट और नीले रंग का लोवर पहना है और पैरों में सैंडल पहने हैं। इनके विषय में कोई भी सूचना मिलने पर दूरभाष संख्या 9454403136 व 7830849052 पर सूचना देने का कष्ट करें। सूचना समाप्त हुई। इसरार हुसैन पुत्र अबरार हुसैन दिनांक 6 मई 2026 से अपने निवास स्थान ग्राम गंगोड़ा जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर से लापता है। इनकी आयु करीब 32 वर्ष है। इनका रंग सांवला, चेहरा लंबा, नाक कान औसत है, लंबाई 5 फीट 4 इंच है। इन्होंने सफेद चेक की शर्ट व नीले रंग की पैंट पहनी है और पैरों में हरे रंग के कपड़े के जूते पहने हुए हैं। इनके विषय में कोई भी सूचना मिलने पर दूरभाष संख्या 9971331611 व 9454403129 पर सूचना देने का कष्ट करें। गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात 9:30 पर सुनिएगा कंट्री वाइड और इनसाइट्स। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। आज रात 10 बजे सुनिएगा रूपक, जिसमें जिसके ख्वाबों का आबाद है नजीबाबाद। आज रात 10:30 पर सुनेंगे आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सुगम संगीत में सुनेंगे आप नुसरत अली और साथियों की गायी कव्वाली आज शाम 7:32 पर। कार्यक्रम विविधा में सुनिएगा डॉक्टर गजेंद्र सिंह की वार्ता, विषय रहेगा सौर ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम। कृषि जगत में सुनेंगे हमारे किसान भाई शाम 6:05 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे विशेष मासिक कार्यक्रम पगडंडी, स्वस्थ किसान समृद्ध कृषि, आलेख व संकलन हिमांशु रंजन का होगा और प्रस्तुतकर्ता होंगे अंकित सैनी। और अब से कुछ ही देर में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युववाणी 5:15 पर, जिसमें आज के क्रम होंगे बुझो तो जाने, कुछ खास है आज, नॉन फिल्मी चार्ट, लव स्टोरीज, गुफ्तगु बस यूं ही, साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का भी। और अब आपको लिए चलते हैं कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की ओर। कल शाम 7:32 पर सुनेंगे आप सुगम संगीत, जिसमें कल आपको सुनवाएंगे विविध कलाकारों के गाए नाथ। कानूनी सलाह में सुनिएगा एडवोकेट अतर सिंह से एड्स के नौटियाल की बातचीत, जिसका विषय रहेगा बाल श्रम को रोकने संबंधी कानून। समय रहेगा कल शाम 6:45 पर। कृषि जगत सुनेंगे आप कल शाम 6:05 पर, जिसमें कल आप सुनेंगे किसान भाइयों की खेती एवं पशुपालन से संबंधित पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम
चिट्ठी पत्री और युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युववाणी कल शाम 5:15 पर, जिसमें कल आकर्षण का केंद्र होंगे बुझो तो जाने कुछ खास है आज ये शाम गजलों के नाम, लव स्टोरीज, यंग अचीवर्स और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का भी। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 5:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे युवा साथियों का मनपसंद दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: विश यू अ वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। और आपके साथ हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त उज्मा,
1: और उज्मा के साथ हूँ मैं आपकी अपनी दोस्त रुमान परवीन। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हमारा ही इंतजार कर रहे होंगे।
0: अरे रुमान, इंतजार करना तो बनता है भाई, क्योंकि आज है थर्सडे और थर्सडे को रहता है हमारे एक स्पेशल सेगमेंट नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर।
1: बिल्कुल, जिसमें आप सुनेंगे वो गाने जो खुद में ही मुकम्मल हैं, वो किसी मूवी के नहीं है, मगर हाँ चंद लम्हों में एक पूरी कहानी बयां जरूर कर देते हैं।
0: और ऐसी एक और कहानी सुनेंगे हम सेगमेंट कहानी के उस पार में, और साथ ही हम आपको सुनवाएंगे एक गुफ्तगू अपने एक प्यारे से मेहमान की। लेकिन उससे पहले आपको देना होगा हमारे एक सवाल का सही जवाब।
1: बिल्कुल उस्मान, लव स्टोरी सेगमेंट के अंदर तो मजा आ ही जाने वाला है हमारे
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों को। और आज सेगमेंट बूझो तो जाने के अंदर गर्द हमारा आपसे सवाल रहेगा कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है।
0: और जिसका सही जवाब आपको देना है हमारे FB पेज आकाशवाणी निर्विवाद के कमेंट सेक्शन में जाकर। और जब तक आप हमें भेजते हैं अपना सही जवाब, तब तक हम शुरू करते हैं अपना सेगमेंट नॉन फिल्म में चार्ट बस्टर और सुनवाते हैं सेगमेंट का ये पहला और प्यारा सा गीत।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।

0: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हमारी जनगणना हमारा विकास।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
9: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स, और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
11: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
12: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
11: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
13: और डोज में क्या है?
12: डोज में है मजा।
11: जी हाँ, मजा आ गया।
13: अरे भाई साहब, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आ रहे हो।
14: अब क्या ही बताऊं भाई साहब आपको, रहने दो।
13: अरे भाई, परेशानी आपके चेहरे से झलक रही है, अब परेशानी बताएंगे नहीं तो उसका हल कैसे निकलेगा।
14: भाई साहब, ये व्हाट्सएप भी ना हमेशा इंसान को आगे पहुंचा देता है।
13: हैं? लेकिन वो कैसे?
14: अब मुझे देख लो, तो स्टेशन पीछे उतरना था लेकिन मैं आगे आ गया।
11: जी हाँ, मजा आ गया।
13: एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रोग्राम में, और अब हम बात करेंगे, हमारे डेली सेगमेंट कुछ खास है आज में।
14: अब दोस्तों, प्रोग्राम है युवाणी, तो कुछ खास बातें करना तो बनता ही है ना। उत्मा, जरा हमारे दोस्तों को ये तो बताओ, आखिर आज हम किस खास विषय पर बात करने वाले हैं?
13: रुमान, आज हम बात करेंगे उस विषय पर जो है आज के यूथ की सबसे बड़ी ताकत। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही समझा है आपने और बिल्कुल सही सुना है आपने। आज हम बात करेंगे यूथ की सबसे बड़ी पावर, सेल्फ बिलीफ के बारे में।
14: वैसे दोस्तों, यूथ की सबसे बड़ी पावर सच में सेल्फ बिलीफ यानी खुद पर भरोसा ही है। जब एक युवा को अपनी क्षमता पर भरोसा होता है तो वो हर मुश्किल को आसानी से फेस कर सकता है।
13: बिल्कुल रुमान, तुम्हें पता है रुमान, सेल्फ बिलीव क्यों सबसे बड़ी पावर है?
14: क्यों उसमें?
13: देखो, रिस्क लेने का डर खत्म होता है, खुद पर भरोसा हो तो नए जो हमारी नई आइडियाज पर जो है हम काम कर सकते हैं आसानी, उसमें आसानी हो जाती है, और फेलियर से लड़ने की ताकत मिलती है। हार मिलने पर भी जो हमारा सेल्फ बिलीव होता है ना, वो खत्म नहीं होता, वो उसे गिरने ही नहीं देता, बल्कि दोबारा खड़े होने का जो है ना हौसला देता है।
14: बिल्कुल, उसमें बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। और उसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है?
13: बताओ क्या होती है।
14: वो जो लोगों की बातें होती है ना, उनका कोई असर नहीं होता अगर हमारे पास खुद पर भरोसा होता है तो। वैसे भी दोस्तों, जब आपको पता होता है कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या कर रहे हैं, तो दूसरों की जो निगेटिविटी होती है ना, वो आपको रोक नहीं सकती है।
13: वैसे रुमान, इतिहास गवाह है भाई, हर बदलाव या फिर हर इन्वेंशन यूथ की इसी सेल्फ बिलीव की वजह से हुआ है। मानती हो कि नहीं?
14: हाँ उसमें मानना पड़ेगा दोस्तों। आप इस पावर को और

0: बढ़ा सकते हैं।
1: हाँ, जैसे छोटी छोटी कामयाबी को ना अपनी पावर बना सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, उसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, और छोटे छोटे जो हमारे टारगेट्स होते हैं उन्हें हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर
1: बिल्कुल
0: सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देता है, और तुम्हें पता उज्मा, हम अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस भी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, ये सबसे जरूरी बात पता है क्या होती है?
1: सबसे जरूरी बात होती है पॉजिटिव रहे और अपने ऊपर भरोसा रखे।
0: बिल्कुल, जब आपको अपने ऊपर भरोसा होता है तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती।
1: बिल्कुल, तो चलिए अब आपके भरोसे को बरकरार रखते हुए आपको ले चलते हैं प्रोग्राम में आगे, और सुनवाते हैं नॉन फिल्मी चार्टबस्टर का ये एक और खूबसूरत सा गीत।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
3: हो जाओगे एहसास कर लोट कोट,
2: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
4: और डोज में क्या है?
3: डोज में है मजा।
2: जी हाँ, मजा आ गया।
4: सुने ना
5: दोस्तों, अब सेगमेंट लव स्टोरीज का वक्त हो चला है, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे आज लव स्टोरी उस मोड़ पर का पार्ट 4।
6: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे, ये धड़कने लगे, है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे, हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
5: दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे आरिफ और माहिरा ने दुनिया की हर दीवार को पीछे छोड़कर एक दूसरे का हाथ थाम लिया, मोहब्बत जीत गई थी। लेकिन अब जिंदगी की असली किताब खुलने वाली थी। नया शहर, अनजान गलियां, अजनबी चेहरे और एक छोटा सा किराए का कमरा, यही उनकी नई दुनिया थी, जिस आरिफ ने कभी अपनी जिंदगी में तंगी नहीं देखी थी। वो अब रोज सुबह नौकरी की तलाश में निकलता और शाम को थका हुआ लौटता, मगर दरवाजा खोलते ही माहिरा की मुस्कान उसे फिर से हिम्मत दे देती। एक शाम उसने देखा, माहिरा अपनी शादी के गहने निकाल रही थी, वो गहने जो हर लड़की अपने सबसे करीबी खजाने की तरह संभाल कर रखती है। ये क्या कर रही हो माहिरा? आरिफ ने बड़ी हैरानी से पूछा। माहिरा मुस्कुराई और बोली, सोना तो बस धातु होता है आरिफ, मेरे असली गहने तो मेरे सपने हैं। उस दिन उन गहनों को बेचकर उन्होंने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। दिन में मेहनत, रात में योजनाएं, कभी ऑर्डर मिलता, कभी नहीं मिलता, कभी जेब में पैसे होते, कभी नहीं होते, लेकिन एक चीज हमेशा रहती थी, उम्मीद। बरसात की रातों में छत टपकती थी और दोनों बाल्टियां रखकर हंसते थे। बिजली चली जाती थी तो मोमबत्ती की रोशनी में भविष्य के सपने बुनते थे दोनों। और यही तो मोहब्बत होती है दोस्तों, जहाँ कमी में भी खुशी मिल जाती है। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। माहिरा की समझदारी और उसकी बात करने का अंदाज ग्राहकों का दिल जीत लेता। अब वो शहर शहर जाकर लोगों से मिलती, नए बाजार तलाशती, नए अवसर ढूंढती और कारोबार बढ़ने लगा। पहली बार उनके छोटे से घर में राहत की सांस आई। उन्हें लगा कि शायद अब संघर्ष का मौसम खत्म हो रहा है। लेकिन अक्सर जब जिंदगी सबसे ज्यादा मुस्कुरा रही होती है, उसी वक्त कहीं कोई तूफान जन्म ले रहा होता है, और वो तूफान अब उनके दरवाजे तक आ पहुंच चुका था। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी, आप सुनना ना भूलिए अगला पार्ट।

0: दोस्तों, प्रोग्राम में वक्त हो चला है सेगमेंट गुफ्तगू बस यूं ही में, जिसमें आज आप सुनेंगे उज्मा की बातचीत आसिफा से।
1: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी अपनी दोस्त उज्मा, और अब आप सुनेंगे सेगमेंट गुफ्तगू बस यूं ही। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हमारे साथ होते हैं हमारे एक प्यारे से साथी, तो आज भी हमारी एक प्यारी सी साथी हमारे साथ हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। तो प्यारी सी दोस्त, क्या नाम है आपका।
2: धन्यवाद उस्मा, मेरा नाम आसिफा है।
1: आसिफा। आसिफा नाम के साथ साथ आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। क्या करती हैं आप।
2: जी, मैं टीचिंग भी करती हूँ और साथ में पढ़ाई भी करती हूँ। मुझे ये लगा कि मुझे अपनी टीचिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करना चाहिए।
1: तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आप एक स्टूडेंट भी हैं और एक टीचर भी हैं,
2: जी
1: मतलब आप दोनों लाइफ को जी रही हैं एक साथ,
2: जी
1: एक
2: जी
1: ही फ्रेम में
2: बिल्कुल
1: दो लाइफ।
2: जी जी जी
1: तो कैसा लगता है आपको दो लाइफ एक ही फ्रेम में जीकर।
2: बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलता है, और सबसे अच्छी बात ये कि बच्चे दिल से प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट
1: बिल्कुल
2: करते हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है,
1: बिल्कुल
2: बहुत अच्छा
1: बिल्कुल
2: फील होता है। और इसी के साथ साथ बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, वो चीज़ें जो मैं अपनी पढ़ाई के साथ नहीं सीख पाई हूँ, वो मुझे अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस से सीखने को मिली हैं।
1: बिल्कुल। तो आसिफा, आप बता रही हैं कि आप एक स्टूडेंट भी हैं, आप एक टीचर भी हैं,
2: जी
1: और
2: जी
1: ये सुन के भी मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है।
2: जी बिल्कुल करिए आप सब।
1: सवाल ये था आसिफा कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो ये सपना आपका आपकी पढ़ाई के साथ साथ बना या फिर बचपन से ही था।
2: नहीं, ये मेरा सपना बचपन से ही था। जब मैं थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में थी, मैंने तभी सोचा था कि मुझे बड़े होकर टीचर बनना है।
1: आसिफा, पता है जब बच्चे थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में होते हैं ना, उन्हें चॉकलेट और लंच बॉक्स और होमवर्क पूरा करने से ही फुर्सत नहीं होती, और आपका सपना था कि आप एक टीचर बने।
2: जी,
1: बहुत
2: मैंने
1: खूब।
2: तभी सोचा था कि मुझे बड़े होकर टीचर ही बनना है।
1: अच्छा, एक चीज़ और, कि जब आपका पहला दिन था स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाने के लिए,
2: जी जी
1: तो कैसा एक्सपीरियंस रहा, पहला दिन कैसा था आपका।
2: एक्सपीरियंस अच्छा था। उस टाइम मैं बच्चों को नहीं जानती थी और ना ही बच्चे मुझे जानते थे, लेकिन अच्छी बात ये है कि फर्स्ट डे में ही मेरी उनसे बहुत अच्छी जान पहचान हो गई थी। और आप ये देखिए कि वो बच्चे मुझसे ही डांट खाते हैं और मुझे ही अपने फेवरेट टीचर बोलते हैं।
1: आसिफा, आपको बच्चों की सबसे ज्यादा अच्छी बात कौन सी लगती है, मतलब उनकी कौन सी आदत सबसे ज्यादा पसंद है।
2: मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है

0: कि जो उनको समझाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर घर पर मम्मी उनको कुछ बोलती है तो वो उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लेते हैं, लेकिन अगर टीचर उनसे कुछ बोलता है तो उनको लगता है जो टीचर ने बोला है वही
1: वही
0: ठीक
1: वही
0: है, उनको
1: बात
0: लगता
1: सही
0: है जो
1: है।
0: मम्मी ने बोला है वो गलत है, बट जो टीचर बोल रहा है वो करेक्ट है. तो वो टीचर की बात को ज़्यादा सीरियस लेते हैं और बहुत अच्छे से मेरी बात को समझते हैं. मैं क्लास में जो भी पढ़ाती हूँ बहुत अच्छे से सुनते हैं और उसका रिजल्ट भी मुझे मिलता है.
1: मतलब एक कहावत मैंने सुनी थी कि जो गुरु होता है उसका दर्जा माँ बाप से बढ़ के होता है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि वो बात बिल्कुल सच है।
0: जी
1: बच्चे
0: जी
1: माँ बाप की बात को ना मानकर आपकी बात पे ज्यादा फोकस करते हैं, उसे ज्यादा सही मानते हैं। अच्छा, ऐसा कोई सवाल जो आज भी याद हो और बच्चों ने आपसे किया और आपको सोच के हंसी आ जाती हो?
0: ऐसे तो वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं. बच्चों का सवाल ये भी होता है क्योंकि हमारे स्कूल की साइड बंदर बहुत होते हैं, तो कभी कभी बंदर क्लास में भी आ जाते हैं.
1: अच्छा
0: एक बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि मैम, अगर हमारी क्लास में बंदर आ जाए तो क्या आप हमें छोड़कर बाहर चली जाएंगी, क्या आप हमें अकेला छोड़ देंगी. एक बच्चे ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया था, मैम क्या आपकी मम्मी आपकी पिटाई करती है. जी
1: अच्छा बच्चे
0: जी
1: ये सब भी पूछते हैं?
0: जी
1: आसिफा, मैं तो सोच रही हूँ, चलो बच्चों ने सवाल किया वो तो सही है, इनके जवाब कैसे बनते होंगे? क्या वाकई सारे सवालों को उनके जवाब दे दिए जाते हैं?
0: जी बिल्कुल, हैंड टू हैंड दे दिए जाते हैं जवाब, क्योंकि बच्चे की एक्सपेक्टेशन होती है कि
1: बिल्कुल
0: अगर हम सवाल करते हैं तो हमें उसका हैंड टू हैंड जवाब मिले. और टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के हर सवाल का जवाब दिया जाए.
1: अच्छा आसिफा, एक सवाल और। लोग कहते हैं कि जो टीचर्स की लाइफ है, उनका जो प्रोफेशन है, वो बहुत आसान है। क्या वाकई ये बात ठीक है?
0: उज़्मा, टीचर की जो लाइफ होती है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है. ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टीचर के कंधों पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
1: बिल्कुल
0: जिसे टीचर को हर हाल में पूरा करना होता है और ऑन टाइम पूरा करना होता है. बच्चों को एक्टिविटी करानी होती है, लेसन प्लान बनाने होते हैं, क्लास में उनको समझाना तो पड़ता ही है.
1: बिल्कुल
0: और दूसरी बात ये, हमें ध्यान रखना होता है कि बच्चों का मानसिक विकास कितना हो रहा है, बच्चों का शारीरिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है.
1: अच्छा आसिफा, मैं एक चीज बहुत देर से नोट कर रही हूँ, आप हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, इसका कोई राज?
0: नहीं, ये मैंने एक मेंटेलिटी बना रखी है कि अगर इंसान हमेशा मुस्कुराता रहे तो उसके चारों तरफ एक पॉजिटिविटी का माहौल रहता है. तो इसलिए मुझे लगता है कि हमेशा मुस्कुराना एक अच्छी हैबिट होती है और सबको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए.
1: अब तो मुझे लग रहा है वाकई बच्चे आपके फैन हो जाते होंगे, आपको पहले ही देख के कि अरे ये टीचर तो बहुत अच्छी है, डांटेंगी भी नहीं हमें। अच्छा, आप बच्चों को डांटती भी हैं?
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से डांटती हूँ. जब जब मुझे लगता है कि अब इनको डांटना जरूरी है और ये बिना डांट खाए नहीं पढ़ेंगे तो मैं जरूर डांटती हूँ उनको.
1: अच्छा आसिफा, एक सवाल और, आजकल के बच्चों में और हमारे टाइम जब हम छोटे स्टूडेंट थे उस
0: जी
1: टाइम के
0: जी
1: बच्चों में क्या फर्क नजर आता है, क्या लगता है?
0: मुझे डिफरेंस ये नजर आता है कि जो जब हम पढ़ते थे, जब हम लोग पढ़ते थे

0: था तो वो यही बोलते थे कि पक्का गलती, लेकिन जो आजकल के पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं टीचर की गलती है, तो ये एक डिफरेंस मुझे देखने को मिलता है।
1: एक चीज़ और, अगर आपको अपने स्टूडेंट को 3 सलाह देनी हो, कोई 3 एडवाइस देनी हो, तो वो क्या होंगी?
0: मेरी सबसे पहले एडवाइस तो यही होगी कि कुछ बच्चों की ये मेंटेलिटी होती है कि बस पढ़ाई स्कूल में ही होती है और घर जाकर हमें कुछ नहीं करना, तो ये उनकी एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, एक ब्लंडर मिस्टेक है कि बच्चों को स्कूल के साथ साथ घर पर भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए, अपने बैग को खोलकर देखना चाहिए कि आज हमें टीचर ने किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया है।
1: और दूसरी सलाह क्या होगी?
0: दूसरी सलाह ये होगी कि बच्चों को अपना एम बचपन से ही डिसाइड करना चाहिए कि हमें बड़े होकर ये बनना है।
1: जैसे आपने डिसाइड किया था कि आपको
0: जी जी
1: टीचर ही बनना
0: बिल्कुल,
1: है।
0: जैसा मैंने डिसाइड किया है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी वैसे ही डिसाइड करें कि
1: बिल्कुल।
0: उनको बड़े होकर क्या बनना है।
1: और तीसरी एडवाइस क्या होगी?
0: तीसरी एडवाइस मेरी ये होगी कि मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो सोच समझ कर करे।
1: अच्छा, हमारी बातचीत तो बहुत देर से चल रही है, बहुत सीरियस चीज़ों पे भी हम बात कर चुके हैं,
0: जी
1: तो थोड़ा सा कुछ इसमें स्पाइस ऐड करते हैं, थोड़ा सा मसालेदार। तो एक रैपिड फायर राउंड छोटा सा रखते हैं, देखते हैं कि टीचर की पसंद क्या होती है।
0: जी बिल्कुल
1: मैं आपके सामने 2 चीज़ें रखूंगी, दिस और दैट, आपको उनमें से

0: टीचर्स
1: बोथ, मुझे लगता है कि टीचर को अपने में दोनों ही चीज़ें रखनी चाहिए। उसको एक टाइम पर स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए और एक टाइम पर फ्रेंडली भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है एक टीचर।
0: अच्छा आसिफ, आपने स्टूडेंट्स के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे?
1: जी, मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मेरी बात को सीरियस लेते हैं, अच्छे से क्लास में बैठते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना टाइम मैं उनके साथ स्पेंड करती हूँ वो मेरा मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम है, और वो टाइम मैं हमेशा याद रखूंगी अपनी लाइफ टाइम।
0: अच्छा आसिफा, एक चीज़ और, आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती हैं?
1: देखिए उज्मा, वैसे तो मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ, लेकिन जो मेरा सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, और मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं अपने सब्जेक्ट में बेहतर हूँ।
0: अच्छा तो आसिफा, आप जाते जाते हमारे दोस्तों के लिए, यानी जो आपको भी सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने दोस्तों के लिए?
1: मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अपने टीचर की रेस्पेक्ट करें, अपने सपनों पर भरोसा रखें, मेहनत करते रहें, सफलता धीरे धीरे जरूर मिलेगी, और सबसे जरूरी बात, सीखना कभी ना छोड़ें।
0: तो आसिफा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच उस्मा।
2: दोस्तों, ये तो आपने सुनी उज्मा की आसिफा से बातचीत। अब हम आपको सुनवाते हैं ये नॉन फिल्मी चार्टबस्टर का अगला गीत।

0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वैसे पसंद तो आया होगा, क्यों उस बार?
1: बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, पसंद आने वाली चीजें तो पसंद ही आएंगी ना रुमान।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों को बता दें कि प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हमने पूछा था उनसे एक सवाल। हमारा दोस्तों आपसे सवाल था कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है।
1: और जिसका सही जवाब है गल्फ ऑफ मन्नार।
0: अब देख लेते हैं उज्मा आखिर किन किन साथी ने दिया है इसका सही जवाब। या फिर उज्मा थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं और दोस्तों को सुनवा देते हैं नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर का ये आखिरी गीत और फिर
1: बिल्कुल
0: शामिल करेंगे दोस्तों के नाम।
2: Excuse me.

0: तो दोस्तों, हमने आपसे जैसे वादा किया था कि नॉन फिल्मी चार्ट बस्टर के आखिरी गीत के बाद हम आपको आपके जो नाम हैं वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे, तो चलिए शामिल करते हैं उन दोस्तों के नाम जिन्होंने दिया है हमें सही जवाब।
1: तो दोस्तों, सही जवाब देने वालों के नाम हैं जॉन डी कैस्ट्रो, नंद कुमार ठाकुर, विष्णु टेलर, सुदर्शन शाह, और हमारे साथी हैं दिनेश वर्मा, धर्मेंद्र छीपा, रामचंद्र गुप्त, उत्तम भगत, ताज अंसारी, अनिल विनोचा, अनिल बी गोडके, रामकुमार रेवार, बबलेश पवार, अरविंद कुमार, बी आई धाकड़, विजय शुलेशकर और देवशंकर तामुरिया, देवेंद्र विजय सिंह इसके, और हमारे अगले साथी हैं विठल सुरेश, देवशंकर तामुरिया, सुनीता राणा और मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, गजानन येले और भुवन प्रकाश, गंगा सिंह रावत, महेंद्र मोदी, राजकुमार दूधी, और यह सईद अब्बासी, और हमारे अगले दोस्त हैं फागुराम यादव, मोहम्मद अफजल ताज, जगदीश धाकड़, राजेश वर्मा और बलवंत कुमार वर्मा, निसार सलमानी, समीर मंसरूरी, मोहम्मद जाहिद अली, इशरत खान, दिग्दर्शन गौड़, मोहम्मद आमिर अंसारी, संजय डिंगिया, और हमारे अगले साथी हैं दीपेश वर्मा, दीपेश वर्मा छत्तीसगढ़ से हैं दोस्तों, और ये हमारे साथी हैं गुरमीत सिंह मेहता और राम शरण हैं हमारे साथी, और इन्हीं के साथ हमारे एक और दोस्त हैं जिनका नाम है खलीलाश, और इन्हीं के साथ एक और दोस्त हैं जिनका नाम है सदानंद मंदूकर।
0: तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: चाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज MT सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक है।
2: हम अपने नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमरीकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को MT मारीवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसूर को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों का मनपसंद दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया हिमांशु रंजन की राम राम। और सुनाइए किसान भाइयों, कैसे हालचाल हैं आपके? भैया देखो, हालचाल तो आपके ठीक होंगे और भैया आपकी खेती किसानी भी अच्छी चलेगी, पर भैया देखो, अगर आपने रबी की फसल काटने के बाद भैया अभी तक अगर गर्मी की जुताई नहीं की है तो इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर लें और वर्षा से पहले खेत में अच्छी मेड़बंदी कर दें, जिससे खेत की मिट्टी ना बहे और खेत वर्षा का पानी अच्छी तरह से सोख सके। किसान भाइयों, यदि मई के अंतिम सप्ताह में धान की नर्सरी नहीं डाली हो तो जून के प्रथम पखवाड़े तक इस कार्य को अवश्य पूरा कर लें, जबकि सुगंधित प्रजातियों की नर्सरी जून के तीसरे सप्ताह में डालनी चाहिए। किसान भाइयों, हरे चारे वाली फसलों की बात करें तो बहु कटाई वाली चरी में कटाई के बाद प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नत्रजन व भैया अगर हम इसकी कटाई दोबारा की हो तो 20 किलोग्राम नत्रजन की टॉप ड्रेसिंग हमें कर देनी चाहिए। चारे के लिए ज्वार, लोबिया और बहु कटाई वाली चरी की बुआई हमें कर देनी चाहिए। वर्षा ना होने की दशा में पलेवा देकर बुआई की जा सकती है। अगर हम हरे चारे वाली फसलों में सिंचाई की बात करें तो इस समय ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया, ग्वार तथा इनकी मिश्रित फसलें हरे चारे के रूप में उगाई जाती हैं। किसान भाइयों, आप जानते ही हैं कि खरीफ मौसम वर्षा का मौसम माना जाता है, फिर भी फसलों की अच्छी वृद्धि और अधिक उत्पादन के लिए समय समय पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, वर्षा की अनियमितता, लंबे सूखे अंतराल तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई का विशेष महत्व होता है। हरे चारे की फसलों में सिंचाई का मुख्य उद्देश्य पौधों को पर्याप्त नमी उपलब्ध कराना, पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाना तथा अधिक हरा और पौष्टिक चारा प्राप्त करना होता है। यदि फसल को आवश्यक समय पर पानी नहीं मिलता तो पौधों की

0: वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और चारे की गुणवत्ता तथा उत्पादन दोनों प्रभावित होते हैं। किसान भाइयों, अगर हम मक्का की बात करें तो इसमें हमें सामान्यतः 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होती है। पहली सिंचाई अंकुरण के बाद और भैया दूसरी सिंचाई पौधों की तीव्र अवस्था में करनी चाहिए। यदि वर्षा पर्याप्त हो जाती है तो अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिंचाई का समय भी महत्वपूर्ण होता है। सुबह या शाम के समय सिंचाई करना अधिक लाभकारी माना जाता है, क्योंकि इस समय वाष्पीकरण कम होता है और पानी का अधिकतम उपयोग पौधों द्वारा कर लिया जाता है। तो किसान भाइयों, बातचीत तो भैया हम आगे भी आपसे करेंगे, लेकिन अब भैया कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुन लेते हैं कुछ ही जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: कम लागत समृद्ध किसान, यही आज का है अभियान।
6: पोषक तत्व बचाएं, मिट्टी को स्वस्थ बनाएं।
5: यूरिया और डीएपी का संतुलित उपयोग,
6: खुशहाली का नया प्रयोग।
7: किसान भाई अंधाधुंध उर्वरकों के प्रयोग से बचें और खेती की लागत कम करके प्राकृतिक संसाधनों को बचाएं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोतीपुरम मेरठ और आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा जनहित में जारी।
0: अभी हमारे किसान भाइयों ने सुने कुछ ही जरूरी संदेश और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी व्यवस्था की जिसके कृषि विपणन के क्षेत्र में नई सोच और नई दिशा दी है, जिसका नाम है ई नाम। बहुत से किसान भाई इसका नाम तो सुनते हैं, लेकिन अक्सर यह समझ नहीं पाते कि आखिर ई नाम है क्या, यह है कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ई नाम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन कृषि विपणन मंच है। इसे वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश की विभिन्न कृषि मंडियों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ना है, ताकि किसान अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेच सके। ई नाम एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां देश की विभिन्न मंडियों के व्यापारी और किसान एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इससे किसान की उपज के लिए अधिक खरीदार उपलब्ध होते हैं और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ई नाम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी पारदर्शिता है। किसान भाइयों, यदि आप ई नाम का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका पंजीकरण होना आवश्यक है। पंजीकरण के लिए सबसे पहले किसान के पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद किसान अपनी नज़दीकी ई नाम से जुड़ी कृषि उपज मंडी, जिसे हम एपीएमसी बोलते हैं, में जाकर मंडी अधिकारियों की सहायता से पंजीकरण करा सकते हैं। कई स्थानों पर कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे हम CSC सेंटर भी बोलते हैं, यहाँ पर भी यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर भी आप पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के दौरान किसान का नाम, पता, आधार संख्या, बैंक खाता विवरण और खेती से संबंधित जानकारी दर्ज की जाती है। सभी दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद किसान का ई नाम ID बन जाती है। तो किसान भाइयों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बदलते समय के साथ कृषि में भी नई तकनीकों और डिजिटल साधनों को अपनाना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये तो बात हुई ई नाम की। और किसान भाई देखिए, आज है माह का दूसरा गुरुवार और हमारे किसान भाई जानते हैं कि हम हर माह के दूसरे गुरुवार को किसान भाइयों के लिए लेकर आते हैं विशेष मासिक कार्यक्रम पगडंडी। और भैया, आज के पगडंडी कार्यक्रम में जो विषय है वो है स्वस्थ किसान समृद्ध कृषि। आलेख व संकलन है हिमांशु रंजन और प्रस्तुति है अंकित सैनी की।

0: किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आज है माह का दूसरा गुरुवार और हर महीने के दूसरे गुरुवार को सुनते हैं हमारे किसान भाई हमारा मासिक कार्यक्रम पगडंडी। किसान भाइयों, पगडंडी एक ऐसा ऊंचा नीचा, उबड़ खाबड़, पतला संकरा सा रास्ता है जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। पगडंडी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि, ग्रामीण विकास, तीज त्योहार, पर्व, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों से संबंधित विषयों को उठाते हैं। पगडंडी कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है स्वस्थ किसान, समृद्ध कृषि। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल खेती किसानी से जुड़ा है बल्कि किसानों के जीवन, परिवार और भविष्य से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि किसान देश की रीढ़ होता है। किसान अपने परिश्रम, लगन और समर्पण से खेतों में अन्न उगाता है, फल सब्जियां पैदा करता है और पूरे देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। गांव की अर्थव्यवस्था हो या देश की प्रगति, किसान की भूमिका हर जगह महत्वपूर्ण है। लेकिन एक सवाल हम सभी को स्वयं से पूछना चाहिए कि जो किसान पूरे समाज के लिए अन्न पैदा करता है, क्या वह अपने स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रख पाता है? किसान भाइयों, अक्सर देखा जाता है कि किसान अपनी फसल, अपने पशुओं और अपने परिवार की चिंता तो करता है लेकिन अपने स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देता है। यही कारण है कि कई बार छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं बड़ी परेशानियों का रूप ले लेती हैं। यदि किसान का शरीर स्वस्थ होगा तो वह अधिक ऊर्जा के साथ काम कर पाएगा, समय पर खेती के कार्य पूरे कर पाएगा और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होगा। वहीं यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो खेती के काम प्रभावित होंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि किसान अपने भोजन, दिनचर्या, योग और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों पर विशेष ध्यान दे। किसान भाइयों, योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी जीवन पद्धति है जिसने शरीर, मन और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करने का मार्ग दिखाया है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग को स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार माना था। भारत की प्राचीन योग संस्कृति क्या है? हमारे ऋषि मुनियों ने योग को इतना महत्व क्यों दिया? इस संबंध में हमने बात की श्री सुरेंद्र कुमार आर्य जी से, जो कि योग आचार्य हैं आर्यकुलम गुरुकुल नीलोखेड़ी करनाल में।
1: योग भारत की सबसे प्राचीन और महान सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है। यह केवल शारीरिक व्यायाम या स्वास्थ्य सुधार की पद्धति नहीं है बल्कि जीवन को संतुलित, अनुशासित और आध्यात्मिक बनाने का विज्ञान है। भारत की संस्कृति और सभ्यता के विकास के साथ साथ योग का भी विकास हुआ है। हजारों वर्षों से योग भारतीय जीवन का अभिन्न अंग रहा है। हमारी ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने का मार्ग बताया। आज योग विश्व भर में लोकप्रिय है लेकिन इसकी जड़ें भारतीय संस्कृति और दर्शन में गहराई से समाई हुई हैं। योग का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन कराना है। साथ ही यह मनुष्य को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने का मार्ग भी है। योग का इतिहास अत्यंत प्राचीन माना जाता है। विद्वानों के अनुसार योग की शुरुआत लगभग 5000 वर्ष या उससे भी पहले हुई थी। इसके प्रारंभिक प्रमाण सिंधु सभ्यता से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में ऐसी अनेक मुहरें मिली हैं जिस पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए व्यक्तियों के चित्र अंकित हैं। इन चित्रों को योग साधना के प्रारंभिक प्रमाण माने जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय भी ध्यान और योग जैसी साधनाएं प्रचलित थी। वैदिक काल में भी योग का स्वरूप और अधिक विकसित हुआ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में योग, ध्यान, तपस्या और आत्मसंयम से संबंधित अनेक संदर्भ मिलते हैं। वेदों के ऋषि ध्यान और साधना के माध्यम से सत्य की खोज करते थे। उनका मानना था कि मन को नियंत्रित करके ही परम ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। इसी विचार ने आगे चलकर योग दर्शन का रूप लिया। उपनिषदों में योग के सिद्धांतों का और अधिक विस्तार मिलता है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के संबंधों पर गहन चिंतन किया गया। यहाँ योग को आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन बताया गया। महाकाव्य काल में भी योग का महत्व बना रहा। विशेष रूप से भगवत गीता में योग का अत्यंत विस्तार से वर्णन मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश दिया। गीता में योग को जीवन जीने की कला बताया गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि योग मनुष्य को सफलता और असफलता दोनों स्थितियों में संतुलित रहने की शिक्षा देता है। गीता का यह संदेश आज भी योग दर्शन का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। योग के इतिहास में महर्षि पतंजलि का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने योग के बिखरे हुए सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप दिया और योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र में लगभग 195 सूत्र हैं, जिनमें योग के सिद्धांत और अभ्यासों का वर्णन किया गया। पतंजलि ने योग के चित्तवर्ती निरोध अर्थात मन की चंचल प्रवृत्तियों को रोकने की प्रतिक्रिया बताया। उन्होंने अष्टांग योग की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि शामिल किए गए। बौद्ध और जैन धर्म के विकास में भी योग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भगवान गौतम बुद्ध ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण को मुक्ति का मार्ग बताया। बौद्ध साधना में ध्यान का विशेष महत्व है। इसी प्रकार जैन धर्म में तप ध्यान और आत्म संयम पर बल दिया गया योग के मूल सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। महाकाल में योग का नया स्वरूप उभर कर आया, जिसे हठ योग कहा गया। इस परंपरा के प्रमुख प्रवर्तक गुरु गोरक्षनाथ माने जाते हैं। हठ योग में शरीर को शुद्ध और सुडुल बनाने के लिए विभिन्न आसनों प्राणायामों शुद्धिकरण क्रियाओं को शामिल किया गया। इस काल में अनेक योग ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें हठ योग, घृण संहिता और शिव संहिता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज योग केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका सहित विश्व के लगभग सभी देशों में लोकप्रिय है। लाखों लोग प्रतिदिन योग अभ्यास करते हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव, चिंता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बीच योग लोगों को संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग दिखा रहा है। भारतीय संस्कृति में योग का महत्व केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहा, यह जीवन मूल्यों, नैतिक आत्म संयम और आध्यात्मिक उन्नति का भी आधार बना। योग हमें सिखाता है कि बाहरी उपलब्धियों से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शांति और आत्म संतोष है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने योग को मानव जीवन का अभिन्न अंग माना है। निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि योग भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की अमूल्य देन है। इसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इसकी जड़ें भारतीय दर्शन, अध्यात्म और जीवन पद्धति में गहराई तक समाई हुई हैं। सिंधु सभ्यता से लेकर आधुनिक युग तक योग ने निरंतर विकास किया है और आज यह विश्व मानवता के लिए स्वास्थ्य, शांति और सद्भाव का संदेश लेकर खड़ा है। योग भारत की उस महान परंपरा का प्रतीक है, जिसने सदैव मानव कल्याण को सर्वोच्च महत्व दिया है। भारत की प्राचीन योग संस्कृति आज पूरे विश्व को स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की दिशा प्रदान कर रही है।
0: किसान भाइयों, आज के समय में योग केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, योग एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है और इसके माध्यम से रोजगार तथा स्वरोजगार के नए अवसर भी विकसित हो रहे हैं। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने के साथ साथ समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। योग का व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन में क्या महत्व है, इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने बात की डॉक्टर सुधांशु वर्मा जी से, जो कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिषद देवप्रयाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में योग विज्ञान एवं आध्यात्म विभाग विद्या शाखा में कार्यरत है।
2: नमस्कार श्रोताओं, योग केवल कुछ शारीरिक आसनों का अभ्यास मात्र नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक गहरी और वैज्ञानिक कला है। इसका वास्तविक अर्थ बहुत व्यापक है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर मनुष्य के समग्र विकास से जुड़ा है। योग के वास्तविक अर्थ को हम इसके शाब्दिक, दार्शनिक और व्यवहारिक पहलुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो ये जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। आध्यात्मिक स्तर पर इसका अर्थ होता है व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना के साथ मिलन। यह शरीर और मन, मन और आत्मा के बीच एक गहरा सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। पारंपरिक ग्रंथों में योग की परिभाषाएं अगर हम देखें, तो उसका भी कुछ अर्थ इसी प्रकार निकलता है, जैसे योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात अपने कर्म को पूरी कुशलता, जागरूकता और बिना किसी स्वार्थ के करना ही योग है। इस प्रकार कई सारे उपनिषदों में, जैसे कठोपनिषद में भी हमें जानने को मिलता है, जब इंद्रियां, मन और बुद्धि स्थिर हो जाते हैं और अपनी उच्चतम अवस्था में होते हैं, तो उस परम अवस्था को योग कहते हैं। अगर आधुनिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें, तो आज के समय में योग का वास्तविक अर्थ है संतुलन और जागरूकता। शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। संक्षेप में कहें तो योग केवल एक अभ्यास मात्र नहीं है, बल्कि यह स्वयं को जानने, अपनी अनंत क्षमताओं को पहचानने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने की एक संपूर्ण विज्ञान है। और इसी से योग का महत्व भी हमें समझ में आता है। वर्तमान समय में जब हमारी जीवन शैली अत्यधिक तेज, तनावपूर्ण और तकनीक आधारित हो गई है, तब योग का महत्व केवल एक शारीरिक या मानसिक या आध्यात्मिक अभ्यास से बढ़कर हमारी मूलभूत आवश्यकता बन गया है। आज के युग में योग प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। आधुनिक परिस्थितियों में योग के महत्व को हम कुछ बिंदुओं से समझ सकते हैं। जैसे पहला बिंदु अगर मैं इसमें जोड़ना चाहूं तो जीवन शैली से कुछ जुड़ी बीमारियों का प्रबंधन, जिसको आजकल हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज रिलेटेड मैनेजमेंट कहते हैं। बहुत गतिहीन जीवन हो गया है इस भागदौड़ भरी जीवन शैली में, और उसके कारण मोटापा हो जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाते हैं, और महिलाओं में मूल रूप से मेटाबॉलिज्म से संबंधित हाइपरथायरॉइडिज्म या हाइपोथायरॉइडिज्म होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनी रहती हैं, और बहुत सारी महिलाएं इससे ग्रसित भी हैं। योग इन सब चीजों को ठीक करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और साथ ही शरीर की कार्यप्रणाली यानी पैथोफिजियोलॉजी को संतुलित कर इन सभी बीमारियों के मूल कारण पर प्रहार करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और तनाव मुक्ति यानी मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस रिलीफ, ये एक दूसरा बहुत बड़ा कारण है। आधुनिक जीवन में चिंता का बढ़ जाना या अवसाद का बढ़ना या तनाव का बढ़ना, जिसको हम स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, एक महामारी का रूप ले चुके हैं, यानी पैंडेमिक हम कह सकते हैं। योग विशेष रूप से ध्यान और प्राणायाम हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को शांत करते हैं। यह शरीर के सिंपैथेटिक मोड को कम करके विश्राम यानी पैरासिंपैथेटिक मोड को सक्रिय करता है। योग निद्रा, भ्रामरी, सूर्य भेदन और भस्त्रिका जैसे प्राणायाम के अभ्यास से शरीर स्लीप और वेक साइकिल को रीसेट करने में मदद मिलता है। एक शरीर में एक हार्मोन निकलता है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं, उसके स्राव को संतुलित करके अनिद्रा को दूर करता है। लोग जो अध्ययन अध्यापन करते हैं और करना चाहते हैं, उनके लिए योग में व्यवसाय के भी बहुत जबरदस्त अवसर हैं। आज के समय में योग केवल एक व्यक्तिगत या आध्यात्मिक साधन नहीं रह गया है, बल्कि एक विशाल वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण उद्योग बन चुका है। जैसे जैसे दुनिया भर में लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी जो स्वास्थ्य की देखभाल है, और होलिस्टिक लाइफस्टाइल यानी समग्र जीवन शैली की ओर मुड़ रहे हैं, योग के क्षेत्र में पारंपरिक शिक्षा से लेकर आधुनिक उद्यमिता तक कई बेहतरीन व्यवसायिक अवसर सामने आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं बात करूं हायर एजुकेशन या एकेडमिक रिसर्च में, तो अकादमिक कोऑर्डिनेटर या करिकुलर डेवलपमेंट विश्वविद्यालयों में बीएससी, एमएससी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ पाठ्यक्रम तैयार करना और जो परीक्षा प्रणाली है उसका मैनेजमेंट करना, एक विद्यार्थी उस ओर भी जा सकता है। साथ ही वो एक हायर एजुकेशन में प्रोफेसर या रिसर्चर भी बनकर आ सकता है, जैसे जो उच्च शिक्षण संस्थान है भारत में उसमें अध्यापन करना। इसके अतिरिक्त योग के प्रभावों का आधुनिक विज्ञान जैसे न्यूरोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी या एपिजेनेटिक्स के साथ अध्ययन कर शोध पत्र प्रकाशित करना भी एक अच्छा प्रतिष्ठित करियर विकल्प बनता है। योगा थेरेपी और क्लिनिकल प्रैक्टिस भी एक इस समय व्यवसाय के अवसर लेकर के आते हैं। जैसे क्लिनिकल योगा थेरेपिस्ट है जो अस्पतालों में, आयुष केंद्रों में या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में डॉक्टरों के साथ मिलकर काम करना। इसके साथ में डिजिटल एजुकेशन अगर हम बात करें या मीडिया के माध्यम से, तकनीक ने योग को हर घर में पहुंचा दिया है। यूट्यूब और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, अपने ज्ञान को वीडियो के माध्यम से दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाना, इसमें सही विजुअल स्क्रिप्टिंग और जो क्वालिटी सामग्री है उसके माध्यम से बड़ा दर्शक वर्ग तैयार किया जा सकता है। ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन वर्कशॉप, तो इसके माध्यम से भी वैश्विक स्तर पर छात्रों के लिए सर्टिफिकेट कोर्स या विशेष मास्टर क्लास आयोजित कर सकते हैं। तो व्यवसाय के अवसर पर अब यदि देखें तो योग का क्षेत्र अब केवल योगासन सिखाने तक सीमित नहीं है, इसमें विज्ञान, साहित्य, प्रबंध और तकनीक का बहुत सुंदर समन्वय हो चुका है, जो इसे एक अत्यधिक सम्मानजनक और सुरक्षित करियर भी बनाता है।
0: किसान भाइयों, कृषि और योग दोनों ही प्रकृति पर आधारित जीवन पद्धतियां हैं। एक ओर योग व्यक्ति के शरीर, मन और विचारों में संतुलन स्थापित करता है, वहीं कृषि धरती, जल, वायु और जैव विविधता के संतुलन पर आधारित है। जब किसान मानसिक रूप से शांत, शारीरिक रूप से स्वस्थ और सकारात्मक सोच वाला होता है, तब वह खेती के कार्य को अधिक दक्षता और उत्साह के साथ कर पाता है। इन्हीं पहलुओं को समझने के लिए हमने जानकारी ली श्री गिरिराज जी से, जिन्होंने कृषि विभाग में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं और साथ ही एक योगाचार्य के रूप में भी समाज को मार्गदर्शन दे रहे हैं। कृषि और योग दोनों क्षेत्रों का अनुभव रखने वाले श्री गिरिराज जी ने हमें बताया,
3: योग का सीधा सा अर्थ है अपने मूल से जुड़ जाना। योग स्वस्थ रहने की एक दैवीय विधा है। मानव जाति को पूर्ण रूपेण स्वस्थ बनाए रखने की कला और विज्ञान दोनों का सम्मिश्रण हमारे ऋषि मुनियों का कृपा प्रसाद है। योग जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ सभी से ऊपर है। वो बिना किसी भेदभाव के सभी पर समान प्रभाव डालकर मानव का कल्याण करता है। जहाँ तक योग के बारे में है, संक्षिप्त में ये कहूंगा मैं, महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग कहलाता है। विशेष रूप से इसके दो मुख्य रूप से लाभ हैं, एक शारीरिक दृष्टिकोण से और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। शारीरिक दृष्टिकोण से मुख्य रूप से है, जितने भी रोग होते हैं वो असंतुलन के कारण, चाहे वो हार्मोन्स का असंतुलन हो, चाहे वो केमिकल का संतुलन हो, चाहे वो किसी भी स्तर का, शुगर का हो, बीपी का हो, कोलेस्ट्रॉल का हो, जब संतुलन होता तभी रोग प्रकट होता है। इसमें संतुलन पैदा हो जाता है, इसलिए कहा गया समुत्तम योग उच्चते। ये योग समुत्त पैदा करता है, उसमें समता आ जाती है, तो सभी प्रकार का संतुलन होता है। डीजेनरेट सेल रीजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं, व्याधि मुक्त जीवन होता है, व्यसन मुक्त जीवन बन जाता है। ये तो एक शारीरिक लाभ है। दूसरी ओर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो मन एकाग्र होता है, शांत होता है, ईश्वर की दिव्य प्रेरणाएं आत्मा में उतरने लगती हैं, मस्तिष्क में दिव्य ज्ञान, हृदय में दिव्य प्रेम और संवेदना प्रकट होने लगती है, सुख शांति दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये विशेष रूप से मुख्य रूप से लाभ है। और चूंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और देश में लगभग 70% आबादी जो है वो कृषकों की है, गांव में ग्रामीण अंचल में रहती है, तो उनके लिए मैं चाहूंगा कि ये विशेष रूप से अपने जीवन में योग को उतारें, जिससे वो स्वस्थ रहें, सबल रहें और मानसिक स्तर पर भी अपना सुदृढ़ हों, जिससे कि तमाम प्रकार की परेशानियां उनके क्षेत्र में आती हैं और वो उससे परेशान होकर तरह तरह के किसान आत्महत्याएं सुनने को मिलती हैं, उनसे बच जाएगा यदि शारीरिक दृष्टिकोण से वो मजबूत होगा और मानसिक स्तर पर सबल होगा, तो इन जो परेशानियां आती हैं उनको झेल लेगा और आराम से कृषि कार्य तो निश्चित रूप से सही प्रकार से करने में सफल होगा। इसी प्रकार से किस प्रकार से ये काम करता है शरीर को ठीक करने में, मैं इस संदर्भ में कुछ बताना चाहूंगा। हमारा शरीर 37 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है और दिन रात प्रतिपल प्रतिक्षण 24 घंटे इसमें जीवन मृत्यु का खेल चलता रहता है। जैसे आरबीसी के सेल हैं वो 110 से 120 दिन में नव निर्माण हो जाते हैं, WBC है वो 24 घंटे के अंदर बदल जाते हैं, प्लेटलेट के सेल हैं वो 7 से 10 दिन में बदल जाते हैं, पैंक्रियाज के सेल हैं वो 30 से 50 दिन में चेंज होते हैं, इस प्रकार से लीवर का सेल है वो 6 से 1 वर्ष में बदल जाता है, नव निर्माण हो जाता है योग के माध्यम से। और एक और जहां हम देखते हैं कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, रसायन चाहे वो खरपतवार को नाशक के रूप में हो, चाहे वो कीटनाशक के रूप में हो, तमाम प्रकार के जो जहरीले पदार्थ रसायन हम खेती पर इस्तेमाल करते हैं उसका ही हम सेवन करते हैं, जिसके कारण हम सब अधिकतर बीमारी को प्राप्त होते हैं और जो कुछ आमदनी होती है वो बीमारी में खर्च हो जाती है। उससे बचने के लिए मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि आप योग से जुड़ जाएंगे और नित्य प्रति उसे अपने शामिल कर लेंगे जीवन में, तो आपको कोई रोग नहीं रह सकता। तो मैं समझता हूं कि किसान भाई हमारे, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो युवक हों, सभी जो है अपने जीवन में योग को उतारें और स्वस्थ रहें, मानसिक स्तर पर भी, शारीरिक स्तर पर भी। धन्यवाद।
0: किसान भाइयों, आज के पगडंडी कार्यक्रम में हमने जाना कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और समृद्ध कृषि एक दूसरे के पूरक हैं। योग संतुलित जीवन शैली और आधुनिक कृषि ज्ञान को अपनाकर किसान न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपनी खेती को भी अधिक लाभकारी बना सकते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी और आप इन बातों को अपने जीवन में अवश्य अपनाएंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी खेती को समृद्ध बनाएं। किसान भाई अभी सुन रहे थे विशेष मासिक कार्यक्रम पगडंडी, स्वस्थ किसान समृद्ध कृषि। आलेख व संकलन था हिमांशु रंजन का और प्रस्तुति थी अंकित सैनी की। तो किसान भाइयों, उम्मीद है आपको ये विशेष मासिक कार्यक्रम पगडंडी है ये पसंद आया होगा। और भाई अब शाम का समय हो रहा है और भैया हमारे किसान भाई इंतजार कर रहे होंगे भैया गीत संगीत का। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं मैनपाल सिंह की गाई ये प्यारी सी रागनी।

सुख थोड़े दुख घने जगत में। किसान भाइयों, अभी आपने मैनपाल सिंह की गाई ये प्यारी सी रागनी सुनी और भैया उम्मीद है कि आपका मनोरंजन हो गया होगा, दिन भर की थकान उतर गई होगी। और भैया देखो, अब बारी है मौसम की चिट्ठी की, जो कि हमें प्राप्त हुई है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोतीपुरम मेरठ से। भाई इसमें दी गई जानकारी के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना है। तो किसान भाइयों, आप अपनी फसलों की सिंचाई और रासायनिक स्प्रे से बचें, ये किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। और साथ ही भैया, धान की नर्सरी में पानी का ठहराव ना होने दें। तो इन सब बातों का हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे। और भैया अब देखो, घड़ी भी इस ओर इशारा कर रही है कि भैया और बातचीत नहीं। तो किसान भाइयों, उठाइए कागज और कलम और लिखिए हमारे कार्यक्रम का पता। पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन है भैया 2467 63। और भैया साथ ही हमारा एक मोबाइल नंबर है, आप उस पर भी व्हाट्सअप संदेश भेज सकते हैं 94 57 07 82 88। और अब अपने भैया हिमांशु रंजन को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह की वार्ता, जिसका विषय है सौर ऊर्जा के बढ़ते कदम।
1: सौर ऊर्जा आधुनिक युग का सबसे सरल और सुगम ऊर्जा स्रोत है। ये जीवन के लिए प्रकृति का वरदान है। आज वैज्ञानिक प्रगति चेतना के युग में ऊर्जा के अक्षय स्रोत का उपयोग करके औद्योगिकी और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि की है। विद्युत ऊर्जा से संचालित होने वाले संयंत्र आज सौर ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। कम लागत से अधिक उत्पादन का यह सिद्धांत वैज्ञानिकों ने अपनाना प्रारंभ कर दिया है। जल का दोहन और कोयले के उपयोग की जो भारी खपत है उससे निजात मिलेगी और हम लोग इस सौर ऊर्जा के माध्यम से अपने जीवन को और अधिक गतिशील बना सकेंगे। विश्व के अंतर्गत जर्मनी और जापान इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं। उन्होंने उद्योग सौर ऊर्जा के माध्यम से अपने उद्योगों को संचालित किया है और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भारत वर्ष में भी सौर ऊर्जा के उत्पादन और प्रयोग की परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। यूं तो वैदिक काल के अंतर्गत भी सूर्य को नमस्कार किया जाता है। हमारे यहाँ ओम विश्वान देव सप्तर दुत्तान परासु यद्रभतन आसु, इसका मतलब है हे विश्व के देवता सविता सूर्य भगवान, तुम हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं इन्हें दूर करो, प्रकाश के द्वारा हमारे जीवन में उजाला करो। वे शक्ति के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। आज इस शक्ति को हम यूज करके अपने जीवन को और अधिक उपयोगी और विकसित बनाना चाहते हैं। सौर ऊर्जा वास्तव में सूर्य से निकलने वाली तापीय किरणों का संग्रह है, जिसके द्वारा एक छोटे से यंत्र के द्वारा हमें इसे एक जगह संचालित कर लेते हैं और इसके द्वारा ही हम अपनी नई नई चीजों में उत्पादन करते हैं। किसान और लघु उद्यमी, डॉक्टरों और शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ही उपयोगी है। नई ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करने के लिए भारत सरकार सौर ऊर्जा के ऊपर 30-50% तक अंशदान दे रही है। बड़े बड़े शिक्षा संस्थान, अस्पताल, डेयरी विभाग, उद्यमी लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इसके प्रमुख लाभ हैं, यह कम खर्च का संयंत्र है, यह सुरक्षित और सहज उपलब्ध है, यह दीर्घजीवी संयंत्र है जिसे 25-30 वर्ष तक बना रहता है, यह जल संरक्षण का सबसे सुगम और महत्वपूर्ण साधन है। भविष्य के लिए जल संरक्षण करना हमारा परम धर्म है। भारत में कई प्रांतों में युद्ध स्तर पर इस योजना का विकास हो रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र इस क्षेत्र में अग्रणी है। उत्तर

एक एक ऐसा शहर है जिसके स्टेशन को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। यह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का सबसे पहला प्रमुख स्टेशन होगा जो 80 लाख रुपए का प्रति माह ऊर्जा का उत्पादन करेगा। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं सोलर प्लांट लगा रही हैं। आवश्यकता यह है कि हम कई शिक्षा संस्थान और दक्षिण भारत के कई संस्थान ऐसे हैं ये योजना का लाभ उठा रहे हैं। मैं एक सुझाव और देना चाहूँ कि यदि हमारी सरकार जैसे वृक्षारोपण का मिशन चलता है, जैसे स्वच्छता अभियान चलता है, उसी प्रकार से सौर ऊर्जा के अभियान को संचालित कराए तो निश्चित रूप से हम इसमें उत्तरोत्तर प्रगति प्राप्त कर सकेंगे। ग्रामीण स्तर पर पंचायत के माध्यम से प्रसारण किया जावे, ग्राम प्रधान जल और प्रकाश का प्रबंधन सौर ऊर्जा के माध्यम से कराए। दूसरा मेरा सुझाव है कि नगरीय स्तर पर जो महापौर हैं और नगर पालिका के अध्यक्ष हैं वे भी जल और प्रकाश की व्यवस्था सौर ऊर्जा के माध्यम से कराएं। विकासखंड अधिकारी लक्ष्य निर्धारित किया जाए कि अपने विकासखंड के अंतर्गत कम से कम लघु उद्यमी और छोटे किसानों को यह सुविधा किसी न किसी प्रकार से उपलब्ध कराएं। यह भी आवश्यक है कि सभी शिक्षा संस्थानों सरकारी कार्यालयों में भी सौर ऊर्जा के उपयोग को अनिवार्यता प्रदान की जाए। और तीसरी एक और बात है, इस मिशन को जो गांव के अंतर्गत एनसीसी के विद्यार्थी हैं, एनएसएस के विद्यार्थी हैं, अध्यापक बंधु हैं, उन सब के माध्यम से अगर हम इस मिशन को आगे को बढ़ाते हैं तो ये और भी अधिक कारगर होगा और बड़ी आसानी से सहज रूप से हम बिजली का जो खर्चा बढ़ता जा रहा है उससे निजात पा सकेंगे। अब मैं आपको इसके उपयोग किस तरीके से होते हैं, 4 किलोवाट का अगर हम कोई प्लांट लगवाते हैं इनसे तो इसके लिए थोड़ी सी जगह है आवश्यक, वो जमीन में नहीं लगाई जाती। ये स्कूल हो चाहे आपका घर है, इसकी छत के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाते हैं। जो 4 किलोवाट का अगर हम लगाएंगे तो इसके लिए ऊपर 100 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होती है। ये सोलर पैनल 320 WP पॉली मल्टी सिस्टर लाइन के होते हैं, इनके साथ में एक इन्वर्टर भी लगता है। ये कम से कम 30 वर्ष तक आपको उपयोगी सुविधा देगा। इसमें जो इनकम है, डेली इनकम इसमें पावर ग्रिड से कहीं ज्यादा है। टोटल एनुअल रिटर्न इसका इन्वेस्टमेंट जो है 21.9% है। अगर आप इसमें देखें तो इसकी जो कीमत है वो 59.65 रुपए आती है 4 किलोवाट में, और ये पूरा टोटल लगा करके 2,38,720 रुपए में लगता है। GST इस पर 11,936 रुपए की है। ये 2,50,000 रुपए का प्लांट है जिसमें 30-50% सब्सिडी सरकार दी। इसे हम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इस छोटे से प्लांट से आप अपनी छोटी सी घर की चक्की चला सकते हैं, मिक्सी प्लांट चला सकते हैं, मशीन चला सकते हैं, चारा काटने की मशीन चला सकते हैं, पानी निकाल सकते हैं, और जो छोटे मोटे काम हैं जैसे आपका छोटा सा बगीचा है तो उसमें जो घास कटिंग का जो होता है, क्रॉप कटिंग का, उसे भी आप यूज कर सकते हैं। छोटे कामों के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है। आदमी अगर इसे लगाए तो इससे बहुत सारी घर की सुविधाएं हो सकती हैं, और ये बहुत ही सस्ते रेट पर आज मिल रहा है। आगे पता नहीं सरकार इसमें देगी कि नहीं देगी, आज हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। दूसरी एक और इससे बड़ी योजना है, यह योजना बड़े लोगों के लिए है जिनका बड़ा आहता है। अगर आप इसे लगाना चाहें, जैसे बड़े बड़े किसान हैं, तो ये ट्यूबवेल भी लगा सकते हैं। अपने ट्यूबवेल के लिए जैसे इन्होंने अगर ये यूनिट लगाई है तो ये 6 किलोवाट तक का अगर लगाते हैं ये, तो इसके लिए इन्हें कम से कम नहीं 150 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। जो सोलर पैनल ऊपर लगाया जाएगा उसके लिए 150 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। इससे ये कुछ जो है 340 WP पॉली मल्टी सिस्टर लाइन पैदा करेगा। यह भी कम से कम 30 वर्ष तक आपको सेवा देगा। इसमें जो ज्यादा बिजली बनेगी उस बिजली को सरकार आपके उससे मीटर के माध्यम से ले लेगी और उसका सही पेमेंट करेगी। इसकी कीमत जो है आपको बैठेगी 5,73,120 रुपए। GST क्योंकि आवश्यक है, सरकार का खर्च देना पड़ता है, कंपनी भी देती है और दूसरे भी देते हैं, तो इसमें 26,856 रुपए GST लगेगी। टोटल खर्चा इसमें 5,63,976 रुपए आता है। ये सही है कि ये 6 लाख के आसपास पड़ता है, लेकिन इसमें भी अगर आप देखें सरकार 30% से लेकर के और 70% तक की सब्सिडी देती है जो बड़े प्लांट लगाएंगे। इससे आप ट्यूबवेल भी चला सकते हैं, जो 3 इंची या 4 इंची ट्यूबवेल है उसे भी चला सकते हैं। आप इसके साथ साथ दूसरे बड़े उद्योग भी चला सकते हैं, जैसे स्पेलर है आप उसे चला सकते हैं। और अधिक शक्ति की अगर आप करेंगे, अगर आपके पास में बहुत ज्यादा क्षेत्रफल है और बहुत ज्यादा क्षेत्रफल के अंतर्गत आप लगा सकते हैं, अगर आप जो है गन्ना क्रशर भी लगाना चाहते हैं तो वो भी चल सकता है। सही बात यह है कि हम जितने सोलर पैनल ज्यादा लगाएंगे, जितना बड़ा संयंत्र लगाएंगे, वह सोलर पैनल उतना ही अधिक हमारे लिए उपयोगी होगा।

0: ये बात ये नहीं है कि सीधे सामान्य किसान और जन के लिए ही ये सौर ऊर्जा उपयोगी है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये छोटे उद्यमियों के लिए भी उतनी उपयोगी है, किसान के लिए भी उतनी उपयोगी है, किसान और मजदूर के लिए भी उतनी ही उपयोगी है। अगर कोई छोटा मजदूर वर्ग जो है अगर चलाता है अपनी रिक्शा सौर ऊर्जा से, आज सरकार ये भी चाह रही है कि हम इस प्रकार के फिलिंग स्टेशन तैयार कर दें जो सौर ऊर्जा से संचालित हों, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले वाहन वहां से अपना राशन ग्रहण करें और फिर उस तरीके से चलें। इस तरीके से सौर ऊर्जा आगामी भविष्य के लिए, आगामी जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और बहुत ही सरल और आसानी से उपलब्ध होने वाला साधन है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, जिसमें आज आपने सुनी डॉक्टर गजेंद्र सिंह की वार्ता, जिसका विषय था सौर ऊर्जा की ओर बढ़ते कदम। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:55 हो रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त अलका सिंह का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और सुन रहे होंगे आकाशवाणी नजीबाबाद। बात इतनी सी थी कि आप अच्छे लगते थे, अब बात इतनी बढ़ गई है कि आपके बिना कोई अच्छा नहीं लगता। जी हाँ श्रोताओं, ये जो हमारे अपने होते हैं ना, जब वो हमें अच्छे लगने लगते हैं तो मानो उनके जैसा फिर दुनिया में कोई नहीं लगता। लगता है कि बस हमारी दुनिया यही है, इनसे अच्छा कुछ नहीं है और हम इनके ही इर्द गिर्द घूमते रहे, हमारी दुनिया उन्हीं में कहीं सिमट जाती है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बालिका वधू से। इसे प्यारी सी आवाज दी है अमित कुमार ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है RD बर्मन ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म बालिका वधू का ये गीत जिसे आवाज दी थी अमित कुमार ने। अजनबी ही तो थे तुम, पर ऐसा कभी लगा ही नहीं। तुमसे बातें जो शुरू हुई तो फिर तुमसे ज्यादा कोई अपना लगा ही नहीं। जी हाँ श्रोताओं, ये जो अजनबी होते हैं ना, ये बड़े हसीन होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं और हमें अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। और फिर धीरे धीरे बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं और वो अजनबी हमारे अपने बन जाते हैं, है ना? ऐसा ही तो होता है, हमारे अपने भी कभी अजनबी ही थे और आज हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कीमती हो गए हैं, है ना? तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अगला गीत जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार ने। गीत है आनंद बख्शी का, संगीत में पिरोया है RD वर्मन ने और फिल्म है अजनबी।

एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का उनके अपने कार्यक्रम छाया गीत में। श्रोताओं, जिनको एहसास नहीं उनके लिए कोरा कागज हूं मैं, मगर पढ़ सके कोई तो जज्बातों की एक किताब हूं मैं। जी हाँ श्रोताओं, जो ये हमारे अपने होते हैं ना, उनके लिए हमारी जिंदगी का हर एक पन्ना बड़ा कीमती होता है। वो हमारी जिंदगी को मात्र एक किताब नहीं समझते, बल्कि समझते हैं कि हमारी जिंदगी की वो एक जमा पूंजी है। हमारे एहसास हैं, हमारे जज्बात हैं, हमारी सारी फीलिंग्स उनसे जुड़ी हैं, है ना?

ऐसा ही तो होता है, लेकिन अजनबियों के लिए सिर्फ हम एक कोरा कागज होते हैं। जब तक हम उन्हें नहीं समझते या वो हमें नहीं समझते, हमें सब कुछ प्लेन ही दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे को जानने लगते हैं, वो कोरा कागज एक अलग ही स्याही में रंगने लगता है और सामने आती है उस इंसान के चरित्र की प्यारी सी तस्वीर, जो सिर्फ अपनों के लिए होती है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म आराधना से। इसे आवाजें दी हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है RD SD बर्मन ने।

अभी आप सुन रहे थे छाया गीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 7:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले जानकारी आज के प्रमुख कार्यक्रमों की। आज रात 9:30 पर सुनिएगा कंट्री वाइड और इनसाइट्स। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। आज रात 10:00 सुनिएगा रूपक, जिसके ख्वाबों पर आबाद है नजीबाबाद। आज रात 10:30 पर सुनेंगे आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। एक ही फिल्म से सुनिएगा आज रात 8:30 पर। गीत संध्या का समय रहेगा आज रात 8:00। सुगम संगीत में सुनेंगे आप नुसरत अली और साथियों की गाई कव्वाली। समय रहेगा आज शाम 7:32 पर। तो अब लिए चलते हैं आपको हमारे कल के कार्यक्रमों की ओर। कल रात 10:30 पर सुनिएगा आपके व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम रात के हम सफर। हेलो नजीबाबाद सुनेंगे आप कल रात 9:30 पर। सुगम संगीत में सुनेंगे आप कल शाम 7:32 पर, जिसमें कलम आपको सुनवाएंगे विविध कलाकारों के गाए नात। कानूनी सलाह में सुनिएगा एडवोकेट अतर सिंह से एस के नोटियाल की बातचीत, जिसका विषय रहेगा बाल श्रम को रोकने संबंधी कानून। समय याद रखिएगा कल शाम 6:45 पर। हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत कल शाम 6:05 पर, जिसमें कल आप सुनेंगे किसान भाइयों की खेती एवं पशुपालन से संबंधित पत्रों के उत्तर पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी कल शाम 5:15 पर, जिसमें कल आकर्षण का केंद्र होंगे बूझो तो जाने कुछ खास है आज ये शाम गजलों के नाम, लव स्टोरीज, यंग अचीवर्स और साथ ही आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का भी। और मेरा सपना उन्नत भारत में का सुनेंगे आप कल शाम 5:00, जिसमें कल हम आपको सुनवाएंगे शिशु सुरक्षा को मजबूत करती योजनाओं के अंतर्गत मिशन इंद्रधनुष अभियान, किलकारी मोबाइल ऐप और मातृ एवं बाल सुरक्षा यानी MCP कार्ड। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 7:18 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल हुए। एक रिपोर्ट।
3: बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और इसमें नीति आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास की थीम पर केंद्रित बैठक में मानव विकास, सुशासन और जन भागीदारी को विकास की धुरी बनाकर विकसित भारत के संकल्प को नई गति देने पर सार्थक विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश भी प्रत्येक नागरिक के सशक्तिकरण को विकास का आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर कल नई दिल्ली में आयोजित एनडीए के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
4: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है, और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
2: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में आयोजित चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।
5: भारत के इतिहास में इतना लंबा समय किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं, ऐसा नेतृत्व बहुत कम समय में देखने को मिलता है। ये हम लोगों का सौभाग्य है। कहीं सड़कें, कहीं जल, कहीं डिजिटल इंडिया, कहीं हाईवे बन रहे हैं, कहीं सेतु बन रहे हैं। आस्था का सवाल हो तो अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण, तमाम ऐसे कार्य ये नींव रखी गई है विकसित भारत की।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
6: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह ने बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में अंतिम सूची में करीब 29 लाख मतदाता बढ़ गए हैं, यानी अब कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 12,58,00,000 हो गई है। मतदाता वृद्धि के मामले में बलिया प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। यहां 1,60,376 मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है। आयोग ने पहली बार सभी मतदाताओं के लिए स्टेट वोटर नंबर जारी किया है। केंद्र सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। लखनऊ स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेने की प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राज कुमार मित्तल ने बताया कि छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकते हैं।
7: बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो मुख्य कैंपस है और जो अमेठी सैटेलाइट कैंपस है उसमें पीजी एडमिशन की प्रक्रिया अभी जारी है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी चला हुआ है। सीयूटी के माध्यम से कोई भी उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकता है। हमारा हेल्पलाइन भी नंबर दिया हुआ है और ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। इसके साथ साथ यदि जो बच्चे दूर दराज में या किसी कारणों से नहीं भर पाते और सीटें जो बच जाती हैं उनके लिए नॉन सीयूटी का भी प्रावधान किया हुआ है।
2: अयोध्या में आज होमगार्ड सम्मेलन में अयोध्या मंडल के 5 जिलों के होमगार्ड अधिकारी और जवान शामिल हुए। इस मौके पर डीजी होमगार्ड डीके ठाकुर ने बताया कि जो भी समस्याएं शासन स्तर पर लंबित हैं उनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे।
8: जो हमारे अधिकारी थे जिनके हमने सम्मेलन किया उन्होंने 2 बातें मांग रखी थी। एक था कि उनको रिटायरमेंट के बाद कोई ईपीएफ टाइप सुझाव दिया जाए, ईपीएफ टाइप की व्यवस्था हो, उसका प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित है। और उनकी दूसरी बात थी कि उनके आयुष्मान योजना में उनको शामिल किया जाए, उनका प्रस्ताव भी शासन स्तर पर लंबित है। इन दोनों प्रस्तावों पर हम लोग आगे काम करेंगे और सशस्त्र से मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के इसको सभी संपन्न कराएंगे।
2: प्रदेश के कई जनपदों में कल से आंधी और बारिश का सिलसिला जारी है। शामली और महाराजगंज में देर रात तेज हवा के साथ शुरू हुई हल्की बारिश से मौसम सुहावना हो गया। जौनपुर, सहारनपुर, अमरोहा और चंदौली में भी सुबह हुई बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही पश्चिमी जनपदों में तेज हवाओं के साथ बिजली और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, नागरिक सशक्तिकरण को आधार बनाकर विकसित भारत के निर्माण में उत्तर प्रदेश निभा रहा है सक्रिय भूमिका। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जारी की अंतिम मतदाता सूची। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में बढ़े करीब 29 लाख मतदाता। और प्रदेश के कई जनपदों में आंधी और बारिश ने गर्मी से दी राहत। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। संध्या के 7:32 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है नुसरत अली और साथियों के स्वर में कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं नुसरत अली और साथियों के स्वर में कव्वाली।

0: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं नुसरत अली और साथियों की गाई कव्वाली। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम की ये अगली कव्वाली।

श्रोताओं, अभी आपने सुने कार्यक्रम की अंतिम कव्वाली। इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत, हम आकाशवाणी, जिसमें हमने आज आपको सुनवाई नुसरत अली और साथियों की गायक कव्वाली। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। रात के 8 बज रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है गीत संध्या। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप ही के कार्यक्रम गीत संध्या में, जिसे लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी दोस्त अलका सिंह। श्रोताओं, जिंदगी हमारी यूं ही कटती जाती है, लेकिन जब हमारी जिंदगी में कोई प्यारा सा शख्स आ जाता है तो हमारी जिंदगी मानो वहीं ठहर सी जाती है और लगता है कि बस ये समय यहीं रुक जाए। न जाने क्या बात है उनकी मुस्कान में, हर दर्द भूल जाते हैं हम एक पल के अरमान में। जी हाँ श्रोताओं, हमारे अपनों का साथ कुछ ऐसा ही होता है। उनका साथ मिल जाए, खुशी के कुछ पल मिल जाए, तो हम हर दर्द भूल जाते हैं, है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये पहला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म धर्मवीर से। इसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का उनके अपने कार्यक्रम गीत संध्या में। नजरें चुराना उनकी कोई अदा नहीं, वो हमसे खफा है पर कोई खता नहीं। हम तो आज भी उनकी आंखों में डूब जाने को तैयार हैं, बस वो एक बार नजरें मिला लें फिर कोई शिकवा नहीं। जी हाँ श्रोताओं, ये जो हमारे अपने होते हैं ना, जब हमसे रूठ जाते हैं तो भी बहुत दर्द होता है और जब नजरें चुराते हैं तब भी बहुत दर्द होता है। लेकिन ये प्यार ऐसी चीज है कि हम उनसे यही कहते रहते हैं कि दिल भले ही चुराना लेकिन नजरें कभी ना चुराना, है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म यादों की बारात से। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है आरडी वर्मन का और आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म यादों की बारात का ये गीत, जिसे आवाजें दी थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। तमन्ना है मेरे मन की हर पल तुम्हारा साथ हो, जितनी भी सांसें चलें मेरी हर सांस पर तुम्हारा नाम हो। जी हाँ श्रोताओं, जब किसी की तमन्ना होती है ना, तो वो चाहता है कि सामने वाला शख्स हमें मिल जाए, हमारी ज़िंदगी में आ जाए और उसके आने से हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए। और यार कहते हैं कि ये हीरा मुझे मिल जाए, है ना? तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म हीरा पन्ना से। इसे आवाज़ें दी है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म हीरा पन्ना का यह गीत, जिसे आवाज दी थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। वादा है आपसे, हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हर पल में रहेंगे साई की तरह, ये रिश्ता कभी नहीं तोड़ेंगे। जी हाँ श्रोताओं, हमारा रिश्ता भी आपके साथ ऐसा ही है और ऐसे ही बना रहे, साथ ही उन लोगों का रिश्ता भी जो एक दूसरे से प्यार से जुड़े हैं और यही चाहते हैं कि वो वादा करें और उनका साथ कभी ना छोड़े, है ना। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म आग गले लग जा से। इसे आवाज दी है किशोर कुमार, लता मंगेशकर ने, संगीत है आर डी बर्मन का और गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म आ गले लग जाएगा ये गीत। आपके आने की आहट से गूंज उठा है चमन, पतझड़ के मौसम में भी छा गया है सावन। जी हाँ श्रोताओं, जिन अपनों को हम चाहते हैं अगर वो आ जाए तो ऐसा लगता है कि उनके साथ साथ बहार भी आ गई है। माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है और हमारे पेट पे बटरफ्लाईज उड़ने लगती हैं, है ना? ऐसा ही तो होता है किसी अपने के आने पर। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म जीने की राह से। इसे प्यारी सी आवाज दी है मोहम्मद रफी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। तो छोड़ जाते हैं आपको इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीत संध्या। ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है एक ही फिल्म से। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम एक ही फिल्म से में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त अलका सिंह। श्रोताओ, आज की हमारी फिल्म है नमस्ते लंदन। नमस्ते लंदन 23 मार्च 2007 को रिलीज हुई फिल्म है। यह एक सुपरहिट बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण विपुल अमृतलाल शाह ने किया है। नमस्ते लंदन की कहानी और पटकथा तैयार की है सुरेश नायर ने। तो चलिए सुनवा देते हैं आपको ये पहला गीत, जिसे आवाजें दी हैं हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान ने।

एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम एक ही फिल्म से में। श्रोताओं, फिल्म नमस्ते लंदन में मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ। यह फिल्म अपनी बेहतरीन कहानी, देशभक्ति के संदेश और अपने हिट सॉन्ग्स के लिए काफी लोकप्रिय हुई थी। श्रोताओं, इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी व्यावसायिक सफलता भी हासिल की। श्रोताओं, यह फिल्म मनोज कुमार की क्लासिकल फिल्म पूरब और पश्चिम से प्रेरित भी मानी जाती है। तो चलिए सुनवा देते हैं ये अगला गीत, जिसे आवाजें दी हैं जुबिन गर्ग और अलीशा चिनॉय ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज हम बात कर रहे हैं फिल्म नमस्ते लंदन की। फिल्म नमस्ते लंदन के सभी गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखित हैं और संगीत तैयार किया है हिमेश रेशमिया ने। श्रोताओं, फिल्म के गीतों को आवाजें दी हैं राहत फतेह अली खां, कृष्णा बाउरा, सुनिधि

चौहान, हिमेश रेशमिया, आरबीडी, अलीसा चिनॉय, जयरा गांधी और जुबिन गर्ग ने। श्रोताओं, फिल्म नमस्ते लंदन को 53वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन भी प्राप्त हुआ और श्रोताओं, दर्शकों को ये फिल्म बहुत पसंद आई। तो चलिए सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। इसे आवाजें दी हैं राहत फतेह अली खां और कृष्णा बेउरा ने।

0: अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से, जिसमें आज की हमारी फिल्म थी नमस्ते लंदन। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: द टॉपिक फॉर द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग,
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं, बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in।

0: तुरंत बंद होनी चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से ये जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit will provide an opportunity.
3: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
2: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
1: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य का 14-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
4: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
5: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
6: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
5: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाद अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
7: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को दुख पड़ दिया तो उसको भरपूर और एक अच्छा मयारी इलाज

0: बेहतरीन हस्पतालों मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है।
1: खबरों के साथ मैं शमी अहमद।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने उमान के साहिल के नजदीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जानें तलफ हो गईं। उसने अमरीका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलिया ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। मैक्सिको के स्टेडियो एस्टिका में पहले मैच में मैक्सिको और जुनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक ऐसे वक्त जब दुनिया की बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल और इक्तिसादी चैलेंजों का सामना है, भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को लगातार तहरीक दे रही है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने खुद किफालत के तहत मुल्क के अज़्म को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत को उजागर किया और दुनिया की बेहतरीन अमल आवरियों, बिलखसूस काबिल तजदीद तवानाई के शोबे के तौर तरीकों को इख्तियार करने और उन पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने कहा कि अब जबकि भारत विकसित भारत के तसव्वुर की ताबीर की हुसूलियाबी की जानिब पेशरफ कर रहा है, मरकज और रियासतों की इज्तिमाई जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ गई है। वजीर आजम ने रियासतों से जोर देकर कहा कि वो एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट की स्कीम पर तवज्जो मरकूज करें और इसके ताल्लुक से बरामदात के लिए मौजूं हिकमत अमली तैयार करें। उन्होंने दिफाई मैन्युफैक्चरिंग के शोबे को एक उभरता हुआ सेक्टर करार दिया, जिसमें भारत अपनी इम्तियाजी शनाख्त कायम कर रहा है और रियासतों को तरगीब दी कि वो इस तरक्की से रूनुमा होने वाले मौके से फैज उठाने के लिए पॉलिसियां वजह करें। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अशोक कुमार लहरी ने आज कहा कि नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल में 2047 तक विकसित भारत के विजन को हासिल करने की गरज से बुनियाद के तौर पर एक हुनरमंद और बाइख्तियार आबादी तैयार करने पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मीटिंग के बाद मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब लहरी ने कहा कि विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए शमूलियाती इंसानी फरोख के मौजू पर तबादला ख्याल में तमाम 28 रियासतों के वज़राए आला ने शिरकत की। इसमें तालीम, सेहत, देखभाल और रोजगार जैसे कलीदी शोबों का अहाता किया गया। जनाब लहरी ने कहा कि नीति आयोग ने वज़राए आला के बामकसद नजरियात और उनकी मुतालिका रियासतों में किए जा रहे काम से इस्तेफादा किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने इस मीटिंग से तफसीली खिताब किया और इस बात पर जोर दिया कि एक बेहतर तालीम याफ्ता और हुनरमंद आबादी भारत की तरक्की के लिए लाजमी है। मगरबी एशिया के बहरान से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब लहरी ने कहा कि वजारत खारजा सूरत हाल को मुनासिब तरीके से हैंडल कर रही है, जबकि अफरादी कुव्वत की तरक्की पर मरकूज तवज्जो में कोई तब्दीली नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि तबादला ख्याल के दौरान शमसी तवानाई, जोहरी तवानाई और मैन्युफैक्चरिंग पर भी खास तौर पर तवज्जो दी गई। नीति आयोग के रुकन राजीव गौबा ने कहा कि तबादला ख्याल में एक और कलीदी शोबा मंसूबा बंद शहरकारी था। उन्होंने वादे किया कि नीति आयोग मुल्क में शहरी हुक्मरानी की काया पलट की गरज से एक एजेंडा तैयार करने के सिलसिले में मुख्तलिफ वजारतों के साथ काम कर रहा है। मरकज और आसाम और नागालैंड की हुकूमतों के दरमियान आज एक सह फरीकी मुफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए, ताकि आसाम नागालैंड सरहद पर खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार की सहूलियात शुरू की जा सकें। इस माहदे पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के वजीर आला निफियो रिव्यू की मौजूदगी में नई दिल्ली में दस्तखत किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने इस माहदे को एक तारीखी कदम करार दिया, जो तआवुन पर मबनी वफाकियत और कौमी मफाद के जज्बे का मजहर है। उन्होंने कहा कि इस कदम से खित्ते में तेल और

गैस की तलाश को खातिर खा फरोग मिलेगा और इस तरह भारत की तवानाई की यकीनी फराहमी को इस्तेहकाम मिलेगा और दरामदात पर इन्हिसार में कमी आएगी। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि इससे शुमाल मशरक में अमन और इस्तेहकाम में भी बेहतरी आएगी, इससे सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए साजगार हालात पैदा होंगे। भारत ने आज अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब किया और ओमान के साहिल के करीब पालाउ झंडे के हामिल टैंकर एमटी सेटबेलो पर हुए हमले के सिलसिले में सख्त एहतजाज दर्ज कराया। इस हमले में तीन भारतीय बाशिंदों की जानें तलब हुई हैं। नई दिल्ली में बैन वजारती मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने खित्ते में जहाजरानी पर जारी हमलों को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया और कहा कि इसका ताल्लुक जारी तनाजे से है। उन्होंने इस तरह के वाकयात पर फौरन रोक लगाने पर जोर दिया और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बहाल करने की गरज से मुदाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया। खलीजी डिवीजन के एडिशनल सेक्रेटरी असीम आर महाजन ने कहा कि हुकूमत मगरबी एशिया की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए है और भारतीय मिशनों से 24 घंटे हेल्पलाइन चलाई जा रही हैं और ये मिशन मकामी हुक्काम के साथ तालमेल कायम किए हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एमटी मैरीवैक्स पर सवार अमले के सभी 24 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया है और उनके जल्द ही भारत वापस आने की उम्मीद है। इस जहाज को इस माह की 8 तारीख को ओमान के साहिल के नजदीक निशाना बनाया गया था। बंदरगाहों जहाजरानी और आबी रास्तों की वजारत में एडिशनल सेक्रेटरी मुकेश मंगल ने कहा कि एमटी सेटबेलो से बहिफाजत निकाले गए अमले के 21 भारतीय अफराद महफूज हैं जबकि हलाक होने वाले तीन मल्लाहों के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। उन्होंने बताया कि एमटी जलवीर पर सवार अमले के सभी 22 भारतीय अफराद महफूज हैं और उन्हें बहिफाजत निकालने की कोशिशें जारी हैं। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि कीमियावी खाद और ईंधन की सप्लाई मुस्तहकम रहेगी, इसका खातिर खाद जखीरा दस्तियाब है और मुल्क की रिफाइनरीज अपनी ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश के साथ काम कर रही हैं। शहरियों से जोर देकर कहा जाता है कि वो घबराहट में खरीदारी से गुरेज करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 14 तारीख से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं जहां वो G7 समिट में शरीक होंगे। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने बताया कि ये इंतहाई समर आवर और वसी तर मामलात पर मुश्तमिल दौरा होगा। उन्होंने मजीद बताया कि इस दौरे में फ्रांस के तीन मकामात नाइस, एवियान और पेरिस शामिल हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने बताया कि इस दौरे से वजीर आजम को G7 समिट में शरीक होने वाले आलमी लीडरों के साथ भारत नीज आलमी जुलूस के लिए अहमियत के हामिल मामलात पर तबादला ख्याल का मौका मिलेगा। हुकूमत ने इथेनॉल मिले पेट्रोल की कई किस्मों पर एक्साइज ड्यूटी को खत्म कर दिया है। एक नोटिफिकेशन में मरकजी वजारत खजाना ने ऐलान किया है कि 22%, 25%, 27% और 30% इथेनॉल मिले पेट्रोल को मरकजी एक्साइज ड्यूटी से मुस्तस्ना कर दिया गया है। वजारत ने कहा है कि ईंधन की इन चारों किस्मों पर अब कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी होगी। इस इकदाम का मकसद भारत के इथेनॉल मिले ईंधन के प्रोग्राम को मजबूत करना है जिसका मकसद दरामद किए गए खाम तेल पर इन्हिसार में कमी करना, कार्बन अखराजात में तख़फीफ करना और मुल्क में ही तैयार किए गए इथेनॉल की मांग को बढ़ाना है। ये आकाशवाणी है। इत्तला तो नशरियात के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णो ने आज जयपुर में वाक़ आकाशवाणी की इमारत में मुनक़िद एक प्रोग्राम के दौरान राजस्थान के जैसलमेर में रामगढ़ के मकाम पर वर्चुअल तरीके से 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। इस इजाफे के साथ रियासत में FM ट्रांसमीटरों की कुल तादाद बढ़कर 39 हो गई है। नए ट्रांसमीटर से सरहदी इलाकों के 80 किलोमीटर के दायरे में रेडियो नशरियात सुनी जा सकेंगी जिससे लोगों को वसीतर मालूमात, तालीमी मवाद और तफरीही प्रोग्रामों तक रसाई हासिल होगी। इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब करते हुए मरकजी वजीर वैष्णो ने कहा कि मुल्क के पूरे सरहदी इलाकों में कश्मीर से लेकर कच्छ तक आकाशवाणी और दूरदर्शन की कवरेज को मुस्तहकम करने के लिए खसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं जिसके तहत नए FM ट्रांसमीटर और नशरियाती बुनियादी ढांचे की तामीर की जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भारत में सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर फराइज अंजाम देने पर मुबारकबाद दी है जो कि मुल्क के जमहूरी सफर में एक तारीखी संग मील है। सोशल मीडिया की एक सीरीज में शेख मोहम्मद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जदीद भारत की तारीख में हुकूमत के मुंतखब सरबराह के तौर पर सबसे तवील मुद्दत तक खिदमत

0: Dubai. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एनडीए अधिवेशन में प्रधानमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो आशुतोष जी, जैसा कि कल हमने सुना प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था, और जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे बात की, देश के अंदर जो हमारे सामने समस्याएं हैं, जो विकास के मुख्य आयाम हैं, और वैदेशिक संदर्भ में भारत की क्या मुख्य भूमिका है, इन तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से पिछले 12 साल में सरकार ने काम किया है और देश को किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ढांचागत विकास की उन्होंने बात की, डिजिटल सेवाओं की बात की, वेलफेयर स्कीम्स की बात की, आप इसके बारे में और क्या जोड़ना चाहेंगे?
2: पिछले 12 साल जो काम हुए हैं राजग काल में, एनडीए के काल में, उसकी जो बात की वो तो की उपलब्धियां गिनाई। ये उपलब्धियां मुझे लगता है कि दो स्तर पर दिखी। एक तो कि जो जमीन पे जो चीजें आपको बदलती हुई दिख रही हैं वो, कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, और दूसरा है सोच के स्तर पर बदलाव कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो जो पहले की सरकारों में 60 सालों में जिस तरफ हमारा, जिस सेक्टर पे फोकस नहीं होना चाहिए था और नहीं गया, उसको कैसे सुधारना है, वो एक लेवल वो था कि कैसे बदलना है। और जो तीसरा जो एक लेवल था जो मुझे दिखा, और प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात भी की, वो ये है कि भारत की जो 140 करोड़ जनता है उसके मन और दिमाग में कुछ चीजें असंभव सी थी जो कि बैठी हुई थी कि ये चीजें असंभव है, बाकी चीजें तो हम करेंगे। उस असंभव को पार करना, जिसमें कि उन्होंने फिर वो 370 और 3 तलाक, जो इस तरीके की बात की जो समाज से भी जुड़ते थे, देश की सुरक्षा से भी जुड़ने वाले इशू थे, और जो आम जन की जनभावना से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो, तो ये 3 तरीके के बदलाव जो पिछले 12 साल में हुए, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री ने इससे बहुत खुल के मारे।
1: आशुतोष जी, अगर हम खासतौर से बात करें आर्थिक प्रगति की, हम सभी देखते हैं कि किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, निवेश की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें, और खासतौर से पूरी दुनिया में भारत ने अपनी एक जगह बनाई है, और न सिर्फ एक जगह बनाई है, हमने लगातार कोशिश की है इस सरकार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि हम बाकी दुनिया से एक कदम आगे चलें। तो आइए सुनते हैं इस बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था।
3: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखना। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है, और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाना, हमें ये समय गंवाना नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, यही समय है, सही समय है। हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है।
1: तो आशुतोष, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अगर हम देखें कि किस तरह से जो देश का विकास हुआ है और जो 2047 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, क्योंकि 100 साल हमारे देश की स्वतंत्रता के हो जाएंगे, और उसमें आर्थिक विकास से लेके जो टेक्नोलॉजी का विकास है, जो सोशल इंक्लूजन की बात है, सामाजिक समावेश की बात है, और एक अच्छे प्रशासन और गुड गवर्नेंस की बात है, इस बारे में आप आशुतोष जी और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
2: आज देश को किस चीज की जरूरत है? अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, जो बात हो रही है ना कि पश्चिम एशिया का संकट आया और पूरे विश्व के इस संकट का असर दिख रहा है, यहाँ पर विपक्ष में बैठे लोग कुछ ज्यादा उसे तूल दे रहे हैं, ऐसा लगता हो कि सिर्फ इंडिया का वो एक इशू है, लेकिन फिर भी

0: जो समस्या अभी आपको दिख रही है ये और कम दिखती अगर कुछ कदम पहले उठाए गए होते, जिसका कि जिक्र अभी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया था और उन्होंने कहा था कि भाई जो सप्लाई चेन में जो इंडिया पर कई बार दिखता है कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, ये कोविड के टाइम में भी ये चीजें दिखी थी और अभी भी चीजें दिख रही है, वहां कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में मुख्य भूमिका में इंडिया को आना है। एक टाइम आप याद कीजिए कि कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जहां हम पहले से मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे कि दवाइयां, और ये 80-90 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे उस समय कुछ इस तरीके से निर्णय लिए गए कि भाई हम मार्केट इकोनॉमी में किस तरीके से घुस जाए, और हम वहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उस समय में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार खड़ा करना था वो नहीं किया गया, अब शुरुआत हो रही है इसकी। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बहुत लंबे तरीके से किया और मुझे वो चीजें बहुत सही लगी आज के परिप्रेक्ष्य में कि क्यों नहीं भारत हर मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है, जिसकी बात उन्होंने की। ये आत्मनिर्भरता ही जो है वही कड़ी है और वही आप समझिए सबसे बड़ी कुंजी है जिसमें कि आप वित्तीय रूप से बहुत संबल, जो बात हो रही है ना बार बार विकसित भारत बनने, विकसित भारत ऐसा नहीं है कि एक शब्द में जुड़ के कहीं खत्म हो जाए, कई लेवल पे जो स्टेप्स लेने हैं, और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि भाई ये ग्लोबल सप्लाई चेन बनना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना है। आज से 8-9 साल पहले तक आप याद कीजिए तो यहाँ आपके हाथ में हमारे हाथ में जो भी फोन है वो बाहर से ही आ रहे होंगे कहीं ना कहीं से। अब स्थिति बदली हुई है कि आज अमेरिका वहाँ के जो यूजर है उसमें से एक फोन मेड इन इंडिया हो रहा है। ये जो बदलते हैं माहौल उसकी बात उन्होंने की कि हमें किस तरीके से आर्थिक पावर के रूप में उभरना ही पड़ेगा, यही सबसे बड़ी कुंजी है। उसी के साथ समाज का भी ग्रोथ होगा। भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है उसमें वेलफेयर स्टेट का जो एक बहुत बड़ा बोझ होता है, आप जान रहे हैं कि आज के दिन हम लोग करीब करीब 4-4.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में देते हैं, आर्थिक कहां से कर पाएंगे अगर जब तक आप एक आर्थिक ताकत के रूप में नहीं उभरेंगे, और आर्थिक ताकत के रूप में उभरने के लिए इसकी भी जरूरत है, और साथ ही साथ सभी राज्यों को भी लेना चाहिए जो एक हेल्दी कंपटीशन की बात में।
1: जी जी,
0: तो भाई ये हेल्दी कंपटीशन सिर्फ राज्य और राज्य में ना हो, ये हेल्दी कंपटीशन गांव से शुरू हो सकता है। एक गांव दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम अपने गाँव को कैसे ज्यादा बेहतर बना पाए, एक शहर दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम कहाँ पर ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए, और उन्होंने कहा कि राज्यों को तो ये कम्पीट करना चाहिए कि भाई आने वाले टाइम में हु विल बी द फर्स्ट स्टेट जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेट होगा।
1: तो आशुतोष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए और प्रधानमंत्री ने सहभागिता की बात भी की, क्योंकि उनका ये मानना है जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि सारी जनता मिलके और सारे राज्य मिलके ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक जन विश्वास की जो बात है, जन भागीदारी की बात है, इस पर प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति, ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले हैं। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा देशवासियों ने दिल खोल करके साथ मांगा। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजेक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गए। मैंने कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का संयम का आग्रह किया, देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है।
1: आशुतोष जी, जैसा कि अभी हमने सुना, प्रधानमंत्री ने इसके अलावा हाउसिंग की बात की, वित्तीय समावेशन की बात की, सफाई का भी जिक्र किया, स्वास्थ्य का जिक्र किया। खास तौर से जिस तरह से गरीबी उन्मूलन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं और काफी लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की है, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
0: न सिर्फ गरीबी से जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, और साथ में उन्होंने कहा कि हमें इसका विशेष प्रयास करना चाहिए, एक साथ मिल करके प्रयास करना चाहिए कि ये फिर से उस गरीबी के दलदल में ना जाए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही होती है जब आप इस तरीके की योजनाओं पे काम करते हैं, स्लिपेज की बात कि आपने कुछ चीजें ठीक की और वो फिर से धीरे धीरे वहीं चला जाए। तो वो प्रयास वहां पर विफल होता है। और देखिए ये गरीबी की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा कारक हुआ करता था वो है बीमारी, कि एक बार कोई घर में बीमार हो गया किसी गरीब की घर और वो फिर से लोन और इसके दुष्चक्र में फंसता हो वहीं जाता था। बीमारी को लेकर के सरकार ने पहले ही एक कदम उठाया, आज से 5-6 साल पहले जब आयुष्मान योजना की बात हुई थी उससे बहुत सारी चीजें सुधरी थी। और ये जो 25 करोड़ का आंकड़ा अभी आ रहा है कि इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, वो न्यू मिडिल क्लास में और थोड़ा सा उससे नीचे में प्रवेश कर चुके हैं, अब उनकी आकांक्षाएं और बढ़ रही हैं। ये आकांक्षा बढ़ना ही तो है विकसित भारत के लिए जरूरी है।
1: जी जी, और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरह से कुछ समय पहले हमारी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन अब हम बहुत ही त्वरित गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गए हैं। और जैसा आपने भी इसका जिक्र किया कि किस तरह से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला है, और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि किस तरह से एक ऐसा भारत बनाया जाए जहां गरीबों के सपने भी पूरे हो पाएं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: जैसा कि हमने सुना आशुतोष जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जब 100 साल पूरे हों देश के तो एक नए तरह का भारत हो जो बहुत विकसित हो और विकसित श्रेणी और विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो पाए। आप इस बारे में क्या और कुछ जानकारी देना चाहेंगे?
0: ये जो विकसित भारत की कल्पना की गई और उसी समय ये भी है कि विकसित भारत क्या होगा। विकसित भारत का अर्थ ये है कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में भारत खड़ा होगा, एक आत्मनिर्भर देश के रूप में भारत खड़ा होगा। भारत की तुलना आप किसी छोटे कंट्री से नहीं कर सकते, बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहाँ की जनसंख्या आप देख लें तो वो पूरे के पूरे भारत में समाएंगे। तो यहाँ की सोच अलग है और उसी तरीके से इसका ग्रोथ किया जा रहा है। मुझे लगता है जो उन्होंने बात कही दिशा सही है, थोड़ी गति की बात है जो उन्होंने कही, जहाँ हमें गति और बढ़ानी है और जिसमें सबके प्रयास की बात की उन्होंने, ये दोनों चीजें होंगी तो मुझे लगता है दिशा और गति दोनों मिलकर जो है सो इच्छित परिणाम के लिए।
1: आशुतोष जी, एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि किस तरह से सरकार ने विकास के लिए जो भी जरूरी फैसले हैं वो समय पे लिए, क्योंकि राजनीतिक स्थायित्व तो है और सरकार के पास ये इच्छा शक्ति है कि वो देश को विकास की ओर आगे ले जाना चाहती है। तो सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
2: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का इस सिलसिला और भी तेज होगा।
1: आशुतोष जी, आप और क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो बात की कि देश हित में जो भी फैसला जरूरी होगा वो ये सरकार करेगी जिससे कि देश विकास की दिशा में आगे बढ़ पाए।
0: मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दूंगा। 370 की बात यहाँ की और आपको याद होगा कि जब 370 हटाया गया था तो उस समय में किस तरीके की बातें कही जा रही थी। मैं अभी अभी कश्मीर से लौट के आया, बारामूला और शोपियां जैसे जिले, आप वहां भी खुलेआम घूम सकते हैं एक सामान्य नागरिक की तरीके से, वो भी कश्मीर नहीं, आप बाहर से जाकर भी घूम सकते हैं और सुरक्षित घूम सकते हैं, लोग खुश हैं। उसी तरीके से जो 3 तलाक वाली जो बात थी, सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो आपको नौकरी दे, सरकार का काम ये भी होता है कि वो इस तरीके के प्रयास करे कि समाज में भी बदलाव आए।
1: जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आशुतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नेशनवाइड।

सृजनात्मक प्रसारण धरोहर के अंतर्गत प्रस्तुत है रूपक, जिसके ख्वाबों पर आबाद है नजीबाबाद। आलेख तैयार किया है श्री अमन कुमार ने।

हिंदुस्तान के प्रसिद्ध तीर्थ हरिद्वार से 50 किलोमीटर पूर्व उत्तरांचल में कोटद्वार से 24 किलोमीटर दक्षिण में स्थित 1 लाख से भी अधिक आबादी वाला शहर नजीबाबाद। भला कौन नहीं जानता इस शहर को। ब्रिटिश शासनकाल का कुख्यात डाकू सुल्ताना का ये निवास स्थान था। हिंदुस्तान का वो इकलौता डाकू था जो किले में रहकर शान की जिंदगी बिताता था। इसी सुल्ताना डाकू के नाम से मशहूर किला, जो अपने आप में इतिहास समेटे है, उसे तामीर कराने का ख्वाब सन 1740 में नजीब खान ने मानेरी में देखा था। वो मानेरी जो पेशावर के नजदीक है, जहां सन 1708 में नजीब खान यानी नजीबुद्दौला ने जन्म लिया था। तब मलिक इसालत खान ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनका यही बेटा नजीब खान नवाब नजीबुद्दौला के नाम से हिंदुस्तान के इतिहास में मशहूर हो जाएगा और उसके ख्वाबों पर आबाद होगा नजीबाबाद।

0: करने पर सफदरजंग को दिल्ली के बादशाह अहमद शाह से दिली नफरत हो गई थी। उसने बदला लेने के लिए सूरजमल जाट और इंदर गुसाई फौजदार को मैं फौजी साजो सामान के दिल्ली बुला लिया। उसने रोहेलों से भी मदद की गुहार की थी, मगर हाफिज रहमत खां टाल गया। दिल्ली के बादशाह ने भी मदद मांगी, तब भी हाफिज रहमत खां और नवाब दूद खां खामोश हो गए। हालांकि उन्होंने दिल्ली के बादशाह से मुखालफत मोल लेना मुनासिब नहीं समझा था, मगर रिसालदार नजीब खां दूदे खां और मीर मुनाकिब से मिला और बादशाह के हुक्म की तामील का वादा किया। उधर दिल्ली शहर में इंतजामुद्दौला और गाजीउद्दीन का भी मुकम्मल इंतजाम था। इधर नजीब खां 20,000 फौज के साथ दिल्ली पहुंच गया। घमासान का युद्ध हुआ और इन दुर्गसाए फौजदार इस युद्ध में मारा गया।
1: तब कई दिनों के बाद उसकी पत्नी वर बेगम को चिंता होती है और वो अल्लाह ताला से दुआ करती है। जवार बेगम आकर खबर देती है कि उसका भाई नजीब खान तलवार का कमाल दिखाकर वापस आ रहा है।
2: या अल्लाह, नवाब साहब को अपनी पनाह में रखना, उनकी हर मुराद पूरी करना मेरे मौला।
3: भाभी जान, भाभी जान कहाँ हैं आप?
2: हाँ जवार, कहो क्या बात है?
3: भाई जान आ रहे हैं, सुना है बादशाह ने उन्हें नवाब का खिताब बख्शा है।
2: खुदा उनकी उम्र दराज करे। और क्या सुना है आपने अपने भाईजान के बारे में?
3: भाभी जान, एक नौकर कह रहा था।
2: क्या कह रहा था?
3: वो कह रहा था कि दिल्ली में घुसते ही भाईजान ने जो तलवार निकाली, दुश्मन की हालत खराब कर दी, और वो अवध का नवाब वो अवध का नवाब सफदरजंग। भाभी जान, वो तो बड़ा ही डरपोक निकला।
2: अच्छा, और क्या हुआ भला? हम आगे का हाल जानना चाहते हैं जवार।
3: भाभी जान, हम तो समझ रहे थे कि वो कहीं भाई जान पर भारी ना पड़ जाए। वो सूरजमल जाट और फौजदार इंद्र गुसाई भी तो थे उसके साथ।
2: अच्छा,
3: भाभी जान बड़ी भारी फौज लिए पड़ा था वो वहाँ।
2: भला वो चाहता क्या था?
3: अरे भाभी जान, वो चाहता था कि किसी तरह से दिल्ली के बादशाह को कत्ल कर दे, जिससे कि दिल्ली की गद्दी उसे मिल जाए।
2: ख्वाब तो अच्छा था उसका जवार,
3: खाक अच्छा था। अरे भाई जान की नंगी तलवार ने उसका सारा ख्वाब खाक में मिला दिया। उसका वफादार यार इंद्र गुसाई बेचारा पता है बन गया बलि का बकरा, मुफ्त में मारा गया।
2: अच्छा, मगर अभी आपके भाईजान को एक काम और करना है मेरी बन्नो।
3: वो क्या भाभी जान?
2: आपका निकाह।
3: छोड़िए भी भाभी जान, फिर मजाक पर उतर आई आप।
2: क्यों, शर्मा गई हमारी बन्नो?
3: क्या भाभी जान, अब बाज भी आई है अपनी मजाक से?
2: लो, हम तो बाज आ गए, मगर आपके भाईजान से हम कहेंगे कि वो आपका निकाह बाज खान के साथ कराएं।
3: क्या भाभी जान, आप भी अब छोड़िए ना।
2: अरे बन्नू, देखो वो अच्छा जाबाज है, खानदानी भी है, और फिर हमारा अपना भी तो है।
3: जाइए भाभी, हम आपसे बात नहीं करेंगे। जब भाईजान आएंगे ना, तब हम आपकी शिकायत जरूर करेंगे भाईजान से।
1: अब नजीब खान नवाब नजीब खान बन गया था। बादशाह की ओर से उसे मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर की जागीरें भी मिल गई थीं। इसीलिए वो बिसौली से मुजफ्फरनगर की ओर कूच कर गया। गंगा पार करने से पहले उसने सहारनपुर रियासत के पास मालिनी नदी के किनारे पड़ाव डाला। उस समय भी भारी लाव लश्कर उसके साथ था।
4: राय साहब,
5: कहो क्या कहना चाहते हो?
4: नवाब नजीबुद्दौला यहाँ आ रहे हैं और मालिनी के उस ओर पड़ाव डालेंगे।
5: क्या कहा, नवाब नजीबुद्दौला? अरे अरे, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए

0: कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बाकी थी।
1: सन 1757 से 1770 तक वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहा। नजीब खान ने गाजीउद्दीन को वजीर बनवाने में जहां उसकी मदद की, तो वहीं उसके द्वारा बादशाह आलमगीर सानी को हटाने के कारण उसका विरोध भी किया। नजीब खान ने मरहठों से अच्छे रसूख बनाए तो बादशाह शाह आलम सानी के मामले में उनसे दुश्मनी भी निभाई।
0: शिक्षाविद डॉक्टर निरंकार सिंह त्यागी नजीबुद्दौला को दूरदर्शी व्यक्ति बताते हैं और कहते हैं कि उसने रुहेला सरदार नवाब अली मोहम्मद खान और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की मदद कर अपने भाग्य का सितारा खुद ही बुलंद किया।
2: 1761 का युद्ध हिंदुस्तान के इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध है। वैसे तो पानीपत के सभी युद्धों ने हिंदुस्तान के भाग्य का निर्माण किया, लेकिन इस युद्ध ने हिंदुस्तान में मराठों के राज्य को एक प्रकार से समाप्त कर दिया था। नजीबुद्दौला इतना दूरदर्शी व्यक्ति था, वो जानता था कि यदि इस युद्ध में मराठे जीत गए तो रुहेलखंड में सत्ता मराठों की स्थापित होगी, ना कि रुहेलों की। तो उस दूरदर्शिता को उसने दिखाते हुए अहमद शाह अब्दाली को वेलकम किया, और अहमद शाह अब्दाली को वेलकम ही नहीं किया, उसने अपने साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला को पठाया और पूरी सप्लाई सेना की अहमद शाह अब्दाली की, वो नजीबाबाद से सप्लाई थी, पत्थरगढ़ के किले से सप्लाई थी, उसी की बदौलत मराठे इतनी बड़ी लड़ाई हारे। और इतनी बड़ी ट्रेजडी थी महाराष्ट्र के लिए जिसने मराठों के साम्राज्य का अंत कर दिया और नजीबुद्दौला के भाग्य का सितारा इसने चमका दिया।
1: नजीब खान और अन्य रुहेलों का रुतबा इतना बढ़ गया कि संपूर्ण कटेहर क्षेत्र ही रुहेलखंड कहलाने लगा। अवध और पंजाब के बीच का ये क्षेत्र रुहेलखंड बन गया।
0: सन 1770 की तारीख 31 अक्टूबर को नवाब नजीबुद्दौला दिल्ली से अपने ख्वाबों के शहर नजीबाबाद को वापस आ रहा था। अभी वो हापुड़ में ही था कि काल के क्रूर हाथों ने नवाबों के नवाब नजीबुद्दौला को हमेशा के लिए छीन लिया। आसमान को छू लेने की कोशिश करने वाले नजीबुद्दौला की बेरूह जिस्म को नजीबाबाद लाया गया और जावेद बाग में स्थित उसकी बीवी की कब्र के पास ही दफनाया गया, जहां आज भी एक बेहतरीन मकबरा बुलंद है। नजीबाबाद में जन्मे वरिष्ठ नागरिक 80 वर्षीय श्री ओम प्रकाश गोयल नजीबुद्दौला के किले, टकसाल और उसकी बहादुरी का भावुकता के साथ आकलन करते हैं।
3: नजीबुद्दौला एक बहुत बहादुर आदमी था, बड़ा अच्छी तरह से उसने इस नजीबाबाद शहर को बसाया था। मोहल्ला टकसाल नजीबाबाद का एक बड़ा महत्वपूर्ण मोहल्ला है। उस मोहल्ले टकसाल में ही एक बिल्डिंग है जो नवाबों के जमाने की टकसाल हुआ करती थी, और वहां पर नवाबों के जमाने के सिक्के ढाले जाते थे। अभी तक उसकी दीवारें कुछ ऐसी हैं और कुछ उसमें ऐसी बिल्डिंग्स मिलेंगी कि जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बहुत पुरानी दीवारें हैं। आम जनता के लिए तो ये बहुत बड़ी बधाई का काम था कि कुएं बनवाए, और जो कर लगता था वो तो कर पहले लगता ही क्या था, बहुत ही कम कर होता था, लेकिन आम जनता की भलाई का तो सबसे बड़ा काम ये था कि व्यवस्था ऐसी हो जाए, उनकी सुरक्षा ऐसी हो जाए कि लोग आराम से सो सकें, रह सकें, अपने कारोबार कर सकें। उसका उसने पूरा ध्यान रखा और हिंदू मुस्लिम पूरा सौहार्द कायम रहा।
0: नजीबुद्दौला के कुशल प्रशासन और उसकी न्यायप्रियता का जिक्र मशहूर शायर निश्तर खान का ही कुछ इस प्रकार करते हैं।
4: नजीब साहब के मामले में ये खास बात है कि उनके यहाँ कोई जनता के लेवल पर कोई बहुत बड़ा विद्रोह नहीं हुआ, यानी अब्न अबान के साथ उन्होंने अपनी नवाबी चलाई, सरकार चलाई, इसलिए उन्होंने लोगों को परेशान नहीं किया, जोर जबरदस्ती नहीं की, लोगों का बाल दौलत नहीं छीना, उनकी पैदावार पर हाथ साफ नहीं किया और जमीनों का बंदोबस्त किया, अमन चैन और जरैब जो थे रोके, तो इसलिए उनकी तारीख में अहमियत इसलिए भी है।
1: शिक्षाविद डॉक्टर निरंकार सिंह त्यागी नजीबुद्दौला की ईमानदारी, बहादुरी और दूर अंदेशी का सही आकलन करते हैं, मगर साथ ही उसकी उपेक्षा पर अफसोस जाहिर करते हैं।
2: नजीबाबाद एक लंबे समय तक अपनी वास्तुशिल्प कला के लिए विख्यात रहा, उसमें चाहे लकड़ी के पहिए हैं, लकड़ी का दूसरा सामान है, लकड़ी के खिलौने हैं, या एक पूरा मोहल्ला मुल्तानी जो आज भी कहलाता है, तो हो सकता है वहां पर जो कारीगर हों वो मुल्तान से आए हों, और मुल्तान अफगानों की पोजीशन में था ही उस समय, तो नजीबुद्दौला ने जहां भी जो उसे खूबसूरत कारीगर मिले वो से लाकर यहाँ पर बसाए, जिससे नजीबाबाद बसाया, पत्थरगढ़ बसाया, इस शहर की पहचान दी, इस पूरी कमिश्नरी का नाम रुहेलखंड दिया, उसे यहाँ की जनता ने भी भुलाया और जो विद्वान

0: जमात जिसे इंटेलेक्चुअल्स कहा जाता है उसने भी उसे भुला दिया और इतिहास में उसका जो स्थान है उसे नहीं मिला। उसकी बायोग्राफी के बारे में लोगों को पता नहीं, उसके बारे में लोग जानते नहीं, उसका लाइफ हिस्ट्री कभी कोई एक सिंपल रूप में जैसे किताब की कहानियों में आ जाता है कोई आज तक नहीं आ पाया। तो यहाँ की जनता महरूम है अपने उस नायक को जानने के लिए जो इतिहास के पन्नों में कहीं छुपा पड़ा है।
1: तो ये था नवाब नजीबुद्दौला और उसके ख्वाबों पर आबाद नजीबाबाद। इसी किले से एक और भी नाम जुड़ा है और ये नाम है डाकू सुल्ताना का। सुल्ताना डाकू इसी किले में रहता था और अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करता था। आज भी यहाँ के लोग सुल्ताना डाकू को याद करते हैं। वो बताते हैं कि उसने ना जाने कितनी ही गरीब बेटियों का विवाह धन देकर कराया। इस किले की खूबसूरत दीवारें और बावली के साथ साथ यहाँ के जंगलों का चप्पा चप्पा डाकू सुल्ताना की याद ताजा कर देता है।
2: मुरादाबाद सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित नजीबाबाद शहर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर ये किला रेल यात्रा के दौरान भी देखा जा सकता है, मगर जो रोमांच किले की दीवारों पर चढ़कर होता है वो कल्पनाओं से दूर है, क्योंकि ये महज ख्वाब ही नहीं बल्कि जीवित इतिहास है।
3: जिसके ख्वाबों पर आबाद है नजीबाबाद, अभी आप श्री अमन कुमार का लिखा ये रूपक सुन रहे थे। वाचक स्वर डॉक्टर एस के जौहर और अनीता नेगी। प्रतिभागी कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार है: मलिक इसालत खान मदन मोहन राजवंशी, नजीब खान पंकज गर्ग, बिशारत खान विशाल शर्मा, अली मोहम्मद पवन संगम, राय बसुचंद संजीव श्रीवास्तव, वर बेगम रेणु कोटनाला और ज्वार बेगम श्वेता शर्मा। तकनीकी सहयोग वीपी सिंह और तिलक राम। प्रस्तुति सहयोग इकबाल अहमद। प्रस्तुतकर्ता अनिल भारती और सुशील त्यागी। सृजनात्मक प्रसारण धरोहर के अंतर्गत ये रूपक आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र पर तैयार किया गया।

अभी आप सुन रहे थे रूपक, जिसके ख्वाबों पर आबाद है नजीबाबाद। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपके व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त अलका सिंह का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा नंबर और भेज दीजिए अपने फरमाइशी गीत। और नंबर है हमारा 9457078288। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 9457078288। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, पता और गीत लिखकर मैसेज कर सकते हैं। तो जल्दी से उठाइए अपना फ़ोन और कर दीजिए मैसेज। तो हमारे पास पहले गीत के लिए जो फरमाइश आई है, वो गीत हमने लिया है फिल्म दो कलियां से। इसे आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। गीत साहिल लुधियानवी का है और संगीत दिया है रवि ने। इस गीत के लिए हमें फरमाइश कर रहे हैं गांव टोरावल, जिला नवा शहर, पंजाब से। लिखने वाले हैं गगनदीप थांदी, त्रिगुप्ता कुमार, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रथम, वामिका और वाणी। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेज रहे हैं फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, लाडी खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानाशी खेड़ा। और इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकत पुरामऊ से लिखने वाले हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। अगला मैसेज हमें इस गीत के लिए कर रहे हैं मोहल्ला पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है पद्मा टॉकीज नोपा नगर मध्य प्रदेश से। लिख रहे हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश आई है ग्राम पंचायत बठैना पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, सूरज और कुशल वर्मा। तो चलिए इन सब की फरमाइश पर सुनवा देते हैं ये पहला गीत फिल्म दो कलियों से।

एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और देर बिल्कुल नहीं करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं अगला मैसेज जो हमें लेकर भेजा है ग्राम शाहपुर शैदू डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से। लिखने वाले हैं सुमित चौधरी, निशु चौधरी, युग चौधरी और यशवी चौधरी। ये सुनना चाहते हैं फिल्म नाम का ये गीत जिसे आवाजें दी हैं पंकज उदास और साथियों ने। इसी गीत के लिए हमें फरमाइश की है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे कुमार, संचित वायाल, परमदेश देशमुख, सर्वदा देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना देशमुख। इसी गीत के लिए हमारे पास अगली फरमाइश आई है गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से। लिख रहे हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम और अदीब।

इसी गीत के लिए हमारे पास फरमाइश लिखकर भेजी है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने। अगला मैसेज हमें मिला है करोला मुरादाबाद से अयूब खान, ईरम गुड़िया और शोहेब खान का, सिंधौली बरेली से जिशान वारसी। अगला मैसेज हमें लिखकर भेज रहे हैं मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से, लिखने वाले हैं जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। अगला मैसेज हमारे पास आया है, ये लिखने वाले हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौसीर नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। इसी गीत के लिए फरमाइश हमारे पास आई है मोहल्ला बरादरी महमूद खान रामपुर से, रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद मंसूरी, असद मंसूरी और फिरोजा मुस्कान, अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी की। इसी गीत के लिए अंतिम फरमाइश हमारे पास आई है नालेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। तो चलिए इन सब की फरमाइश पर सुना देते हैं फिल्म नाम का ये गीत।

एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और देख लेते हैं अगली फरमाइश जो हमें लिखकर भेजी है आदर्श नगर मलोट पंजाब से। लिखने वाले हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवास शर्मा। अगला मैसेज हमारे पास आया है मलियाना सरधना मेरठ से। लिखने वाले हैं अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन, दिग्दर्शन जैन। ये सुनना चाहते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। इसी गीत के लिए अगली फरमाइश हमारे पास आई है शाही मार्केट सोहरा बिजनौर से। लिखने वाले हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात चौधरी, आदिब चौधरी और कादिर चौधरी। अगला मैसेज हमारे पास आया है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। लिख रहे हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। अगला मैसेज हमें मिला है सेफ वाटर सेफ लाइफ, ये हमें मैसेज भेज रहे हैं डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी और राधा नामदेव। अगला मैसेज हमें मिला है करूल अमरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, सिंधौली बरेली से जिशान बारसी का। अगली फरमाइश हमारे पास आई है कस्बा अग्रवाल मंडी टिटीरी बाग टटीरी बागपत यूपी से। लिख रहे हैं आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान और सारिका अली। अगला मैसेज हमें भेजा है बटिंडा रोड मंडी डबा वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग और इनके परिवार के सभी सदस्य। अगला गीत के लिए फरमाइश हमारे पास है अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद। अगला मैसेज हमें मिला है ग्राम जुजहला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, साइना महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर का। अगला मैसेज ये हमारे पास आया है लिखने वाले हैं नवाब खान, इसरत जहां, मास्टर अजहर खान और नजीम खान, ये लिख रहे हैं वोरली मुंबई से। तो चलिए इन सब की फरमाइश पर सुनवा देते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत।

मल पाठक दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, विनोदपुरी। अगला मैसेज हमें लिखकर भेजा है रिंग ने छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। अगला मैसेज हमें भेज रहे हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। अगला मैसेज हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से, लिख रहे हैं रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, गुरकीरत, मन्नत, सिमरत, गुरशब्द, राहुल, विजेंद्र, जयजान। अगला मैसेज हमें मिला है धनोरी तेलीवाला से, लिखने वाले हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू। अगला मैसेज हमारे पास आया है मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगी सापुर से, लिख रहे हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। अगला मैसेज हमारे पास आया है अनारकली बाजार जगराव से, लिखने वाले हैं कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा का। ये मैसेज हमारे पास पुनः आ गया है। हम अपने श्रोताओं से आग्रह करेंगे कि वो अलग अलग नंबरों से मैसेज ना करें, क्योंकि आपके दो बार नाम पढ़ने में अन्य श्रोताओं के नाम रह जाते हैं। तो अगला मैसेज हमें मिला है धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से, लिख रहे हैं अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, प्रीति सिंह, रितु सिंह, संकल्प, कृषिव सिंह और गुड़िया वेदा सिंह। अगला मैसेज है हमारे पास बागपत उत्तर प्रदेश से, लिखने वाले हैं संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, पार डिंगिया। और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है विलेज एंड पोस्ट राहुल नगली से, लिखने वाले हैं आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षत चौहान, भूमिका चौहान, कनिष्का, भव्य, सीमा रानी, राघव चौहान, वेदांश चौहान और इनके परिवार के सभी सदस्य। अगला मैसेज हमारे पास आया है झज्जर हरियाणा से, लिखने वाले हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। बीजना मुरादाबाद से लिख रहे हैं राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान। अगला मैसेज हमारे पास है पटेल नगर मलोट से, लिखने वाले हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। ये अगला मैसेज हमें मिला है संघमित्र श्रोता संघ वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से, लिखने वाले हैं जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता। तो चलिए इन सब की फरमाइश पर सुनवा देते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म तेरे इश्क में से। इसे आवाज दी है फहीम अब्दुल्ला ने, गीत है इरशाद कामिल का और संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

अभी आप सुन रहे थे आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर रात के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग

0: द टॉपिक फॉर द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग.
1: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था. इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं, बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा.
0: टू यूथ, टू वर्किंग लाइफ, टू ओल्ड एज.
2: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया. ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ. गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है.
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं. से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है. दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है.
2: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है. इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी. नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया. नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है. भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया. ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था. बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली. भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ. इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं. फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है. इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है. श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी. पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं. सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त.